मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 की ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि तदनुसार 19 जून 2026 इस समय प्रातः के 5:57 और 15 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस समय प्रातः के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में

बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

माखन चोर नंद किशोर बांधी जिसने प्रीत की डोर, हरे कृष्ण हरे मुरारी पूछती जिन्हें दुनिया सारी, ऐसी है लीला मेरे घनश्याम की।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर थे मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह और साथियों की। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530

0: के दो खर्च पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत आइए आपको सुनवाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार।
1: अधिकार हजम करने के लिए जब तक पूरी कीमत ना चुकाई जाए, तब तक यदि अधिकार मिल भी जाए तो आप उसे गवां बैठेंगे। ये शब्द हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के। सचमुच अनायास मिला हुआ कोई भी अधिकार स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पाने के लिए व्यक्ति ने वो साधना नहीं की जो अधिकार को अनुशासन में रखती है। मनुष्य जब भी बिना प्रयत्नों के अधिकार प्राप्त कर लेता है, वो या तो उसे स्वेच्छाचारी बना देता है अथवा फिर स्थायी नहीं रह पाता। आज प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उसे अधिकार सुख भोगने का अवसर मिले, और उसके लिए वो उचित अनुचित हर प्रकार के साधन अपनाने के लिए तत्पर रहता है, पर अपने मन में झांक कर ये देखना नहीं चाहता कि अपने अधिकार के लिए क्या उसने अपनी पात्रता सिद्ध की है। वल्लभ जी जब अधिकार हजम करने की बात कहते हैं, तब उनका आशय उसकी कीमत चुकाना, उस अधिकार को प्राप्त करने की साधना द्वारा उसके लिए अपनी पात्रता सिद्ध करने से होता है। ये साधना बातों से अर्जित नहीं होती, उसके लिए हर क्षण काम में लगे रहना आवश्यक है। भविष्य की चिंता किए बिना हम वर्तमान में काम में लगे रहें तो कोई कारण नहीं कि हमारा आने वाला कल उज्जवल ना हो। बल्लभ जी कहा करते थे, जो काम कल करने का है उसकी बातों में ही आज का काम बिगड़ जाएगा, और आज के बिना कल का काम नहीं होगा। हम अपने फर्ज से चूक जाएंगे, आज का काम कीजिए तो कल का काम अपने आप हो जाएगा। ये प्रेरक शब्द यदि हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं तो इसलिए क्योंकि इनमें सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। हमारी विडंबना ये है कि हम भविष्य के लिए नाना प्रकार की योजनाएं बनाने में अपने समय का अपव्यय करते रहते हैं। परिणाम ये होता है कि आज हमारे कार्य करने की जो गति होनी चाहिए थी, वो शिथिल होकर हमारे लक्ष्य को हमसे और दूर कर देती है। यदि हमें अपने आप को या अपने राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जाना है, तो एक एक क्षण का रचनात्मक ढंग से उपयोग करना होगा, और इसके लिए आवश्यक है कठोर परिश्रम। पटेल जी का मानना था, जाति भेद के विष को जब तक हम सद्भाव के अमृत के साथ बदल नहीं देंगे, तब तक हमारे देश का आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। ये नहीं हो सकता कि हमारे सामाजिक जीवन में भेदभाव बने रहें और हम राष्ट्रीय रूप में आगे बढ़ सकें। राष्ट्र की उन्नति तो व्यक्ति के विकास से ही आरंभ हो जाती है। ये हमारा कर्तव्य है, जो दुर्बल हैं उनको आपसी सहयोग के बल पर इतना सक्षम बना दें कि वे भी समाज और राष्ट्र के विकास में भरपूर योगदान दे सकें। पटेल जी का मानना था, व्यक्तियों के अच्छे जीवन से ही सामाजिक जीवन ऊंचा होता है। जिनके पास कम शक्ति हो, शक्ति वालों को उसे ऊंचा उठाना चाहिए। समाज में से ऊंच नीच के भेदभाव को मिटा देना चाहिए। पटेल जी का ये उद्बोधन हमारे जीवन के लिए पूरी तरह से प्रासंगिक है। भौतिकवाद ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इसके अनेक अच्छे और बुरे परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास ने जहां मनुष्य मनुष्य के बीच की भौतिक दूरियों को पाटा है, वहां जीवन की आपाधापी एवं परिस्थितियों के दबाव ने उसे आत्म केंद्रित और स्वार्थी भी बनाया है। ऐसे में वो केवल अपने बारे में सोचता है, किंतु सामाजिक विकास केवल कुछ व्यक्तियों की उन्नति का पर्याय तो नहीं। सामाजिक विकास तो तभी संभव होगा जब सभी व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो सकेंगे, और ये कार्य लंबे चौड़े व्याख्यानों से संभव नहीं हो सकता। इसके लिए कर्म की कठोर साधना की जरूरत है।
0: कार्यक्रम चिंतन के तहत अभी आप सुन रहे

प्रस्तुत है हमारी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस कान कार्यक्रम। खेती की बातें में 6:45 पर सुनी जा सकेगी डॉक्टर आरबी सिंह की वार्ता, जिसका विषय होगा कृषि के मित्र कीट। प्रातः 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर स्वाति तोमर श्वेत ब्रदर के विषय में जानकारी देंगी।

सुबह 9:25 पर गांधी चर्चा के अंतर्गत सुनी का सदाचार के संबंध में गांधी जी के विचार। बलवीर सिंह बघेल के गाय लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:45 पर। प्रातः 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे विदुषी गिरजा देवी का राग देव खंधार में ख्याल गायन। 11:00 आज के कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे चरित्र अभिनेता आशीष विद्यार्थी के बारे में और सुनवाएंगे उनकी ही फिल्मों के कुछ गीत। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा यौन हिंसा की रोकथाम सभ्य समाज के लिए जरूरी। 12:00 सनी का प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम घर संसार में सुनिएगा डॉक्टर कविता रायजादा से काव्य पाठ। इसी कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा मौन तोड़ी जागरूकता बढ़ाएं। गुलाम अली की गायक कस्ते हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर। 3:00 उर्दू कार्यक्रम अंजुमन के तहत समाप्त फरमाइएगा मुश्ताक सदफ का वकाला उर्दू शायरी का शहजादा शायर शहरियार। कलाम शायर के तहत अपना कलाम पेश करेंगे अब्दुल सलीम और सुनिएगा बजगा खातून का अफसाना बुलंदी का सफर। हमारी सांध्यकालीन सभा में फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या प्रस्तुत किया जाएगा 5:10 पर। हमारे युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी में 5:30 पर आप सुनेंगे सुरक्षित समाज के निर्माण में समुदाय की भूमिका के विषय में रितिका यादव की वार्ता। इस कार्यक्रम के अन्य आकर्षण होंगे फिल्म संगीत। नई पहल का विषय होगा समाधान दीदी और वैज्ञानिकी के तहत हम जानकारी देंगे भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ के विषय में। 6:00 ग्रामीण कार्यक्रम में सुनी जा सकेगी भूमि के समतलीकरण के विषय में संत प्रकाश की वार्ता। इसी कार्यक्रम में लोकगीतों के साथ हम चर्चा करेंगे संतुलित उर्वरक प्रबंधन के विषय में। साथ ही बताया जाएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी।

6:30 पर मस्तक मंडल कार्यक्रम में सुनी जा सकेगी माता पिता और पत्नी के लिए भरण पोषण कानून के विषय में खुरेलाल की वार्ता। फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7:10 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा त्रिलोचन के काव्य में वैचारिकता के विषय में डॉक्टर राजेश कुमार की वार्ता। और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत की कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे एनपी पटवर्धन का राग जोग में ख्याल गायन। श्रोताओं, अभी आप हमारी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। आपकी सेवा में हम आज

भगवान शंकर के श्रीमुख से श्री रामचंद्र के ब्रह्म चिन्मय तथा अविनाशी होने का ज्ञान पाकर पार्वती का संशय मिट गया था। फिर भी उन्होंने ये जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी कि प्रभु ने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया। भगवान शिव ने तब उन्हें वो सभी तथ्य बताए जो अवतार के हेतु कहे जा सकते हैं। इनमें से एक प्रभु द्वारा नारद मुनि के मोहभंग की कथा है। दूसरी कथा है आदि पुरुष मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा को मिले वरदान की। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराणों में मिलती है। देवहूति मनु की कन्या थी, जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और जिन्होंने दीनों पर दया करने वाले समर्थ तथा कृपालु आदि देव भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थी मालिनी नाम्बियर। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम खेती की बातें में आइए अब आपको सुनवाते हैं डॉक्टर आरबी सिंह की वार्ता। विषय है कृषि के मित्र कीट।
1: फसलों को विभिन्न प्रकार के कीट रोगों के आक्रमण से काफ़ी क्षति होती है। इनके नियंत्रण के लिए अभी तक जहरीले कीटनाशक रसायनों का ही उपयोग किया जाता रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होना, कीटों में अवरोधी क्षमता का विकास होना, नए नए कीट रोगों का बढ़ना, प्राकृतिक जीवन चक्र में असंतुलन, खेती के खर्च में वृद्धि के साथ साथ मनुष्यों एवं जानवरों के शरीर में भोजन एवं पानी के द्वारा कीटनाशकों के अवशेषों का बढ़ना, जिससे कई नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। इन सभी समस्याओं से मानव एवं जीवों को बचाने के लिए एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन IPM की विभिन्न विधियों को कृषकों के यहाँ प्रदर्शन करके फसलों एवं सब्जियों में पाए जाने वाले मित्र कीटों का संरक्षण एवं उनकी संख्या में वृद्धि करके जैविक नियंत्रण प्रयोगशालाओं से प्राप्त कर खेतों में छोड़कर बढ़ाना, कृषि क्रियाओं, यांत्रिक क्रियाओं तथा जैविक नियंत्रण को अपनाकर परजीवी, परभक्षी, ट्राइकोडर्मा, नीम आधारित पदार्थ व पैरा फोन ट्रेप आदि के प्रयोग से नाशी जीव रोगों का नियंत्रण किया जा सकता है। प्राकृतिक रूप से फसलों एवं सब्जियों में विभिन्न प्रकार के मित्र कीट जो फसली पौधों पर परभक्षी एवं परजीवी रूप में मौजूद रहते हैं, यह मित्र कीट फसलों को क्षति पहुंचाने वाले कीटों की विभिन्न अवस्थाओं को स्वतः ही नियंत्रण करते रहते हैं, जिससे इन हानिकारक कीटों की संख्या कम हो जाती है। फसलों एवं सब्जियों में पाए जाने वाले किसानों के मित्र कीट जैसे इंद्रगोभ्रंग, क्राइसोपा, सिरफिड मक्खी, मकड़ी, ब्रेकॉन, एपेंटेलिस, किशोरी मक्खी, ग्राउंड बीटल, ट्राइकोग्रामा, रो बीटल, कंपोलेटिस, एपेंटेलिस, टेलीनोमस, ओपियस स्पीसीज, अंड परजीवी, ट्राइकोग्रामा, रो बीटल, कंपोलेटिस, एपेंटेलिस, टेलीनोमस, ओपियस स्पीसीज, अंड परजीवी, अंड इल्ली, मिरेड बग, हरेक कीड़ा, एफीरिकेनिया, मेलानोल्यूका आदि जो फसलों एवं सब्जियों में पाए जाने वाले हानिकारक कीटों जैसे फली छेदक, तना छेदक, फुदका, माहू, सफ़ेद मक्खी, सूत्रकृमि, एपिलेकना, भ्रंग, थ्रिप्स, फली बीटल, पंपकिन कैटरपिलर, शेमी लूपर, स्टिंग बग, कटुआ कीट, आरा मक्खी, लीफ माइनर, भूरा भुनगा कटुआ, कंधी बग, पारेला आदि को नियंत्रित करते हैं, जिनके द्वारा फसलों एवं सब्जियों में प्रमुख रोग जैसे झुलसा रोग, फल सड़न, छोटी पत्ती, मोजैक रोग, विषाणु रोग, सूत्रकृमि, बूम रेप, उकठा रोग, जड़ एवं तना सड़न, पाउडरी मिल्ट्स, तने का झुलसा आदि को समाप्त कर उत्पादन को बढ़ाते हैं। इसलिए खेत में मौजूद मित्र कीट जैसे इंद्रगोभ्रंग, क्राइसोपा, सिरफिड मक्खी, मकड़ी का संरक्षण करें तथा ट्राइकोग्रामा, प्रिटियोपस, ट्राइकोग्रामा, ब्रेशी लेसिस, ट्राइकोग्रामा क्लोनीज परजीवी कीट की 50,000 संख्या प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 5 बार साप्ताहिक अंतर से फसल में छोड़ दें। इंद्रगोभ्रंग परभक्षी कीट 50,000 से 1,50,000 ग्रुप प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छोड़ने से माहू कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। क्राइसोपा परभक्षी के 1,00,000 ग्रुप प्रति हेक्टेयर फसल पर छोड़ने से भी माहू कीट का सफलतापूर्वक नियंत्रण किया जा सकता है। मकड़ी एक परभक्षी कीट है जो दूसरे कीटों को खाकर जिंदा रहने वाली किसानों की मित्र कीट है। औसतन एक

मकड़ी 3-4 महीने के जीवन काल में 200 से 800 अंडे देती है। शिशु कीट और वयस्क दोनों ही पत्ती और पौधे पर लगने वाले कीटों को खाकर जिंदा रहती है। मकड़ी अपने कद के मुताबिक एक दिन में 5 से 15 हानिकारक कीट खा जाती है। फसलों में लगने वाले कीड़ों के साथ साथ उनके ये प्राकृतिक शत्रु खेत में पर्याप्त संख्या में हैं, जो निश्चित रूप से कीड़ों का प्राकृतिक जैविक नियंत्रण हो जाएगा और किसी प्रकार के रासायनिक उपचार की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल पर पारला कीट का उग्र प्रकोप हो गया था और उसने महामारी का रूप धारण कर लिया था।

0: उसने महामारी का रूप धारण कर लिया था। उस समय कृषि विभाग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण से यह बात प्रकाश में आई कि पायरेला का प्राकृतिक परजीवी शत्रु इपीरिकेनिया मेलानोल्यूका भी खेतों में पर्याप्त संख्या में है, और यदि कोई रासायनिक उपचार ना किया जाए तो पायरेला कीट का स्वतः ही प्राकृतिक नियंत्रण हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। जहाँ तक कृषि के मृत कीटों का संबंध है, मृत कीटों में इन सभी कीटों के अलावा मधुमक्खी, रेशम कीट, लाख कीट इत्यादि भी मित्र कीटों के अंतर्गत आते हैं। मधुमक्खियाँ तो परागकणों को एक पौधे से दूसरे पौधे पर स्थानांतरण का कार्य करती हैं, जिससे निषेचन क्रिया को पूर्ण कराने में मदद करके फसल उत्पादन बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती हैं। किसानों को खेत में जैविक उर्वरकों का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे मृदा कणों की संरचना में सुधार के साथ साथ भूमि जनित रोगों से भी फसल की सुरक्षा होती रहे, तथा अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील रूप में परिवर्तित करके पौधों को प्रदूषण से मुक्त रखते हैं। नीम कीटनाशक के प्रयोग से भी माहू, जैसेट, फली बीटल, सफेद मक्खी का सफलतापूर्वक नियंत्रण हो जाता है।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आपने सुनी डॉक्टर आरबी सिंह की वार्ता, विषय था कृषि के मित्र कीट।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: उपभोक्ताओं तक पहुँचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं अब कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद सुनेगा हिंदी में समाचार, और उसके बाद सुने जा सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वो साझा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारियों को कैसे सीमित किया जा सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने कहा है कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 से गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप ए में मैक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं डॉक्टर स्वाति तोमर की वार्ता। आप श्वेत प्रदर के विषय में जानकारी देंगी।
1: श्वेत प्रदर अथवा ल्यूकोरिया, जिसे आम भाषा में सफेद पानी की शिकायत भी कहते हैं, यह महिलाओं में पाए जाने वाली एक आम बीमारी है। यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। नवजात शिशु से लेकर मासिक धर्म शुरू होने तक भी यह बीमारी हो सकती है। इस अवस्था के श्वेत प्रदर को बच्चों का प्रदर कहते हैं। आमतौर पर यह समस्या मासिक स्राव बंद होने के समय होती है और कभी कभी गर्भावस्था में भी हो सकती है। इन सभी अवस्थाओं में स्राव पतला तथा सफेद रंग का होता है, कम मात्रा में होता है और उसमें किसी प्रकार की गंध नहीं आती है एवं यह कुछ समय के लिए ही होता है। इस अवस्था में कुछ समय उपचार करने तथा साफ सफाई रखने तथा खान पान का ख्याल रखने से जल्दी ही ठीक हो जाता है। सफेद पानी की शिकायत की और भी कई वजह हो सकती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है किसी प्रकार का शरीर में इन्फेक्शन होना या चोट लग जाना। साफ सफाई की कमी के कारण भी प्रदर हो सकता है। इसकी एक और बड़ी वजह जिसकी ज्यादातर महिलाओं को जानकारी नहीं होती है वह है पौष्टिक खानों की कमी और कई बार मानसिक चिंता एवं टेंशन के कारण भी यह बीमारी हो सकती है। इन सभी अवस्थाओं में स्राव का रंग सफेद ना होकर या तो पीला और थोड़ा गाढ़ा होता है या फिर हरा अथवा ब्राउन कलर का होता है और उसमें गंध भी आ सकती है। स्राव का रंग कुछ जटिल बीमारियों में जैसे कैंसर अथवा चोट की अवस्था में काला अथवा खून के जैसा लगता है। श्वेत प्रदर की बीमारी में कई तकलीफें होती हैं, जैसे कि कमजोरी होना, सिर में दर्द होना, चक्कर आना, बहुत जल्दी थकान हो जाना, कमर में दर्द होना, पैरों में भड़कन होना, बीपी लो होना, आलस तथा सुस्ती रहना, थोड़ा सा काम करने पर हाथ पैरों में दर्द होना, पेट के निचले भाग में दर्द होना जो कि मासिक स्राव के समय ज्यादा हो जाता है। ज्यादातर महिलाएं इस बीमारी को छुपाती हैं, इस बीमारी के बारे में बताने में शर्म महसूस करती हैं और आलस मानती हैं। वे सोचती हैं कि यह एक गंदी बीमारी है, इसलिए इसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए वे इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस बीमारी को आरंभिक अवस्था में ही जल्दी से जल्दी उपचार की आवश्यकता होती है। इसीलिए बीमारी के शुरू होते ही महिलाओं को अपने आसपास किसी लेडी डॉक्टर से उचित परामर्श लेकर उपचार करना चाहिए। ल्यूकोरिया यानी कि श्वेत प्रदर को होम्योपैथिक चिकित्सा के द्वारा जड़ से खत्म किया जा सकता है। जितनी जल्दी इस बीमारी के बारे में पता चलेगा उतनी ही जल्दी इसका उपचार करके ठीक किया जा सकता है। महिलाओं को इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही इसका इलाज करा लेना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर इसके कारण और भी बड़ी बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। सही समय पर इसका पता लगना और इलाज होना बहुत जरूरी है। यदि सही समय पर होम्योपैथिक इलाज शुरू कर दिया जाए तो कम से कम समय में इसे ठीक किया जा सकता है। दवाओं के साथ साथ खाने पीने का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। खाने पीने में फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही, दालें तथा मेवे अति आवश्यक हैं। ल्यूकोरिया से ग्रसित महिलाओं को तली एवं चिकनाई वाली चीजें, वादी की चीजें एवं खटाई तथा तेज मसाले वाली चीजों का परहेज करना चाहिए एवं गर्म तासीर वाली वस्तुएं जैसे चाय, कॉफी इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। खाने पीने के साथ पूरी नींद लेना भी आवश्यक है और थोड़ा बहुत व्यायाम भी लाभदायक रहेगा। महिलाओं को रोज सुबह ताजा हवा में टहलना अथवा योग करना चाहिए, इसके साथ पूरा आराम भी करना चाहिए। होम्योपैथिक दवा, सही खान पान, पूरा आराम, अच्छी नींद और व्यायाम इत्यादि सबकी सहायता से इस रोग को हमेशा के लिए नष्ट किया जा सकता है। सामान्य तौर पर महिलाएं इस अवस्था में या तो कुछ घरेलू उपचार कर लेती हैं या किसी मेडिकल स्टोर से स्वयं ही दवा ले लेती हैं, जिससे रोग ठीक होने के बजाय और बढ़ जाता है। इसलिए किसी अच्छे चिकित्सक से उचित परामर्श लेकर इलाज करा लेना चाहिए, जिससे जल्दी से

0: जल्दी इस बीमारी को ठीक किया जा सके।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी श्वेत प्रदर के विषय में डॉक्टर स्वाति तोमर की वार्ता। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं और अब लीजिए सुनिए संवेद स्वर में ये देशकान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में देशगान। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही क्षण में।

0: दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है।
1: सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार,

0: समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को संबोधित किया, कहा किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश के 17 जिलों में भी आयोजित कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग्स के जुड़े दो संदिग्धों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी नेटवर्क के संपर्क में थे बुलंदशहर जिले के दोनों आरोपी। और आज आगरा में आयोजित हो रही है ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक, चीन, रूस और ब्राजील सहित 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ग्राम पंचायत डीह के हिंदूखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विरासत की रक्षा के साथ साथ विकास यात्रा को निरंतर गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री योगी ने कहा कि लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे आसपास के जिलों को बेहतर आवागमन सुलभ होगा।
1: अब लखनऊ में विकास जो भी होगा वो लखनऊ तक सीमित नहीं होगा, वह सीधे उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगा। और इसके लिए जैसे दिल्ली के अंदर आप देखते होंगे, दिल्ली से देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक पहुंच गई है। एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं लखनऊ से हम उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल के एक नए प्रस्ताव को लेकर के भी चल रहे हैं। एक रिंग रोड बनेगा पूरा चारों ओर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, ताराबंकी, रायबरेली, ये सब जिले आपस में जुड़ेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने कल ही कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर आयोजित कार्यशाला में भी हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती कृषि को अधिक लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का सशक्त माध्यम है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें सभी सुविधाएं दे रही है।
1: प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों को फसल की गारंटी की सुरक्षा मिली, आपदा में गारंटी की सुरक्षा मिली। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की गारंटी मिली, पहली बार अन्नदाता किसान के लिए प्रक्यूरमेंट के सेंटर स्थापित हुए और पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा। यानी एक एक कड़ी को जोड़ते गए, आपको जो फर्टिलाइजर कॉपरेटिव सोसाइटी में मिलती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस बैग की कीमत होती है 4000 रुपए, यहाँ पे यूरिया का दाम आपको मिलता है उसका 1/4 से भी कम में। ये सारी सब्सिडी भारत सरकार भरती।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे। वो अयोध्या नगर निगम की कुल 291 करोड़ रुपए की लागत वाली 245 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री देश भर के लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। योजना के तहत प्रदेश के लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी और मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी सेक्टरों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में बहुत मजबूती से समाया हुआ है और देश की सीमाओं को पार कर चुका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे प्राचीन ग्रंथों से लेकर वैश्विक मान्यता तक योग ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में अपनी जड़ें जमाए रखते हुए सीमाओं को पार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद

0: के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड UPATS ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े बुलंदशहर जिले से दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन पर गैंग के आतंकी नेटवर्क से जुड़कर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित नेटवर्क के संपर्क में थे। आगरा में आज भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पहले ब्रिक्स MSME फोरम और तीसरी SME वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इस कार्यक्रम की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखी गई है। ब्रिक्स फोरम की बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, रूस, दक्षिण अफ्रीका और भारत सहित ब्रिक्स देशों और सहयोगी देशों के सहित नीति निर्माता, उद्योगपति और उद्यमी हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में MSME के लिए वित्त और तकनीक तक पहुंच, सतत विकास तथा वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स SME फोरम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और MSME के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण विकसित करने की उम्मीद है। ये फोरम सहभागी देशों के ज्ञान का आदान प्रदान करने और उभरते अवसरों की पहचान करने और समावेशी और सतत आर्थिक विकास में योगदान देने वाली साझेदारियां बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आंकलन के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान के छठवें चरण की शुरुआत कल लखनऊ में प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए बच्चों का सुपोषित होना बहुत जरूरी है। मौसम विभाग ने आगामी 24 जून तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस के क्रमिक बढ़ोतरी की भी संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के पश्चिमी जिलों में आज और कल, जबकि पूर्वी जिलों में आज कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को संबोधित किया। कहा, किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश के 17 जिलों में भी आयोजित कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। UPATS ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े दो संदिग्धों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी नेटवर्क के संपर्क में थे बुलंदशहर जिले के दोनों आरोपी और

0: आज आगरा में आयोजित हो रही है ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक। चीन, रूस और ब्राजील सहित 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मन में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी हरप्रीत कौर का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले कुछ सूचनाएं परीक्षार्थियों के लिए। श्रोताओं, चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की संयुक्त पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 21 जून को दोबारा होने जा रही है। इस पुनर्परीक्षा के लिए शहर में 20 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें बायोमेट्रिक सिस्टम से सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत किया गया है। इसके लिए एनटीए ने परीक्षा केंद्रों पर डिजिटल अपराध रोकने के लिए अत्याधुनिक 5G नेटवर्क जैमर्स भी लगाए हैं। इसके अलावा फेस रिकग्नाइजेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली अफवाहों पर नियंत्रण करने के लिए सख्त डिजिटल निगरानी भी इस पर रखी जाएगी। एनटीए ने 14 जून को प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। नए प्रवेश पत्र होने के कारण इस बार कई अभ्यर्थियों के रोल नंबर और परीक्षा केंद्र भी बदल दिए गए हैं। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे की पाली में होगी। इसके लिए केंद्रों में प्रवेश की प्रक्रिया सुबह 11 बजे आरंभ कर दी जाएगी, जबकि 1:30 बजे के बाद किसी भी केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो परीक्षा के निर्धारित समय से पहले ही केंद्र पर पहुंच जाएं। परीक्षा में एनटीए ने ड्रेस कोड को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी है। केंद्र पर अभ्यर्थी सिर्फ हल्के आधी आस्तीन यानी कि हाफ स्लीव्स कपड़े पहनकर ही प्रवेश कर सकेंगे। जूते पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। सिर्फ चप्पल या सैंडल पहनने की अनुमति होगी। भारी बटन जेब या कढ़ाई वाले कपड़े वर्जित रहेंगे। इसके साथ साथ केंद्र के अंदर मोबाइल, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, कागज, पाउच या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पेन परीक्षा केंद्र पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। सिर्फ पारदर्शी पानी की बोतल ले जाने की ही अनुमति होगी। ओएमआर शीट भरते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि छोटी सी गलती भी उत्तर पुस्तिका को अमान्य कर सकती है। रफ कार्य के लिए प्रश्न पुस्तिका में दिए गए निर्धारित स्थान का उपयोग करें। परीक्षा के अंतिम 15 मिनट सिर्फ ओएमआर की रीचेकिंग के लिए रखें और नए प्रश्न हल करने का जोखिम ना लें।

इस बार अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए प्रश्न पुस्तिका में 4 अतिरिक्त ब्लैंक पेज जोड़ दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर नया रंगीन प्रवेश पत्र जरूर साथ रखें, उस पर फोटो अवश्य लगाएं, साथ ही मूल फोटो पहचान पत्र और 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ रखें। श्रोताओं, छात्रों को अंतिम दिनों में नए टॉपिक पढ़ने से बचना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखना होगा। शांत मन, सही समय प्रबंधन और नियमों का पालन ही इस परीक्षा में सफलता दिलाएगा। तो आप घबराएं नहीं और अफवाहों पर ध्यान न दें। आपकी तैयारी अच्छी है, यही ध्यान में रखकर आप परीक्षा देने जाएं।

12वीं के बाद करियर का सही चयन करना विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है। इस दिशा में सही मार्गदर्शन के उद्देश्य से आज और कल यानी कि 20 जून को कैलाशपुरी स्थित होटल भावना क्लार्कसन में एजुकेशन फेस्ट 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में करियर विशेषज्ञों के काउंसलिंग सत्र भी होंगे। हर घंटे आकर्षक पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। 10वीं और 12वीं के मेधावियों को प्रमाण पत्र और पदक देकर सम्मानित किया जाएगा। पंजीकरण के लिए QR कोड स्कैन किया जा सकता है और अधिक जानकारी के लिए संपर्क नंबर नोट कर लें। नंबर है 8937030009 और दूसरा नंबर है 8899155904। श्रोताओं, इन नंबरों का मिलान फिर से कर लें या जिन्होंने नंबर अभी तक नोट नहीं किया है इस नंबर को पुनः नोट कर लें। नंबर है 8937030009 और दूसरा नंबर है 8899155904।

परीक्षार्थियों के लिए कुछ और सूचनाएं हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा शनिवार को है। इसके लिए विश्वविद्यालय में 10 केंद्र बनाए गए हैं। 2 घंटे की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। विश्वविद्यालय की 1500 पीएचडी सीटों के लिए 4000 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा देंगे। 20 जून को पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय के खंडारी परिसर में 7, पालीवाल परिसर में 2 और संस्कृति भवन में 1 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक परीक्षा होगी। 2 घंटे की परीक्षा ओएमआर पर परीक्षा कराई जाएगी। 2 घंटे की प्रवेश परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे। इसमें से 30 प्रश्न रिसर्च मेथोडोलॉजी के और जनरल एप्टीट्यूड के होंगे, जबकि 70 प्रश्न विषय से संबंधित होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पर अपना फोटो लगाकर लाना होगा। ये वही फोटो होगा जैसे ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरते समय अपलोड किया गया था। इसके साथ ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश मिलेगा।

श्रोताओं, इसके साथ साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने बीएड, बीए, एलएलबी और एलएलबी की परीक्षा प्रणाली में बदलाव कर दिया है। अभी तक बीएड और विधि में वार्षिक प्रणाली से परीक्षा हो रही थी, मगर सत्र 2026-27 से बीएड और विधि की परीक्षा सेमेस्टर प्रणाली से होगी। वर्ष में एक की जगह दो बार परीक्षा कराई जाएगी।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। एएसआई ने आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और मेहताब बाग में योग कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। यहां विभाग

अज्ञेय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ क्षेत्रीय नागरिक भी योग कर सकेंगे। मेरठ स्थित मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए खेल संबंधी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीपीईएस के लिए 50 सीटें, बीएससी योगा के लिए 40 सीटें, दो वर्षीय कोर्स में 20 सीटें, एमएससी योगा में 15 सीटें, इनके लिए आवेदन शुरू है। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एक वर्षीय और विभिन्न खेलों में पीजी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग जैसे कि एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, घुड़सवारी, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती और योग के लिए भी प्रवेश खुले हैं।

श्रोताओं, कक्षा 9 से 12 तक में प्रवेश लेने और छात्र छात्राओं के आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड करने की समय सारणी यूपी बोर्ड ने जारी कर दी है। कक्षा 9 और 11 में प्रवेश की अंतिम तिथि 5 अगस्त है। हाईस्कूल कंपार्टमेंट परीक्षा उत्तीर्ण करने और स्क्रूटनी के फलस्वरूप हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण छात्र छात्रा कक्षा 11 में 20 अगस्त तक प्रवेश ले सकेंगे। इसी तरह कक्षा 10 और 12 में प्रवेश लेने और प्रधानाचार्य द्वारा परीक्षा शुल्क प्राप्त करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त निश्चित की गई है। बोर्ड परीक्षा के लिए शुल्क का भी निर्धारण कर दिया गया है।

राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता पुरुष और महिला परीक्षा 2025 के सामान्य अध्ययन और सभी विषयों की उत्तर कुंजी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वेबसाइट पर जारी कर दी है। अभ्यर्थियों को प्रश्नों और उनके उत्तरों का मिलान करने पर किसी भी तरह की त्रुटि या विसंगति प्रतीत होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज करानी होगी। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 23 जून शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में नीलीट मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से ओ लेवल और ट्रिपल सी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभ्यर्थी 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हार्ड कॉपी आवश्यक दस्तावेजों सहित 10 जुलाई तक कार्यालय में जमा करनी होगी।

श्रोताओं, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है और आप सुन रहे हैं दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। आइए अब आपको जानकारी दे दें कुछ खोए हुए व्यक्तियों के विषय में। शालिनी पुत्री राम निवास निवासी सविता नगर थाना टुंडला फिरोजाबाद से दिनांक 10

मई सन 2026 से लापता है। शालिनी की उम्र 24 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, चेहरा लंबा और रंग की हुआ है। गुमशुदगी के समय शालिनी ने गुलाबी सूट पहना हुआ था। शालिनी के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना टुंडला फिरोजाबाद के पते पर सूचित करें।

फिरोजाबाद से प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार विकास पुत्र सत्यदेव निवासी नगला भाऊ थाना फिरोजाबाद से लापता है। विकास की उम्र 25 वर्ष, कद 5 फुट 8 इंच, चेहरा गोल और रंग की हुआ है। गुमशुदगी के समय विकास ने काली टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था। विकास के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना फिरोजाबाद के पते पर सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार राहुल पुत्र योगेश कुमार निवासी नया रसूलपुर एकता नगर गली नंबर 14 जिला फिरोजाबाद से दिनांक 3 अप्रैल 2026 से लापता है। राहुल की उम्र 25 वर्ष, रंग सांवला और राहुल मानसिक रूप से कमजोर है। राहुल के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना रसूलपुर फिरोजाबाद के पते पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई।

शुदो आज विश्व सिकल सेल दिवस है। विश्व सिकल सेल दिवस हर साल आज ही के दिन 19 जून को मनाया जाता है। ये दिन सिकल सेल रोग यानी कि SCD यानी कि सिकल सेल रोग के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने, मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने और इस आनुवंशिक रक्त विकार से लड़ने के लिए समर्पित है। इस वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस का विषय जीवन रक्षा के अंतर को कम करना, सिकल सेल देखभाल में समानता यानी कि ब्रिजिंग द सर्वाइवल गैप इक्विटी इन सिकल सेल केयर है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में मरीजों के स्वास्थ्य परिणामों में मौजूद असमानताओं को दूर करना है। इसके लिए जानना जरूरी है कि सिकल सेल रोग क्या है। सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाएं डिस्क के आकार की और लचीली होती हैं, जिससे वे रक्त वाहिकाओं में आसानी से प्रवाहित हो पाती हैं। सिकल सेल रोग में ये कोशिकाएं कठोर हो जाती हैं और अर्धचंद्राकार या हसिए का आकार ले लेती हैं। ये कोशिकाएं आपस में गुच्छे बना लेती हैं और रक्त प्रवाह को बाधित करती हैं और सामान्य कोशिकाओं की तुलना में कहीं अधिक तेजी से नष्ट हो जाती हैं, जिसे एनीमिया और गंभीर दर्द के दौरे पड़ते हैं, जिन्हें सिकल सेल संकट के रूप में भी जाना जाता है। श्रोताओ, इसके साथ साथ ये स्थिति वंशानुगत होती है। जब बच्चे को दोनों माता पिता से जीन प्राप्त होता है, जिन लोगों को यह जीन केवल एक माता पिता से विरासत में मिलता है उन्हें सिकल सेल ट्रेट का वाहक कहा जाता है। उनमें आमतौर पर कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन वे जीन को अपने बच्चों में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसलिए आनुवंशिक परामर्श जोखिम वाले दंपतियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवारक उपाय है। अगर लक्षण की बात करें तो बार बार होने वाले तीव्र दर्द के दौरे, जो आमतौर पर छाती, पीठ, पेट और अंगों को प्रभावित करते हैं, सिकल सेल संकट के रूप में जाने जाते हैं। इसके साथ साथ लगातार एनीमिया के कारण थकान, पीलापन और सांस लेने में तकलीफ होती है। पीलिया, जिससे त्वचा और आंखों का सफेद भाग पीला पड़ जाता है। सिकल सेल रोग एक आजीवन स्थिति है। निरंतर चिकित्सा देखभाल इसके लक्षणों को काफी हद तक कम कर सकती है और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है। इसके लिए थेरेपी, जो दर्दनाक संकटों की आवृत्ति और रक्त आधान की आवश्यकताओं को कम करती है। इसके साथ साथ अस्थि मज्जा या स्टेम सेल प्रत्यारोपण वर्तमान में योग्य रोगियों के लिए स्थापित उपचार विकल्प है। संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए निवारक एंटीबायोटिक उपचार और टीकाकरण कार्यक्रम भी इसमें लाभदायक होते हैं। अगर आप इस बीमारी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के

करना चाहते हैं तो अपनी निकटतम जांच सुविधा का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट आप देख सकते हैं। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, रखें अपना और अपनों का ख्याल।

और इसी के साथ कार्यक्रम आसपास संपन्न करने की हरप्रीत कौर को इजाजत दीजिए। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय प्रातः के 8 बजने को हैं। अब कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो

0: दिवस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, एक दिन नहीं हर दिन, योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
4: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
4: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
5: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस महीने सातवें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमराए।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।

0: पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पूरे जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से

0: अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में एफआईएच महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल खत्म नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कूचक्र।
3: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under

0: नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कम से कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। अमरीका ने ईरान के साथ समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है। और हॉकी में न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत ने उरुग्वे को 2-3 से हराकर मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत को सिर्फ तिजारत से ही परखा जाता था, लेकिन आज भरोसा भी उतना ही अहम बन गया है जितनी कि तिजारत है।
1: हर देश रिलायबल सप्लाई चेन चाहता है, हर देश स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है, हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
0: जनाब मोदी ने यह भी कहा कि मुल्क मुख्तलिफ शोबों में सरमाया लगा रहा है जिससे आने वाली नस्लों के लिए तरक्की, इख्तिरा और मौकों को तकवीत मिलेगी। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने फ्रांस के शहर एवियों में G7 की मीटिंग के दौरान एतमाद और भरोसे पर मबनी साझेदारी की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस के लिए भारत का पैगाम बिल्कुल वाज़े था कि आलमी हुक्मरानी तभी मुअस्सर साबित हो सकती है जब ये सबकी शमूलियत वाली हो। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि वो फ्रांस में एक ऐसे वक्त आए हैं जब उनकी सरकार ने 12 साल मुकम्मल कर लिए हैं और इन बरसों में मुख्तलिफ शोबों में भारत में बड़ी तब्दीलियां आई हैं।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: इससे कबल फ्रांस में भारतीय बिरादरी ने बोंजोर मोदी या हेलो मोदी और भारत माता की जय के नारों के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खैर मकदम किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दो मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दौरे के तीसरे मरहले में पेरिस का कामयाब और मुफीद दौरा मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि आने वाले वक्त में भारत फ्रांस दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी। इधर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के इख्तिताम पर जनाब मोदी के लिए हिंदी जबान में एक खसूसी अलविदाई वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मंडी से साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे।
0: पेश है वजीर आजम के पेरिस के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामा निकार की एक रिपोर्ट।
3: पेरिस में नीस में भारत इनोवेट्स और वीवा टेक 2026 का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि दुनिया भारत की बढ़ती हुई इख्तराई कुव्वत का मुशाहिदा कर रही है। वीवा टेक सरबराह मीटिंग में जनाब मोदी ने आलमी इख्तराकारों पर जोर दिया कि वो भारत के साथ मिलकर सभी के फायदे के लिए काम करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि टेक्नोलॉजी का फायदा सभी को मिलना चाहिए। इस दौरे में भारत और फ्रांस ने तिजारत, तकनीक और आलमी सिक्योरिटी के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने का इरादा किया। फ्रांस की सरकर्दा टेक कंपनियों ने भारत की तरक्की के सफर में एतमाद का इजहार किया और मैन्युफैक्चरिंग, मसनूई जहानत और ग्रीन बहरी बुनियादी ढांचे के शोबों में और ज्यादा शमूलियत के मंसूबों का ऐलान भी किया। पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत

0: 2,400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। इस तरगीबात से मुल्क में रोजगार के 15 लाख मौके पैदा करने में मदद मिली है। लेबर और रोजगार महकमे के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पिछले साल अगस्त से अब तक 63 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन को बाजाबता अफरादी कुव्वत में शामिल किया गया है, जिनमें तकरीबन 30% खवातीन हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मस्कुर स्कीम कारकुनों और आजिरों की बाजाबता मईशत में शामिल होने के लिए हौसला अफजाई की खातिर तैयार की गई है। इसके तहत पहली बार के मुलाजमीन 15,000 रुपए तक की तरकीब हासिल करने के अहल होंगे। इस तरह उन्हें अफरादी कुव्वत में शामिल होने पर अहमियत की हामिल मदद मिलेगी, जबकि इजाफी रोजगार के मौके दस्तियाब कराने वाले आजिरों को हर इजाफी मुलाजिम रखने पर 3,000 रुपए माहाना तक की तरकीब मिल सकेगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पिछले साल यकुम अगस्त को नाफिज हुई थी। इसका मकसद रोजगार के मौके पैदा करने को फरोग देना और मईशत के सभी शोबों में सोशल सिक्योरिटी दायरे को वसत देना है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग पर खास जोर दिया गया है। इसका मकसद 2 साल के अरसे में मुल्क में मुलाजिमत के 3.5 करोड़ से ज्यादा मौके दस्तियाब कराना है। दिल्ली से प्रिया मॉन्डल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: ज़िराअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने 4 रियासतों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। वजारत के मुताबिक तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कीमतों की इमदादी स्कीम के तहत ये सरकारी खरीद की जाएगी। साल 2026 के मौसम गर्मा के सीजन के लिए मंजूरी के तहत उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सरकारी खरीद होगी। वहां 48,298 मैट्रिक टन मूंग, 97,970 मैट्रिक टन उड़द और 41,718 मैट्रिक टन मूंगफली की सरकारी खरीद की मंजूरी दी गई है। गुजरात में इस मौसम गर्मा के सीजन के लिए 18,250 मैट्रिक टन मूंग की सरकारी खरीद की मंजूरी दी गई है। मंजूरशुदा सरकारी खरीद की कम अज कम इमदादी कीमत की मालियत 160 करोड़ रुपए से ज्यादा रहने का तखमीना लगाया गया है। वजीर मौसूफ ने रबी मार्केटिंग सीजन के तहत तमिलनाडु के लिए मूंग की सरकारी खरीद की हद 885 मैट्रिक टन से बढ़ाकर 990 मैट्रिक टन करने की मंजूरी भी दी है। इस तरह फसल की 105 मैट्रिक टन इजाफी सरकारी खरीद हो सकेगी। जनाब शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के लिए मौसम गर्मा के सीजन के दौरान 2,115 मैट्रिक टन मूंग की सरकारी खरीद की मंजूरी दी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैनुल अक्वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। मजकूरा दिन सिकल सेल की बीमारी SCD के बारे में आलमी सतह पर बेदारी बढ़ाने के मकसद से हर साल मनाया जाता है। इस दिन बीमार अफराद को लाहिक चैलेंजों को उजागर किया जाता है और बेहतर तहकीक, फंडिंग और मुसावियाना इलाज मुआलजे की हिमायत की जाती है। मध्य प्रदेश के अपने दौरे के बाद सदर जमहूरिया अपनी आबाई रियासत ओडिशा के 2 रोजा दौरे के लिए आज दोपहर मयूरभंज जिला पहुंचेंगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मयूरभंज जिले में अपने क्याम के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अवामी फलाह बहबूद, देही तरक्की और कबायली बिरादरियों को बाइख्तियार बनाने पर मरकूज प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। रायरंगपुर में सदर जमहूरिया एम्स भुवनेश्वर की जानिब से मुनाकिद एक हेल्थ कैंप पहुंचेंगे और देही इलाकों में पाइपलाइन के जरिए पानी की फराहमी से मुतालिक एक बड़े मरबूत प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए खसूसी सर्किट हाउस और नए तामीरशुदा रायरंगपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। आकाशवाणी भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन लद्दाख के लेह में आज से शुरू होने वाली योग के बैनुल अक्वामी दिन की तकरीबात में शिरकत करने के लिए वहां के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। ये जनाब राधाकृष्णन का मरकज के जेर इंतजाम इलाके का पहला सरकारी दौरा होगा, जो इस महीने की 21 तारीख तक जारी रहेगा। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिल जिक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए हैं। आज हम शिमाल मशरिक में बड़ी तब्दीली लाने से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

साथियों, नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे समीर की शब्द रचना। स्वर थे उदित नारायण और अलका याग्निक के फिल्म थी राजा।

श्रोताओं, हिमी से शमिया के संगीत निर्देशन में कार्यक्रम का ये गीत आपने सुना। अलका याग्निक, कुमार सानू और सोनू निगम की स्वरों में बोलते सुधाकर शर्मा के फिल्म थी कुरुक्षेत्र। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है विरासत, स्वर है कुमार सानू और चित्रा के, शब्द रचना जावेद अख्तर की है, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

साथियों, महाराजा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम को। गीतकार थे समीर, संगीतकार थे नदीम शमन। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत, फिल्म है जानशी। स्वर है सोनू निगम और अलका याग्निक के। गीतकार है प्रवीण भारद्वाज, संगीतकार है आनंदराज आनंद।

सोनू निगम और अलका याग्निक के गाए इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 के रोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब कुछ ही पलों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे जिले की हलचल।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संभल और बाराबंकी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संभल जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अरुण गोस्वामी का।
2: प्रदेश भर में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 20 मई से प्रारंभ हो गया है। इसके तहत प्रगणक एवं सुपरवाइजर घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण एवं गणना कर रहे हैं। जनगणना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 प्रगणकों को उपजिलाधिकारी चंदोशी नीतू रानी द्वारा कार्यालय पर एक पुष्प तथा पुस्तक तथा शॉल देकर सम्मानित किया। जनपद संभल में जनगणना 2027 के प्रथम चरण हेतु 4080 प्रगणक एवं 680 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। ये सभी कार्मिक 20 जून 2026 तक घर घर जाकर सूचना एकत्रित करेंगे। जनपद प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई है कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण में पूछे जाने वाले कुल 33 प्रश्नों के सही एवं सटीक उत्तर उपलब्ध कराएं, क्योंकि इन आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों की रूपरेखा तैयार की जाती है। साथ ही नागरिकों से यह भी अपेक्षा की गई है कि वे त्रिगणकों को

0: आवश्यक सहयोग प्रदान करें जिससे ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य सुचारू, पारदर्शी एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिनांक 5 जून से 21 जून 2026 तक आयोजित समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान चल रहा है। अभियान के अंतर्गत कुल 9 प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। प्रथम कार्यक्रम के रूप में विश्व पर्यावरण दिवस एवं एक पेड़ माँ के नाम थीम के तहत जनपद में वृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया। जनपद स्तरीय मुख्य कार्यक्रम वन विभाग एवं जिला गंगा समिति के संयुक्त तत्वावधान में शांति वन बबराला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल, पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई एवं मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत हरी संकरी वृक्षारोपण करते हुए पीपल, बरगद एवं पाखड़ के पौधे रोपित किए गए। भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक गिन्नौर अजीत कुमार, राजू यादव तथा नगर पंचायत बबराला के अध्यक्ष हर्षवर्धन बासणे द्वारा त्रिवेणी वृक्षारोपण के अंतर्गत पीपल, बरगद एवं नीम के पौधे लगाए गए। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान केवल वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं बल्कि मातृ सम्मान एवं पर्यावरण संरक्षण का जन आंदोलन है। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता से ही हरित एवं स्वच्छ पर्यावरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जनपद संबल के लिए वन विभाग, ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग तथा नगर विकास विभाग के सहयोग से 4,56,000 पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसे 100% पूर्ण कर लिया गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र सैनी के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय संबल परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत नीम, अर्जुन एवं गुलमोहर सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। साथ ही सफाई अभियान चलाकर प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया तथा अस्पताल परिसर से श्री शंकर चौराहे संबल तक जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। सड़कों पर होने वाले हादसों में लोगों की जान बचाने के लिए मदद करने वालों के लिए अब मददगार नहीं राहगीर नाम से पुकारा जाएगा। रास्तों या हाईवे पर होने वाले हादसों में मृत्यु दर कम करने एवं घायलों को तत्काल मदद पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में राहगीर गुड सैमिट रिटर्न योजना लागू की गई है। इस योजना का मकसद लोगों को मदद के लिए प्रेरित करना और उन्हें सम्मानित करना है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने दुर्घटनाओं में गोल्डन आवर यानी कि हादसे के तुरंत बाद का सबसे महत्वपूर्ण समय के भीतर घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने वाले मददगारों गुड सैमिटन के लिए ये अहम पहल की है। प्रदेश में ऐसे मददगारों को राहगीर के नाम से जाना जाएगा और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए दी जाने वाली इनामी राशि को 5,000 रूपए से बढ़ाकर सीधे 25,000 रूपए कर दिया गया है। राहगीर योजना के अंतर्गत 5 शर्तों के आधार पर 25,000 रूपए का इनाम राहगीर को दिया जाएगा। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में यूपी में स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ अवार्ड टू द गुड सेमे रिटर्न को राहगीर योजना के रूप में लागू किया गया है। जनवरी 2025 से लेकर अब तक के मददगारों का डेटा जुटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। विकासखंड गिन्नौर के ग्राम बागव में जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा एक जनपद 5 नदियों थीम के अंतर्गत मंत्रोच्चारण एवं पूजा अर्चना के साथ जनपद में एक जनपद 5 नदियों के अंतर्गत जल संरक्षण, जल संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विलुप्त प्राय एवं अस्तित्वहीन होती जा रही नदियों के पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में बर्दमार नदी के पुनरोद्धार का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। नदी की पुरानी पहचान को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से अतिक्रमण हटाने, खुदाई, पौधारोपण तथा अन्य संरक्षण संबंधी कार्य किए जाएंगे। साथ ही मनरेगा योजना के अंतर्गत भी कार्य कराए जाएंगे जिससे स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। संबल में जगह जगह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सप्ताह का शुभारंभ हवन एवं आहुतियों के साथ किया गया। योगाचार्य ने निरंतर योग करने से शरीर में पनप रही तरह तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलने का विश्वास दिलाया। जनपद संबल में चंदोसी, भेजोई, संबल, बबराला, गिन्नौर, असमौली के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में योग दिवस सप्ताह का आयोजन किया गया। अलग अलग स्थान पर सरकार के निर्देशन अनुसार योगाचार्य ने योग के आसन कराए जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे।
1: संभल जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज अहमद का।
2: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर जनपद भ्रमण पर आए प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा कई ऐसी योजनाएं लाई गई हैं जिनका लाभ आम जनता को पहले कभी नहीं मिल रहा था। डिप्टी सीएम ने कहा कि पहले कांग्रेस के कार्यकाल में मनमानी होती थी, आज भाजपा के कार्यकाल में हर क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर जनपद में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ उत्साह, जन भागीदारी एवं पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ किया गया। जनपद के विभिन्न स्थलों पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों

0: विद्यार्थियों तथा आम जन ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत ने जिला पंचायत कार्यालय परिसर में पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। वहीं जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने कैंप कार्यालय परिसर में मौन श्री का पौधारोपित करते हुए कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं बल्कि जीवन संवेदना और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी के प्रतीक हैं। उन्होंने जनपद वासियों से अधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विगत दिनों नगर स्थित राजकीय संप्रेक्षण गृह पहुंचकर स्थापित कंप्यूटर लैब का उद्घाटन तथा सर्वाइकल कैंसर जागरूकता एवं HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ व विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने संप्रेक्षण गृह में निवासरत किशोरियों से आत्मीय संवाद कर उनके जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भविष्य की योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बेटियों को शैक्षणिक किट प्रदान करते हुए कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्ति निर्माण, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का आधार है। उन्होंने बेटियों से आह्वान किया कि वे नियमित अध्ययन के साथ साथ विभिन्न रोजगार परक एवं कौशल आधारित गतिविधियों में भी दक्षता प्राप्त करें जिससे वे भविष्य में ससम्मानजनक एवं स्वावलंबी बन सकें। मानसून और संभावित बाढ़ संकट को देखते हुए रामसनीघाट तहसील प्रशासन ने कोयला और खेरी तटबंध पर व्यापक आपदा प्रबंधन मार्ग ड्रिल का आयोजन किया। अभ्यास के दौरान बाढ़ जैसी आपात परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखा गया। मार्ग ड्रिल में नदी में नाव पलटने, लोगों के डूबने, पशुओं के पानी में फंसने तथा बाढ़ से उत्पन्न अन्य आपात स्थितियों का वास्तविक प्रदर्शन किया गया। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों और पशुओं को सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और संसाधनों की उपलब्धता की भी जांच की गई। SDM अनुराग सिंह ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिलाधिकारी शान प्रताप सिंह ने विगत दिनों नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला समय देश एवं विश्व के लिए अनेक चुनौतियों भरा हो सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां भी मानवीय संकट का कारण बन सकती हैं। ऐसे समय में मानवता की सेवा एवं राहत कार्यों में सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। जिलाधिकारी ने नागरिक सुरक्षा संगठन में चयनित चीफ वार्डन, डिप्टी चीफ वार्डन, स्टाफ ऑफिसर, वार्डन सेवा तथा सेक्टर वार्डन पदों पर नियुक्त स्वयंसेवकों को बधाई देते हुए उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर शासन के निर्देशानुसार जनपद में 5 जून से 21 जून तक व्यापक स्तर पर समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं, विकास कार्यों, सुशासन की उपलब्धियों तथा आम जन के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तनों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के अंतर्गत आयोजित सभी कार्यक्रम सेवा, सुशासन एवं सम्मान के मूल भाव के अनुरूप जन केंद्रित, प्रभावी एवं सहभागिता पूर्ण हो। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में 15 से 21 जून 2026 तक आयोजित किए जा रहे योग सप्ताह का शुभारंभ रविवार को राजकीय इंटर कॉलेज JIC ऑडिटोरियम बाराबंकी में भव्य रूप से सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्यमंत्री खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति सतीश चंद शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में योग प्रशिक्षकों, छात्र छात्राओं, अधिकारियों एवं आम जन ने सहभागिता की।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल समाप्त हुई। मीडियम वेव 401
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, गांधी चर्चा के अंतर्गत आइए आपको सुनवाते हैं सदाचार के संबंध में गांधी जी के विचार।

प्रस्तुत हैं सदाचार के संबंध में गांधी जी के विचार। सदाचार के बिना अक्षर ज्ञान व्यर्थ है। कर्तव्य परायण रहिए और अशांति में भी शांति का अनुभव करना सीखिए। हमारा आनंद हमारे धर्म पालन में हो, काम की सफलता में अथवा संयोगों की अनुकूलता में नहीं। मनुष्य तो रंक प्राणी है, वो राजा तो तभी बनता है जब अहंकार छोड़कर ईश्वर में समा जाता है। समुद्र से अलग हुई बूंद किसी के काम नहीं आती, लेकिन समुद्र में समा जाने से वो अपनी छाती पर इस बड़े जहाज का बोझ संभाल रही है। इसी तरह यदि हम आश्रम में समाना और उसके द्वारा दुनिया में अर्थात ईश्वर में समाना सीख लें तो पृथ्वी का भार उठाने वाले माने जाएं। किंतु तब तो मैं तू मिटकर वही रह जाता है। अच्छा ये है कि हम कोई काम हाथ में न लें, अगर लें तो करते हुए मर मिटें। जो ऐसी दृढ़ता से काम करता है भगवान उसकी सहायता करते ही हैं। कोई कैसा भी दुष्ट मनुष्य आप पर हमला करने आए तो आप आराम नाम लीजिए। बहुत से दुष्ट मनुष्य तो उसकी आवाज से ही भाग खड़े होंगे, लेकिन कदाचित ऐसा ना हो तो भी क्या हुआ, ऐसे समय हमें मर मिटना चाहिए। मनुष्य कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, हम मर जाएं पर उसके बलात्कार के वश ना हो तो वह दुष्ट मनुष्य भी क्या कर सकेगा। संभव तो यह है कि मरने की पूरी तैयारी वाले पवित्र मनुष्य के सामने चाहे जैसा दुष्ट मनुष्य भी अपनी दुष्टता छोड़ देता है। अतएव सत्याग्रह दोहरा लाभदायक है। जो मनुष्य सत्याग्रह करता है उसका तो भला होता ही है, किंतु जिसके प्रति सत्याग्रह किया जाता है उसका भी उससे भला होता है। व्यापारी होकर कभी झूठ न बोलें अथवा झूठा आचरण न करें। विवाहित होकर भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। संसार में रहकर धन अथवा वस्तु का परिग्रह न करना कठिन है, फिर भी इस आदर्श को ध्यान में रखकर हद तो बांधनी चाहिए जिससे जब वैराग्य उत्पन्न हो तो महात्याग भी किया जा सके। मनुष्य जो माफी मांगता है सो दूसरों के लिए नहीं अपने लिए। जो हमें सहज भाव से मिल जाए उसे तन्मयता से कर डालें तो गंगा ना है। यम नियमों के पालन से शरीर का बिगड़ना असंभव मानो, निश्चय समझो कि जिस भूमिका में हम सुशोभित हों उस भूमिका से संतुष्ट रहने पर उच्च भूमिका सहज ही प्राप्त होती है। स्वयं बहुत काम करने का लोभ न करो और जितना स्वयं सहज कर सको उसे दूसरों को न दो। सुख दुख में मान अपमान में सम रहने का तात्पर्य यह है कि अपमानित होने पर खिन्न न हो और मान मिलने पर फूल न जाए। इसका ये अर्थ कभी नहीं कि अपमान का अथवा दुख का इलाज न किया जाए। जिससे जितना मिल सके उतने से संतुष्ट रहें, नहीं तो हमारे नसीब में निराशा ही बदी रहेगी। अनासक्त होकर काम किया करोगे तो कभी निराशा नहीं होगी। हम किसी के काजी न बने। नौकर को हम नौकर न समझें, सगा भाई समझें। कभी न भूलें कि हमारे और देहातियों के बीच बड़ा अंतर है। वे बेबस हैं, अनजान हैं, गरीब हैं। उनके मुकाबले में हम सब तरह बलवान हैं। हमारा धर्म है कि वे हमारे बल को कभी न देखें। हमारी तरफ से उन्हें उदारता और नम्रता का ही अनुभव होना चाहिए। इसी में उनकी सेवा करने की चाबी है। हम एक दूसरे को सहन करें और आगे बढ़ें। अपने प्रति कठोर रहेंगे तो दूसरों के प्रति अपने आप उदार बन सकेंगे। हम स्वयं सचमुच दिल से मानते हैं कि ईश्वर है तो फिर हमें डर किस बात का।

प्रयत्नशील रहने पर भी निष्फलता मिले तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने को संपूर्ण रूप से ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तब हार जीत ईश्वर की ही हो जाती है। जो सत्य को न छोड़ते हुए तटस्थ रहता है वो चढ़ते गिरते भी एक दिन महासागर को पार कर ही लेता है। ईश्वर पर श्रद्धा कैसे जमे? बुद्धि बल के और पुरुषार्थ के अभिमान को छोड़कर अपनी तुच्छता को समझने से और अपने को रजवत मान लेने से। अहिंसा का ध्यान करते करते जिसकी अहिंसा वृत्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उसे देह का मोह नहीं रह जाता, वो इस देह के छूटने पर दूसरी देह धारण नहीं करता। लेकिन इस देह में तो देह को टिकाने जितनी हिंसा उसके हिस्से में रहती ही है। ये देह का धर्म है, इसे देह कैसे छोड़े? माता पिता स्वार्थ के वश होकर कोई सलाह दें तो विनय पूर्वक उसका अनादर किया जाए। माता पिता अपनी सेवा कराना चाहें और वो दूसरी तरह से हो सकने जैसी न हो तो पुत्र का धर्म है कि वो सेवा करे। लेकिन अगर पुत्र ने अपने को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया हो तो जिस तरह सन्यासी पुत्र माता पिता के संकट में भी उनके पास नहीं जा सकता, उसी तरह ये पुत्र भी देश सेवा छोड़कर नहीं जा सकता। अभी आपने सदाचार से संबंधित गांधी जी के विचार सुने और आइए अब सुनते हैं डीवी पलुस्कर की आवाज में बापू का प्रिय भजन।

श्रोताओं, गांधी चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सदाचार के संबंध में गांधी जी के विचार। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के स्वर में भजन। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं बलवीर सिंह बघेल के गाए कुछ लोकगीत। आपके साथ संगत कलाकार हैं। ढोलक पर प्रस्तुति है राधा मोहन शर्मा की। हारमोनियम पर साथ देंगे दीनदयाल शर्मा और साइड रिदम है राजकुमार पांडे का।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बलवीर सिंह बघेल के गाए कुछ लोकगीत।

0: श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बलवीर सिंह बघेल के गाए कुछ लोक गीत। आपके साथ संगत कलाकार थे। ढोलक पर प्रस्तुति थी राधा मोहन शर्मा की, हारमोनियम पर साथ दिया दीनदयाल शर्मा ने और साइड रिदम था राजकुमार पांडे का। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

साथियों, कार्यक्रम का ये आरंभिक गीत आपने सुना चांदनी फिल्म से। स्वर था लता मंगेशकर का, गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे शिव हरी।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और SP पालस सुब्रमण्यम ने, बोल है आनंद बख्शी की, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे मछू सुल्तानपुरी की शब्द रचना। स्वर थे एस पी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा के फिल्म थी लव। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत। स्वर है लता मंगेशकर और अमित कुमार के, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है आर डी बर्मन, फिल्म का नाम है लव स्टोरी।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम भी आइए आपको सुनवाते हैं। विदुषी गिरिजा देवी का राग देवगंधार में ख्याल गायन

शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी गिरिजा देवी का गाया राग देव गंधार। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार।

कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ आपके साथ मैं आपकी दोस्त विशेषता शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जब हम सिनेमा घर के अंधेरे हॉल में बैठते हैं या फिर अपने घर के ड्राइंग रूम में टीवी की स्क्रीन के सामने होते हैं और कोई फिल्म देख रहे होते हैं, तो हमारी नज़रें सबसे पहले किसे ढूंढती हैं? या तो फिल्म के हीरो को या हीरोइन को, ऐसा ही होता है ना? या फिर कई बार हम उसे भी तलाशते हैं जिसके बिना कोई हीरो हीरो नहीं बन सकता। हीरो हवा में उड़कर विलेन को मारता है, पर्दे पर रोमांस करता है, लेकिन जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए कि कोई भी हीरो तब तक हीरो कहलाने के लायक बन सकता है जब तक कि पर्दे पर उसके सामने कोई ऐसा शख्स न खड़ा हो जिसकी आंखें बेखौफ हो, जिसकी आवाज में कड़क हो और जिसका अभिनय इतना दमदार हो कि हीरो की अच्छाई और ज्यादा निखर कर सामने आए। आपका जवाब भी यही होगा कि नहीं, बिना एक दमदार टक्कर के तो फिल्म की कहानी अधूरी सी है ना? आज हमारा सिनेमा जहां पहुंचा है, उसे वहां तक पहुंचाने में सिर्फ चॉकलेट हीरोज का हाथ नहीं है, बल्कि उन चरित्र अभिनेताओं, जिन्हें हम कैरेक्टर आर्टिस्ट के नाम से भी जानते हैं, उनकी अदाकारी भी है, जिन्होंने अपनी अदाकारी से हर किरदार को अमर बना दिया। आज के कलाकार में हम सिनेमा के ऐसे ही एक नायाब पन्ने को पलटने जा रहे हैं, जिनकी आंखों की वो क्रूर चमक देखकर 90 के दशक में लोग अपनी सीटों से उछल जाया करते थे, लेकिन जो असल जिंदगी में बेहद सरल हैं, एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आज के दौर के सबसे चहेते फूड ब्लॉगर भी हैं। पहचान गए ना? जी हाँ, आज हम बात करेंगे बहुभाषी और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता आशीष विद्यार्थी की। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा यादों के गलियारों में भटक लें और सुन लेते हैं 90 के दशक का ये जबरदस्त संगीत।

साथियों, जब हम आशीष विद्यार्थी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले उनकी वो कड़कती हुई आवाज और चेहरे के हाव भाव आते हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर खौफ का दूसरा नाम बनने वाले आशीष विद्यार्थी का झुकाव अभिनय की तरफ हुआ कैसे? क्या वो किसी पारंपरिक फिल्मी बैकग्राउंड से आते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी फिल्मी नहीं है। उनका जन्म हुआ था दिल्ली में और उनकी माँ एक मशहूर कथक नृत्यांगना थी और पिता खुद के नाम के आगे विद्यार्थी लगाते थे, स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी के सम्मान में। आशीष विद्यार्थी ने दिल्ली के मशहूर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD से अभिनय की बारीकियों को सीखा। थिएटर की उस तपन ने उन्हें ऐसा तपाया कि जब उन्होंने कैमरे का सामना किया तो इतिहास ही रच दिया। ये साल था 1994। निर्देशक गोविंद निहलानी की एक फिल्म आई थी ध्रुवकाल। क्या आपने ये फिल्म देखी है? अगर नहीं देखी है तो देखिएगा जरूर, और अगर देखी होगी तो आपको कमांडर भद्र की भूमिका में वो खूंखार अंदाज जरूर याद होगा। इस फिल्म में आशीष विद्यार्थी का अभिनय इतना जीवंत था कि अपनी पहली ही बड़ी हिंदी फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का नेशनल फिल्म अवार्ड यानी राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया। आप सोचिए जरा, जिस कलाकार को पहली ही फिल्म में देश का सबसे बड़ा सम्मान मिल जाए उसका हुनर किस दर्जे का रहा होगा। इसके बाद महेश भट्ट की फिल्म आई नाजायज, जिसमें उन्होंने रतन भाई का किरदार निभाया।

और इस रात की सुबह नहीं फिल्म में सुंदर। उन्होंने खलनायकी और चरित्र अभिनय की परिभाषा ही बदल दी इन दो किरदारों से। तो आइए उनकी इसी शानदार दौर की एक और फिल्म के इस खूबसूरत और सदाबहार गीत का आनंद लेते हैं और सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार, और आज हम बात कर रहे हैं आशीष विद्यार्थी की। दोस्तों, अक्सर बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ क्या होता है, एक बार अगर वो विलेन बन गए तो बस हिंदी फिल्मों में विलेन ही बनते रह जाते हैं। लेकिन क्या आशीष विद्यार्थी सिर्फ हिंदी सिनेमा तक सीमित रहे? अगर आपने हिंदी भाषा के अलावा और भाषाओं की फिल्में देखी हैं तो आपका जवाब ना ही होगा। उन्होंने इस सीमा को ऐसा तोड़ा कि आज वो देश के अकेले ऐसे अभिनेताओं में शुमार हैं जिन्होंने 11 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं में काम किया है। हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया, मराठी, आप बस भाषा का नाम लीजिए और आशीष विद्यार्थी वहां अपनी अदाकारी का झंडा गाड़ देते हैं। दक्षिण भारत की फिल्मों में तो उनका ऐसा सिक्का चला कि पोकिरी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में जो उनका किरदार था उसे आज भी दर्शक याद करते हैं। पर्दे पर वो जितने खूंखार दिखते हैं, असल जिंदगी में उतने ही शांत और दार्शनिक हैं। विलेन का रोल करते करते वो कभी नहीं उभे, क्योंकि उनका मानना था कि हर विलेन की अपनी एक कहानी होती है, एक मजबूरी होती है। उन्होंने कभी भी अपने किरदारों को कैरिकेचर यानी कि मजाक नहीं बनने दिया। चाहे बिच्छू फिल्म का वो भ्रष्ट पुलिस वाला हो या कहो ना प्यार है का इंस्पेक्टर, उन्होंने हर रोल में जान फूंक दी। है ना कमाल की बात? तो चलिए इसी वर्सिटैलिटी को सलाम करते हुए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, 90 का दशक गुजरा, 2000 का दौर आया, आशीष विद्यार्थी बने रहे, और फिर आया सिनेमा का सबसे बड़ा बदलाव यानी ओटीटी, वेब सीरीज का जमाना। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारा ये विलन इस नए डिजिटल दौर में भी टिक पाया? तो भाई, जवाब ये है कि टिक नहीं पाया, बल्कि इस नए दौर पर भी छा गया। जब पर्दे बदल गए तो आशीष विद्यार्थी ने अपनी अदाकारी का कैनवास भी बदल लिया। हाल ही के सालों में आई वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस, रक्तांचल या फिर सनफ्लावर, और एक और वेब सीरीज आई थी ट्रायल बॉय फायर, ऐसी बहुत सारी सीरीज में उनके किरदारों को देखिए। जहां पुराने दौर में वो जोर से चिल्लाकर खौफ पैदा करते हैं, तो वहीं आज ओटीटी पर वो अपनी शांत और ठंडी नजरों से, बेहद सधे हुए संवादों से सामने वाले को डरा देते हैं। और इसे ही कहते हैं समय के साथ खुद को ढालना। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर कलाकार सच्चा हो तो कभी आउटडेटेड नहीं होता। माध्यम फिर चाहे 70 mm का बड़ा पर्दा हो या आपके हाथ का छोटा सा मोबाइल स्क्रीन, अगर आपके पास हुनर है तो दर्शक आपको पलकों पर बिठाएंगे ही। मोबाइल स्क्रीन से याद आया कि ये बात सिर्फ वेब सीरीज तक ही खत्म नहीं होती। हाल फिलहाल में सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर मुस्कुराते हुए सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग को बनारस की गलियों में कचौड़ी खाते या कोलकाता के पुचके का स्वाद लेते आपने जरूर देखा होगा, है ना? वो कोई और नहीं, हमारे अपने आशीष विद्यार्थी ही हैं। उम्र की इस पड़ाव पर आकर जहां लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं, आशीष विद्यार्थी ने सोशल मीडिया पर खुद को पूरी तरह से रीइन्वेंट कर दिया है। आज वो भारत के सबसे चहेते फूड ब्लॉगर और एक शानदार मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं, और उनका एक तकिया कलाम भी है। आप में से जो लोग देखते हैं उनके ब्लॉग्स, उन्हें जरूर याद होगा कि जिंदगी मुस्कुरा रही है, बस जी लो। पर्दे पर जिस इंसान को देखकर कभी कभी लोग डर जाया करते थे, उसे आज सड़कों पर आम दुकानदारों से गले मिलते और ठेले पर चाट खाते देख दिल खुश हो जाता है। वो हमें सिखाते हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ही है, और जी

साथियों, आशीष विद्यार्थी महज एक चरित्र अभिनेता नहीं है, वो जिंदगी के हर रंग को शिद्दत से जीने वाले एक सच्चे कलाकार हैं। और उनका ये सफरनामा हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देना चाहिए। और इसी के साथ मुझे यानी विशेषत शर्मा को अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज के कलाकार संपन्न करने की।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए आप सुनते हैं समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम में स्वीकार कीजिए मेरा यानी विशेषता शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। साथ ही जरा एक शाम की कल्पना कीजिए। जब शाम होती है तो खिड़की से पार आपको क्या दिखता है? एक ढलता हुआ सूरज, घर लौटते परिंदे और हवा में घुली वो हल्की सी शांति। हम सब रोज सुबह उठते हैं और अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं, शाम को थक हार कर अपनों के पास लौट आते हैं और इसी को हम जिंदगी कहते हैं, है ना? एक ऐसी जिंदगी जो सुरक्षित हो, जहां चैन की नींद हो, जहां अपनों की मुस्कुराहट हो, यही जिंदगी है ना? या यूं कहा जाए कि जिंदगी की कल्पना यही है। हम अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारा समाज कितना आगे बढ़ गया है, हम चांद सितारों को छू रहे हैं, तकनीक हमारी उंगलियों पर नाच रही है, गगनचुंबी इमारतें आसमान से बातें कर रही हैं, और ऐसा है भी। लेकिन क्या कभी आपने चाय की चुस्की लेते हुए रुककर खुद से एक सवाल पूछा है कि ये जो बाहरी चकाचौंध है जिसे हम डेवलपमेंट कह रहे हैं, विकास कह रहे हैं, ये बड़ी बड़ी इमारतें ही किसी समाज के सभ्य होने की असली गारंटी है? अगर आपके पास आपके देश में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, आप बहुत विकास कर रहे हैं, तो क्या आप अपने आप को सभ्य कह सकते हैं? शायद आपका दिल भी भीतर से एक हल्की सी सिसकी भरेगा और कहेगा नहीं, सभ्यता ईंट पत्थरों की इमारतों या जीडीपी के आंकड़ों से नहीं नापी जाती मेरे दोस्तों। सभ्यता तो इस बात से नापी जाती है कि समाज में रहने वाला हर एक इंसान, चाहे वो महिला हो, कोई पुरुष हो या कोई मासूम बच्चा, ये सब खुद को कितना सुरक्षित, कितना आजाद और कितना सम्मानित महसूस करते हैं। और इसी मोड़ पर आकर आज हमें एक बेहद गंभीर, बेहद संवेदनशील लेकिन उतने ही जरूरी विषय पर बात करनी है, और बात करनी ही होगी। कब तक चुप रहेंगे? आज हम अपनी बातों को लेकर चलेंगे उस दिशा में जिसके बिना एक सभ्य समाज की कल्पना भी बेमानी सी लगती है। आज हम बात करेंगे यौन हिंसा की रोकथाम सभ्य समाज के लिए जरूरी है इस विषय पर। लेकिन इस गंभीर और बेहद जरूरी विमर्श की हम शुरुआत करें, उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

के लिए बस।

अभी जो गीत आप सुन रहे थे वो दिल की गहराइयों में उतर गया ना। सच कहा जाए साथियों, तो दिल तब कचोट उठता है और रूह कांप जाती है जब हम सुबह का अखबार खोलते हैं या न्यूज़ चैनल ऑन करते हैं। हर दूसरे दिन एक ऐसी खबर सामने आती है जो इंसानियत का सर शर्म से झुका देती है। यौन हिंसा, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि ये एक ऐसा नासूर है, एक ऐसा घिनौना अपराध है जो सिर्फ किसी के शरीर पर नहीं बल्कि एक जीती जागती आत्मा पर, उसकी गरिमा पर और उसके सपनों पर हमला करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आज इस कार्यक्रम में इतना भारी और कड़वा विषय क्यों? जवाब सीधा सा है दोस्तों, क्योंकि अगर आज हम और आप अपनी इस मखमली चुप्पी को नहीं तोड़ेंगे तो फिर कौन तोड़ेगा? जब भी यौन हिंसा शब्द हमारे कानों में पड़ता है, हमारे दिमाग में तुरंत किसी महिला या बच्चे की तस्वीर उभरती है। जाहिर है, आंकड़े और हकीकत इस बात की गवाही देते हैं कि महिलाएं इसका सबसे बड़ा शिकार हैं। राह चलती लड़कियों पर फप्तियां कसना, दफ्तर में असहज नजरों से घूरना या भीड़भाड़ में किसी महिला को गलत तरीके से छूना, ये सब उस बीमार मानसिकता की देन है जो सामने वाले को इंसान नहीं समझती। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सिक्के का दूसरा पहलू देखा है?

क्या कभी रुक कर खुद से ही सवाल पूछा है कि ये यौन हिंसा सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित है? जब हम गहराई से सोचते हैं तो एक और कड़वा सच सामने आता है कि ऐसा नहीं है कि हिंसा सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित हो। ये पुरुषों और लड़कों के साथ भी उतनी ही बेरहमी से होती है। लेकिन त्रासदी देखिए, जब किसी पुरुष या लड़की के साथ ऐसा होता है तो हमारा ये तथाकथित सभ्य समाज उस पर बात तक नहीं करना चाहता। अरे तुम तो लड़के हो, तुम्हारे साथ क्या गलत हो सकता है? या लड़के रोते नहीं हैं? ऐसी रूढ़िवादी बातें कहकर हम पुरुषों के दर्द को पूरी तरह से दबा देते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। कार्यस्थलों पर, हॉस्टलों में या बचपन में कई बार लड़कों को भी इस प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है, लेकिन सामाजिक लोकलाज और अपनी मर्दानगी पर उठने वाले सवालों के डर से वो कभी मुंह नहीं खोल पाते। एक सभ्य समाज तब तक सभ्य नहीं कहला सकता जब तक वो हर पीड़ित के दर्द को एक समान तराजू में न तोले।

साथियों, ये सब गीतों में, फिल्मों में या मजाक तक तो अच्छा लगता है, लेकिन मुद्दा और बात तब गंभीर हो जाती है जब यही चीजें हकीकत में होने लगें। आज हम जो बातें कर रहे हैं, जिस बदलाव की बातें कर रहे हैं, ये बदलाव बहुत पहले आ जाना चाहिए था। सिर्फ समस्याओं पर आंसू बहाने या सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर करने से समाज नहीं सुधरता। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यौन हिंसा को, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो, जड़ से खत्म कैसे किया जाए, इसके पुख्ता और व्यवहारिक सॉल्यूशंस क्या हैं? अब आप कहेंगे कि कानून बहुत सख्त होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, कानून सख्त होने चाहिए। हम भी आपकी बात से 100% सहमत हैं। अपराधी के मन में कानून और पुलिस का ऐसा खौफ होना चाहिए कि गलत सोचना तो दूर, उसकी रूह कांप जाए सोचते ही। हमारे कानून में लिंग भेद के बिना सभी पीड़ितों को सुरक्षा देने वाले होने चाहिए और उनका क्रियान्वयन निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ अदालतों और पुलिस के भरोसे हम एक महफूज समाज बना पाएंगे? इसका जवाब आप भी जानते हैं, और जवाब है ना। कानून तो घटना के बाद आता है, हमें तो घटना को ही होने से रोकना है, घटना ही नहीं होने देनी है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता हमारी और आपकी अपनी सोच से ही निकलता है, जिसे हम कुछ छोटे छोटे बदलावों में बांट सकते हैं। पहला समाधान तो यह है कि जेंडर न्यूट्रल संवेदनशीलता हो। बदलाव हमारे घरों से शुरू होगा। हमें अपने बेटों को दूसरों की ना का सम्मान करना सिखाना होगा, और साथ ही उन्हें यह भरोसा भी देना होगा कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो तो वो भी घर आकर बिना झिझक के अपनी बात कह सके। और साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि अगर कोई लड़की ना करती है, या कोई लड़की उनका अपमान करती है, या कोई लड़की या महिला उनसे आगे निकल रही है, तो इसमें उनके अपमान नहीं है, उनकी बेइज्जती नहीं है,

साथियों, बातें तो बहुत हुई, अब वक्त है इन बातों को अपने व्यवहार में उतारने का, कुछ कर दिखाने का। यौन हिंसा की रोकथाम किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था या सिर्फ

0: हम राजवाड़े लिखते हैं।
1: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
0: जी
1: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
0: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
1: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार धाकसे जी लिखते हैं। प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
0: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
1: स्वागत है आप सबका। श्रोताओं, एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
0: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
0: बिल्कुल।
1: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी, तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है, इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओं, डल का मतलब ही झील होता है, इसीलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत

0: रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया। जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा
1: मैं
0: का रेडियो
1: एक जहाज पर नौकरी करता
0: है जो रहस्यों और रोमांच से
1: नौकरी करते हुए
0: है।
1: मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की।
2: बिन्नी का सपना।
1: एक बार
0: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
2: तो श्रोता अभी आप सुन रहे थे।
1: बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है।
2: आज का हमारा
1: जब मेरी नींद खुली
2: होता है तो अपने मित्र
1: तो मैंने अपने आप को
0: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
0: थोड़ा सा फंबल था
1: कि कोई चीज
0: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
1: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया।

का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए।

ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ।
0: CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
3: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
4: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार। उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गुलजार की लिखी रचना। संगीत MM करीम का है। आवाजें हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, मधुश्री, बेला और साथियों की।

0: साथिया, जी हाँ, सुन का गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज़ में। गुलजार के बोल थे और धुन बनाई थी AR रहमान ने। कहीं जाइएगा नहीं, हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल और अंतराल के उस पार होगा एक और गीत।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: कार्यक्रम नए तराने का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं प्रसून जोशी की कलम से। संगीत जतिन ललित का है, आवाजें हैं सोनू निगम और साधना सरगम की। फिल्म का नाम है हम तुम।

हम तुम इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और साधना सरगम की आवाजों में। गीत को लिखा था प्रसून जोशी ने और संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने। आइए आप सुनते हैं कृष फिल्म का ये गीत, जिसे आवाजें दी हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। इब्राहिम अश्क के बोल हैं और धुन राजेश रोशन ने बनाई है।

इस गीत को हमने लिया था फिल्म कृष से। आवाजें थी सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। आइए आप सुनते हैं सुर फिल्म का गीत सुनिधि चौहान की आवाज में। बोल निदा फाजली के हैं और धुन बनाई है MM करीम ने।

सुर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
2: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाडातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279

0: 02287 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
2: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh aise saathiyon ki talash mein hai jin par लंबे समय तक भरोसा किया जा सके और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
1: President Draupadi Murmu has expressed confidence that India would eradicate sickle cell disease well before its national target year of 2047. She has called for concerted efforts to raise awareness about the genetic blood disorder, particularly among tribal communities. The President was addressing a state-level program at Omkareshwar in Madhya Pradesh on the occasion of World Sickle Cell Day today.
3: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।
1: During the program, President Murmu visited a special exhibition set up under the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission 2047. In the next phase of her visit, the President will travel to Rairangpur in Odisha, where she is scheduled to inaugurate several development projects. Prime Minister Modi will disburse incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. This incentive has supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country. India has accused Pakistan of using propaganda to divert attention from its domestic challenges and its continued support for terrorism. New Delhi has strongly rejected Pakistan's allegations on Jammu and Kashmir at the 62nd session of the United Nations Human Rights Council. Speaking at the session, First Secretary at India's permanent mission to the United Nations, Anupama Singh, asserted that Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. India maintained that the only unresolved issue is Pakistan's illegal occupation of Indian territories and their eventual return. Highlighting the situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, India alleged that growing protests and unrest in the region reflect widespread dissatisfaction with continued repression and denial of basic rights.
4: This is the country where the sitting defense minister boasts of hosting, training and deploying terrorist state policy, and yet Pakistan calls itself a victim of terrorism. Indeed, a paradox which only Pakistan could sustain. It is a living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites back.

0: दीबा हाशमी से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए की मराहत तकसीम करेंगे। वो अमली तौर पर मुल्क भर से मुस्तफीद होने वालों से खिताब करेंगे। मेहनत और रोजगार के वजीर डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 में शुरू होने वाली इस स्कीम के तहत 63 लाख से ज्यादा कारकुनान, जिनमें से तकरीबन 30% खवातीन हैं, उनको बाजाफ्ता अफरादी कुवत में जिम किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस स्कीम से मुल्क भर में 15 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे। इस स्कीम के तहत लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी और मेरठ समेत सत के 17 जिला में प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। इस स्कीम का मकसद रोजगार की तख्लीक में तेजी लाना, रोजगार की अहलियत में इजाफा और तमाम शोबों में समाजी तहफ्फुज़ की कवरेज को बढ़ाना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योगा की जड़ें हिंदुस्तान के रूहानी और सकाफती विरसे में गहरी हैं और इसने मुल्क की सरहदों को अबूर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वजीर मुमलिकत प्रताप राव के एक मजमून का इश्तराक करते हुए वजीर आजम ने इस बारे में बात की कि किस तरह कदीम नसूस से लेकर आलमी पहचान तक योगा ने सरहदों को अबूर किया है, जबकि हिन्दुस्तान के रूहानी और सकाफती विरसे में गहरी जड़ें हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपने अयोध्या दौरे के दौरान अयोध्या धाम और रुदौलिया से मिली हलके को करोड़ों के तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात दी। वजीर आला ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने के बाद रुदौलिया से मिली हलके में मां कामाख्या धाम नगर पंचायत को 25 करोड़ रूपये से ज्यादा के प्रोजेक्टों की सौगात दी। साथ ही वीरांगना झलकारी बाई के आलिशान मुजस्मे की नकाब कुशाई के साथ 126 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस दौरान वजीर आला ने अपने खिताब में अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे के मामले को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। वजीर आला ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की गुजारिश पर हुकूमत ने एसआईटी तश्कील की है और यह जांच पूरी शफाफियत से होगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास कोई दस्तावेजी सबूत है तो उसे एसआईटी को सौंपे और जांच पूरी होने तक गैर जरूरी बयानबाजी न करें। वजीर आला ने कहा,
1: राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
0: ज़रात और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने 4 रियासतों तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कम से कम इमदादी कीमत एमएसपी पर दालों और तेल के बीजों के बड़े पैमाने पर खरीदारी को मंजूरी दे दी है। ये खरीदारी इन रियासतों में प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीदारी को मंजूरी दी गई है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इतवार को होने वाले नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने इम्तिहानी अमल में दयानतदारी, शफाफियत और कारकर्दगी के आला मेयार को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम जरूरी इंतजाम को यकीनी बनाएं और आजादाना और मुनसिफाना तरीके से दोबारा इम्तिहान के इनेकाद के लिए चौकसी इख्तियार करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क्यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर मबनी

0: गुज़िश्ता 12 सालों में काबिले जिक्र तरक्की की है। इस मौके की मुनासिबत से ऑल इंडिया रेडियो न्यूज एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए तरक्की के 12 साल। आज के शुमारे में हम शुमाल मशरक की तब्दीली के लिए हुकूमत के अहम इकदाम पर रोशनी डाल रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड यूपी एटीएस ने बुलंदशहर जिले से 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग से है। इन पर गैंग के दहशतगर्द नेटवर्क में शामिल होकर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम है। और महकमा मौसमियात ने रियासत के मशरकी और मगरबी अजला के अलग अलग इलाकों में 24 जून तक गर्मी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अगले 2-3 दिनों के दौरान रियासत के ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बतदरीज इजाफे की भी पेशगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम घर संसार।

कार्यक्रम घर संसार सुन रही हमारी सभी बहनों को ललित वत्स का नमस्कार। बहनों, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं इसका हमें पता ही नहीं चलता। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, माता पिता को उनकी और अधिक फिक्र होने लगती है। कहीं उनके व्यवहार में कोई अंतर तो नहीं आ रहा, बच्चा कोई चीज उनसे छुपा तो नहीं रहा। इन सभी पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। बहनों, अब आजकल बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और ऐसे में जब बच्चे स्कूल जाते हैं या बच्चे घर से बाहर निकलते हैं या फिर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और वो जॉब पर जाने लगते हैं, तब माता पिता को उनकी चिंता और अधिक सताती है। और ये चिंता तब दोगुनी हो जाती है जब बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा हो या बच्चे बड़े हो रहे हों। ऐसे में माता पिता की जिम्मेदारी बढ़ना स्वाभाविक बात है। माता का ये फर्ज है कि वे बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी दे, उन्हें अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाए, किसी भी गलत व्यवहार की तुरंत शिकायत करने के लिए उनमें समझ पैदा करें। चुप रह जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। यदि हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और बच्चे फिर भी यदि चुप रह जाते हैं तो ये बहुत गलत है। बच्चों में यह आदत डालनी चाहिए कि यदि उन्हें लगता है कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसका विरोध होना चाहिए। यदि आपको कोई अश्लील टिप्पणी करता है, गलत संदेश भेजता है, डराता धमकाता है या आपके साथ अनुचित व्यवहार करता है, तो उसका विरोध अवश्य कीजिए। यदि आपके साथ या आपके आसपास किसी के साथ ऐसा कोई व्यवहार होता है तो तुरंत परिवार में किसी भी बड़े सदस्य को, भाई, बहन, माता पिता या जिससे भी आप नज़दीकी महसूस करते हों या जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हों, उसके साथ अपनी बात रखें, उसके सामने अपनी बात रखें और समय से की गई शिकायत न केवल पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने में मदद करती है बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित बनाती है। इसलिए चुप्पी नहीं बल्कि उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज़।

उठानी चाहिए। सम्मान और सुरक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को हो, प्रेम का अधिकार हम सभी को है। प्रेम सच पूछा जाए तो हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। प्रेम समर्पण का दूसरा नाम है। प्रेम एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन प्रेम के नाम पर अनुचित व्यवहार गलत है। इनकार और इकरार के मध्य अंतर की समझ हम सभी को होनी चाहिए।

मैनू आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे घर पर ही होंगे, और जब बच्चे घर पर होते हैं तो तरह तरह के खानों की फरमाइश करते हैं, और ऐसे में मम्मी की चिंता ये होती है कि आखिर बनाया क्या जाए, रोज़ रोज़ नई चीज़ें क्या बनाई जाए। तो आज मैनू हम आपको बताते हैं आलू प्याज रोल्स बनाने की विधि, और इसे कैसे बनाया जाता है ये जल्दी से सुन लीजिए। इसके लिए सबसे पहले एक कच्चा आलू लें, उसे छील कर अच्छे से धो लें, और दो प्याज उनको भी छील लीजिए और फिर मिक्सी में पीस लीजिए, और फिर एक पेस्ट सा बन जाएगा, और उस पेस्ट में हरा धनिया, हरी कटी मिर्च, अदरक और स्वाद अनुसार नमक और सूजी मिलाकर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें, और चिली फ्लेक्स भी डाल दीजिए, और जिंजर गार्लिक पेस्ट यदि है तो वो भी डाल दीजिए इसमें।

0: और ये एक पेस्ट बन जाएगा। और फिर सूजी को फूलने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। इसके बाद अरारोट का एक पतला पेस्ट बना लें, उसमें चिली फ्लेक्स या हरा धनिया और नमक मिला दें थोड़ा सा स्वाद अनुसार। इसके बाद जो आपने आलू प्याज का बैटर बनाया था उसके ओवल शेप में रोल बना लें। फिर इन रोल्स को अरारोट के पेस्ट में डिप करके धीमी आंच पर गुलाबी होने तक सेक लें। फिर इन गर्मा गर्म रोल्स को हरी चटनी के साथ सर्व करें। आपके परिवार को बहुत पसंद आएगा और बच्चे इसे बहुत मन के साथ खाएंगे। तो बहनों, ये तो हमने आपको बता दिया कि भाई आलू प्याज रोल्स कैसे बनाए जाते हैं। अब और गीत संगीत भी हो गया, अब बहनों आपको लिए चलते हैं काफी पाठ की दुनिया में। सुनते हैं डॉक्टर कविता रायजादा से काव्य पाठ।
1: मेरी पहली प्रस्तुति है फुर्सत। किसको फुर्सत है जो देखे भव्यता भरे आयोजन को, जब रोटी कपड़ा और मकान के प्रश्न सामने अनगिन हो। किसको

फुर्सत के उन लम्हों में हमको कष्ट सभी हरना होगा, फुर्सत के उन लम्हों में हमको कष्ट सभी हरना होगा। मैं उसे पूजती हूँ जिसने यह मूल

अपनाया है, मानव को मानव जैसा ही अधिकार यहाँ दिलवाया है। मेरी दूसरी प्रस्तुति है शिकायत।

ही पड़ी। मेरी तीसरी प्रस्तुति खुशी। सुंदर फूल महकते केवल एक खुशी में, मस्ती लिए हवा चलती है केवल एक खुशी में। चंदा नित मुस्का जाता, चंदा नित मुस्का जाता बस एक खुशी में। दामिनी दमक दमक जाती है सिर्फ एक खुशी में। कांत कामनी मस्त प्रफुल्लित।

0: दिखती केवल एक खुशी में, सूरज नित चेतनता लेकर, सूरज नित चेतनता लेकर उगता केवल एक खुशी में। और कहूँ क्या, सारा जग सुंदर चेतन है एक खुशी में। और कहूँ क्या, सारा जग सुंदर चेतन है एक खुशी में। अचेतन चेतन हो गया बस एक खुशी में, बस एक खुशी में, बस एक खुशी में। मेरी चौथी प्रस्तुति है रूह। रूह में समाए हो तुम इस तरह कि दर्द भी काफूर हो जाता है हवा की तरह। रूह में समाए हो तुम इस तरह कि दर्द भी काफूर हो जाता है हवा की तरह। ना जाने, ना जाने होगा मिलना भी कभी, ना जाने होगा मिलना भी कभी, ना जाने रूबरू भी होगे कभी। आपका स्वप्न साकार होगा भी कभी, आपका स्वप्न साकार होगा भी कभी। रूह में समाए हो तो अब क्या चाहिए, रूह में समाए हो तो अब क्या चाहिए। लेकिन फिर भी, लेकिन फिर भी चाह क्यों इस कदर बरकरार है, लेकिन फिर भी चाह क्यों इस कदर बरकरार है। मिलने की चाह है, मिलने की चाह है, रूह की हद तक जाने की चाह है। चाह तो बस चाह है, चाह तो बस चाह है जो अब चाहत बन गई है, चाह तो बस चाह है जो अब चाहत बन गई है। रूह में उतर जाने की हिम्मत बन गई है, रूह में उतर जाने की हिम्मत बन गई है। ना जाने, ना जाने ये हिम्मत कब किनारे पे ले आएगी, ना जाने ये हिम्मत कब किनारे पे ले आएगी। तेरी रूह से, तेरी रूह से एकाकार कराएगी। मेरी अंतिम प्रस्तुति है आप। वह आप ही थे जो दिल के दरवाजे पर दस्तक दे गए, वह आप ही थे जो दिल के दरवाजे पर दस्तक दे गए। मेरे सोए सभी अरमान जगा गए, मेरे सोए सभी अरमान जगा गए। शायद वो आप ही थे, शायद वो आप ही थे जो सपनों से मुझे उठा गए। हरदम उन्हीं ख्यालों में, हरदम उन्हीं ख्यालों में अब डूबी रहती हूँ। क्यों आए, क्यों चले गए, क्यों आए, क्यों चले गए, यही सोच सोच रह जाती हूँ। फिर सोचती हूँ, फिर सोचती हूँ, आखिर यह एहसास आप ही क्यों दे गए, आखिर यह एहसास आप ही क्यों दे गए। आखिर क्यों डूबी रहती हूँ सिर्फ और सिर्फ आप ही के ख्यालों में।
1: बहनों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कविता रायजादा से काव्य पाठ। इश्क पर क्या गुजरती है हुस्न, ये राज क्या जाने, मेरे दिल की तड़पने का कोई अंदाज क्या जाने।

0: आज हमारे साथ स्टूडियो में है विशेषता जी, और विशेषता जी मैं देख रही हूँ कि आपके चेहरे पर चमक कुछ अलग ही है भाई, क्या बात है, किस चीज का कमाल है ये?
1: ललित जी, ये है कमाल एलोवेरा का।
0: अरे भाई क्या बात है, तभी मैं कहूँ कि एकदम से अंतर दिखाई दे रहा है। वैसे सच पूछा जाए तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे, और मैं भी यही चाहती हूँ। और जो हमारी रसोई है यानी किचन गार्डन में ऐसा खजाना छुपा होता है जिसका हमें पता ही नहीं होता है ना?
1: बिल्कुल, तो क्यों ना हम भी अपनी सखियों को बता दें कि वो खजाना है क्या।
0: बिल्कुल भाई, अकेले अकेले नहीं, सवरना है, सुंदर दिखना है, सभी को पता होना चाहिए।
1: वो खजाना है एलोवेरा। एलोवेरा को प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना कहा जाता है। इसमें मौजूद विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ना, वो त्वचा को स्वस्थ भी रखते हैं और ताजगी भरा बनाए रखने में भी मदद करते हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा विशेषता, एलोवेरा जेल त्वचा को प्राकृतिक नमी प्रदान करता है, और जिससे क्या होता है कि त्वचा मुलायम और चमकदार दिखाई देती है। और गर्मियों में ये त्वचा को ठंडक पहुंचाने और धूप से जो जलन होती है ना, उसको शांत करने में भी सहायता करता है। और आजकल तो भाई बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी, गर्मियां बहुत तेज पड़ रही हैं।
1: बिल्कुल ललित जी। हाँ। और मैं आपको बता दूं कि इसके रेगुलर उपयोग से त्वचा ताजा और स्वस्थ महसूस होती है। चेहरे को साफ करने के बाद थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाकर कुछ मिनट तक हल्की सी मालिश की जा सकती है।
0: मैंने याद रखे, सुंदर त्वचा जो होती है वो केवल बाहरी देखभाल से नहीं बल्कि संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद और नियमित व्यायाम से भी मिलती है। इसलिए एलोवेरा तो यूज कीजिए, लेकिन साथ ही साथ अपना आहार भी अच्छा रखिए। बहनों आपसे बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक अल्प विराम।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: बहनों, ये कार्यक्रम है खासकर महिलाओं का। ऐसे में महिलाओं के साहस और संघर्ष के विषय में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात कर रहे हैं संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की प्रेरणादायक मिसाल बेबी हालदार की। बेबी हालदार का बचपन बहुत कठिन परिस्थितियों में बीता था। बहनों, कम उम्र में उनका विवाह कर दिया गया था। उन्हें अपने जीवन में बहुत सी पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जीवन की कठिनाइयों के बीच उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया और घरेलू सहायिका के रूप में काम किया। उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्हें पढ़ने और लिखने के लिए प्रोत्साहन मिला। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को शब्दों में पिरोया और आत्मकथा लिखी, जिसका नाम था आलो आंधारी। यह पुस्तक उनकी संघर्षों, पीड़ा, साहस और आत्मसम्मान की सच्ची कहानी है। इस आत्मकथा का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है और इसे बहुत ही सराहना मिली है। बहनों, बेबी हालदार का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, शिक्षा, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के बल पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। बहनों, जो हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं, यदि वो हमसे दूर जाने लगते हैं तो हम चाहकर भी उन्हें विदा नहीं कह पाते। हम बस यही कहते हैं,
4: अभी अलविदा मत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली की गाई हुई गजलें। लीजिए समाअत फरमाइए ये पहली गजल, जिसके बोल हैं, दिल में एक लहर सी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, और ये चोट भी नई है अभी।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं गुलाम अली की गाई हुई गजलें। आइए सुनते हैं अगली गजल, जिसके बोल हैं, कहती है मुझसे इश्क का अफसाना चाहिए, रुसवाई हो गई तुम्हें शर्माना चाहिए।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की गाई हुई गजलें। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. President Draupadi Murmu says India on track to eliminate sickle cell disease well before 2047 target. Delhi High Court upholds center's temporary curbs on Telegram ahead of NEET UG 2026 re-examination. India calls Indus Waters Treaty outdated at UN Human Rights Council, also slams Pakistan for sponsoring terrorism. And Mexico becomes first team to qualify for FIFA World Cup round of 32, defeating South Korea 1-0. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया, पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
2: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाना और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसिलिंग करना, मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की

0: निरंतरता बनाए रखना है।
1: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
0: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गांव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है।

0: उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। एसटीपीआई पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसटीपीआई को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहाँ पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी एसटीपीआई जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, एआई के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
3: Our position on Indus Water Treaty is well known.
4: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता
0: रहा। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के

0: अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गौतम तिवारी का गाया राग गारा।

अभी आप सुन रहे थे गौतम तिवारी की राग गारा में गाई हुई ये ठुमरी। लीजिए अब सुनिए राग खमार में गौतम तिवारी की ये ठुमरी।

अभी आप सुन रहे थे गौतम तिवारी की राख हमाज में गाई ठुमरी, बोल थे डगर बीच कैसे चलूं। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा। दोपहर के 2:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है लता मंगेशकर की आवाज में, बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं, संगीत आदि बर्मन का, फिल्म का नाम है पड़ोसन।

अर्जुन फिल्म के इस गीत के बाद आइए अब सुनते हैं इज्जत फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, बोल साहिर लुधियानवी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल। गीत को संगीत में बांधा है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर।

0: दिल एक मंदिर इस फिल्म के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। लीजिए अब समाप्त फरमाइए उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। नाजरीन मोहतराम, अब आपके समातों की जीनत बनने जा रहा है एक अहम मकाला, उर्दू शायरी का शहजादा शायर शहरयार। इसे हमारे स्टूडियो तक पहुंचाया है मकाला निगार जनाब मुश्ताक सदफ ने। लीजिए मुलायजा फरमाइए।
1: मेरे मकाले का उन्वान है उर्दू शायरी का शहजादा शहरयार। कुंवर अखलाक मोहम्मद खान, जो अपने कलमी नाम शहरयार से मशहूर हुए, 16 जून 1936 को बरेली यूपी में पैदा हुए और 13 फरवरी 2012 को अलीगढ़ में उनका इंतकाल हुआ। वो जदीद उर्दू शायरी और उर्दू शेर व अदब की एक बुलंद पाया शख्सियत थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो ताहियात प्रोफेसर रहे। उन्होंने अदब और सिनेमा के दरमियान फ़र्क को भी पुर किया। शहरयार उर्दू अदब में जदीदियत के सरकर्दा हामियों में से एक थे। उन्होंने आम लोगों के समाजी व नफ्सियाती उलझनों की तरफ अपनी शायरी को मोड़ा, जिसमें शहरी तन्हाई, महरूमियों की जद्दोजहद और फ़र्द और मुआशरे के दरमियान तनाव की तस्वीर कशी की गई है। उन्हें कई बड़े अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। उन्हें 1987 में उनके शेरी मजमूए ख्वाब का दर बंद है के लिए बावकार साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। 2008 में वह उर्दू के चौथे ऐसे अदीब बन गए जिन्हें मुल्क का सबसे बड़ा अदबी एजाज ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, और ये बायसे फख्र बात है कि वो मेरे उस्ताद भी रहे। शहरयार को अपनी शायरी को इंतहाई पाकीज़ा और काबिले रसाई रखने के लिए याद किया जाता है। जब उनसे कमर्शियल फिल्मी गाने लिखने की दरख्वास्त की गई तो अपने फन से समझौता करने से उन्होंने इनकार कर दिया। ताहम उन्होंने हिदायतकार मुजफ्फर अली के साथ सिनेमा में शराकतदारी कायम की। उमराव जान और गमन दो फिल्में ऐसी हैं जिनमें उनके गाने बहुत मशहूर हुए। उमराव जान 1981 खयाम की कंपोज की हुई शहरयार की मशहूर गजलें जैसे दिल चीज है क्या आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। इसी तरह से उनकी एक और गजल, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, बहुत मशहूर हैं। इसी तरह गमन 1978 में आई, दो गजलें रूह परवर हैं। पहली गजल, सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, और फिर ये गजल, अजीब सानहा मुझ पर गुजर गया यारो, मैं अपने साये से कल रात डर गया यारो। दिल को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। शहरयार अपने अव्वलीन शेरी मजमुआ इसमें आज़म 1965 से ही उर्दू शायरी का इसमें बामुसम्मा करार दिए गए। 4 साल बाद उनकी शोहरत व मकबूलियत का 7वां दर भी खुल गया। बाद अजी उनके शेरी सफ़र का एक पड़ाव हिजर के मौसम से मौसूम हुआ तो उनकी शायरी की एक वाज़े सिमत रफ्तार का अंदाज़ा हुआ। फिर उन्होंने ख्वाब का दर बंद है कहकर सबको हैरान व शस्दर कर दिया, लेकिन इसी पर वो काने नहीं हुए बल्कि अपनी पलकों से नींद की किरचें भी चुनी। इसके बाद हासिल सैरे जहाँ की शक्ल में उनका पूरा कलाम हमारे सामने आया, जिस तरह वसी तनाजिर में उनके शायराना कमाल से आगाही हुई। शहरयार का पहला मजमुआ कलाम इसमें आज़म इशात पजीर हुआ तो हमारे कुछ बड़े नाकदीन ने इसे

0: खूब सराहा तो कुछ ने इसमें मानी की जेहतों के फुकदान की निशानदेही की और कुछ ने तराकीब की अदम शमूलियत का जिक्र किया। लेकिन सच तो ये है कि हमारे कमोबेश तमाम छोटे बड़े नक्कादों ने शहरयार की शायरी में सादगी इजहार की खूबी का एतराफ जरूर किया और उनकी इस पहली काविश को नई और पुरानी उर्दू शायरी के बाहम इर्तिबात का एक अहम निशान करार दिया। इसका दिवाचा वहीद अख्तर ने लिखा था, लेकिन जब गोपी चंद नारंग का फिक्र अंगेज मजमून नकूश में शाई हुआ, जिसमें पहली मर्तबा शहरयार के मानियाती निज़ाम और बुतिका भी सामने आई, उर्दू शायरी की जबान और लबो लहजे में भी नयापन और अनोखापन दिखाई देने लगा। गजलों और नज्मों में हर तरह के समाजी व सियासी मसाइल के इजहार पर जोर दिया जाने लगा। शहरयार उन्हीं शायरों में से हैं जिन्होंने अदलते बदलते हालात में भी दाखली और खारजी दोनों सतहों पर अपने फिक्र व शऊर को अशार की शक्ल में ताकत गोयाई अता की। तभी तो शहरयार की शायरी में तहजीब व इकदार की पासदारी और दर्दमंदी की एक दिलकश और दिलकुशा फिजा मिलती है जो उनके दूसरे मुआसरीन शोरा से मुख्तलिफ है। शहरयार अपने मुख्तसर तरीन नज्म कहने का कामयाब तजर्बा किया और जमाने की आम रविश के मुताबिक अपनी शायरी को कभी चीस्ता नहीं बनने दिया। उन्होंने जिंदगी, जमाना, जमीन, इंसान, तहजीब और कायनात की बदलती हुई हकीकत की तह तक पहुंचने की हमेशा कोशिश की। उन्होंने जिंदगी और मौत के फलसफे को भी समझना चाहा और फर्द और जमात की कश्मकश को भी। उन्होंने इंसान और फितरत के रिश्ते की फहम इदराक की सही की है तो जाहिर और बातिन के साथ गम व इम्बिसात और खैर व शर के इम्तियाज को भी अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। गोया वो एक ऐसे फनकार हैं जिनकी आवाज़ ज़ातो कायनात की आवाज़ है और जिनकी शायरी में इंसान और उसके मुतालिकात का अक्स, इंसान की तन्हाई का नौहा, तहजीब व सकाफत और तमद्दुन का आशोब, इश्क और इश्क की मुख्तलिफ अशकाल, जिंदगी और जिंदगी की छोटी सी छोटी बातें, सब कुछ उनके यहाँ इशारियत और ईमाइत के साथ मिल जाती हैं। दूसरे लफ्जों में यह कहा जा सकता है कि उनकी शायरी गमो निशात, रंजो राहत और जख्म व मरहम के बाहम रब्त व तसलसल की शायरी है। जिंदगी और मौत, खुशी और गम की आपसी जंग की शायरी है। ख्वाहिश ज़ात, ख्वाहिश दुनिया, जहनी इस्तराब, वसल व फिराक और फतह व शिकस्त की शायरी है जो मखसूस आगही के साथ जलवा फिगन है। कहीं ख्वाबों की शिकस्त, आरजुओं का खून, तमन्नाओं की अर्थी निकलती हुई नजर आती है तो कहीं तारीकी यादों की बारात, कहीं तारीकी से मुबारजत और कहीं रोशनी से मोहब्बत झलकती है। इसी तरह इकरार और इनकार, गमे जाना और गमे दौरा दोनों से उनकी शायरी इबारत है। यह अलग बात है कि ये चीज़ें उनके यहाँ कहीं हल्की तो कहीं गहरी हो गई हैं। जिस तरह समंदर में कहीं लहरें तेज उठती हैं और कहीं सुस्त हो जाती हैं, कहीं समंदर की रवानी में ठहराव तो कहीं तेज बहाव का एहसास होता है और कहीं मौजों के गहरे थपेड़ों से भी गुजरना पड़ता है। शहरयार की शायरी भी इसी तरह की शायरी है जिसमें फिक्र फन का बहाव कहीं आहिस्ता रौ है तो कहीं तेज रफ्तार, कहीं ठहराव है तो कहीं सबक रवि, कहीं सब्र जब्त तो कहीं इस तरह आपकी कैफियत पाई जाती है। जिस तरह कहीं समंदर की लहरें किनारों पर अपना सर पटकती हैं, उसी तरह कहीं शहरयार भी जब्त गम की बात करते हैं।
1: अभी आप समाप्त फरमा रहे थे मकाला जिसका उन्वान था उर्दू शायरी का शहजादा शायर शहरयार। मकाला निगार थे मुश्ताक सदफ। अब पेशे खिदमत है कलामी शायर के तहत हमारे जीनत महफिल जनाब अब्दुल सलीम की जुबानी मुबारक से ये कलाम, समात फरमाइए।
2: बेरुखी से वो काम लेता है, बेरुखी से वो काम लेता है, बेरुखी

जाने क्यों लो गुजरने लगते हैं, जाने क्यों लो गुजरने लगते हैं, जब को

उसको मंजिल जरूर मिलती है, उस

तराब में सूरज आलम तराब

देखना ये है आज में फिल्म में कौन सा कोई सजा

वक्त जा

दोस्तिया वो क्या निभाएंगे, दोस्तिया वो क्या नि

0: कलामी शायर के तहत अभी आप सुन रहे थे अब्दुल सलीम के कलाम। आइए अब सुनते हैं अफसाना बुलंदी का सफर। अफसाना निगार हैं बसगा खातून।
1: हवा के हल्के हल्के झोंकों से उसके साड़ी का सुर्ख आंचल लहरा रहा था। डाइस पर माइक के सामने खड़ी वो बोल रही थी। उसकी हिम्मत, जोश और बोल्डनेस मशहूर थी। मेकअप ज़दा चेहरे पर एतमाद झलक रहा था। उसकी आवाज़ हॉल में गूंज रही थी। आज़ादी, जुर्रत, इकदाम और पेशकदमी, मॉडर्निज्म, ये तमाम अकदार आज के दौर में अपने मानी बदल कर एक स्लोगन बन गए हैं। और हम औरतें अकदार और मानी के दायरे उबूर करके बहुत दूर निकल चुकी हैं। हमें गुलामी नहीं, आज़ादी चाहिए। उसने डाइस पर ज़ोर से हाथ मारा और बोलती रही, हम भी खुली फिजा में सांस लेना चाहते हैं। हम औरतें इसलिए नहीं हैं कि बेतनख्वाह की मजदूर बनी रहें। उसकी आवाज़ में एक गूंज थी जैसे समंदर की मचलती लहरें किनारे पर अपना माथा टेक रही थी। वो बोल रही थी और उसके हर जुमले पर हॉल में बैठी औरतों की तालियों की आवाज़ गूंज रही थी। उसके लेक्चर का मौजू उसका पसंदीदा था, वुमन एम्पावरमेंट इन मॉडर्न एरा। बीच बीच में वो ऐसे अशार पढ़ती थी कि औरतों के खचाखच भरे हॉल में बिजली सी कून जाती थी। ये उज्र कि तुम एक औरत हो, तुम हिम्मत हो, तुम ताकत हो, तुम एक पुरजोश जसारत हो, तुम इफ़त, इस्मत, इज्जत हो। प्रोग्राम के बाद वो घर की तरफ चल दी। अपनी कार से उतरकर फ्लैट की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसने रिस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाई। रात के 10 बज रहे थे। कमरे में पहुंचकर उसने लाइट ऑन की। अभी साहिल नहीं आए थे, उसने सोचा। इतने में किसी के ऊपर चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, साहिल गोद में सोनू को उठाए बेटी नायमा का हाथ थामे कमरे में दाखिल हो रहे थे। आज देर हो गई, असल में सैर कोर्ट पर ऑफिस की मीटिंग थी। वहाँ से बेबी केयर सेंटर का फासला 3 घंटे का है। बच्चों को लेने में देर हो गई। ओहो, मुझे कॉल कर देते, कॉन्फ्रेंस हॉल से वापसी पर मैं केयर सेंटर से होती हुई आई हूँ, उसने बालों से क्लिप खोलते हुए कहा। मैंने सोचा तुम परेशान हो जाओगी, मैं रोज़ की तरह ये काम भी खुद ही कर दूं। उसने साहिल की बात को नज़रअंदाज किया। आज मेरा लेक्चर बहुत शानदार रहा। आज़ादी का ऐसा बुगल बजाया कि तमाम लेडीज़ झूम कर खड़ी हो गईं और तालियां बजाती हुई चीख पड़ी, गुलामी नहीं, हमें आज़ादी चाहिए। साहिल ने नायमा को सोफे पर बिठाया, सोनू को बेड पर डालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जब तक सीमा ड्रेस बदल कर लाउंज में आई, साहिल ने हज़्म मामूल चाय की 2 प्यालियाँ तैयार करके मेज़ पर लगा दी थी। सुबह का नाश्ता तैयार करना सीमा की जिम्मेदारी थी और शाम की चाय साहिल की। आज बहुत थक गए, साहिल ने सोफर पर बैठते हुए कहा। नायमा को बिस्किट खिलाने लगा। सीमा ने गौर से साहिल के चेहरे पर नज़र दौड़ाई। थकन के आसार जाहिर हो रहे थे। वो नायमा को बिस्किट खिलाने में मगन था। किस कदर समझौता कर लिया है हालात से इस शख्स ने, ना जाने क्यों ये जुमला सीमा के ख्याल में दस्तक देने लगा। उसने कई दिनों बाद नज़र भरकर शौहर की तरफ देखा। उसे लगा साहिल कुछ कमज़ोर हो गए हैं। थोड़ी देर पहले दिए गए अपने लेक्चर का एक एक हर्फ उसे याद आने लगा। साहिल ने हमेशा की तरह खामोशी से चाय पी, प्यालियां समेट कर वो किचन की तरफ जाने लगा। रात खामोशी से बीत रही थी, लेकिन आज बावजूद बहुत मसरूफ रहने के सीमा को नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर करवटें बदलती रही, गुजरे दिनों की तस्वीरें उसकी आंखों में चुभती रही। कुछ यादों के रंग इतने पक्के होते हैं कि वक्त गुजरने के साथ हल्के होने के बजाय और ज़्यादा पक्के होते चले जाते हैं। औरतों की आज़ादी पर उसने एक तहरीक चला रखी थी। औरतों को बराबर का हक और अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने का हक मिलना चाहिए। औरत किसी से दब कर ज़िंदगी न गुजारे, चाहे उसका शौहर ही क्यों न हो। इन्हीं बातों का प्रचार वो पिछले 10 साल से कर रही थी।

0: सैकड़ों तरक्की पसंद औरतें उसके साथ जुड़ चुकी थीं। सीमा पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी, बोलने का फन जानती थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थी। साहिल को सीमा की इन सोशल सरगर्मियों पर कोई एतराज भी नहीं था, लेकिन वो उसे समझाता था, सीमा तुम्हें गलत मसले पर अपनी सलाहियत और मेहनत खर्च कर रही हो। मुझे खुशी होती कि तुम औरतों को बागी न बनाकर होशमंदी के साथ सूझबूझ सिखाती। घरों का सुकून बर्बाद करके कोई खुशहाली नहीं आ सकती और न औरत पुरसुकून रह सकती है। ओ नो नो मिस्टर साहिल, ये दकियानूसी बातें अब रहने दे। हर वक्त चूल्हे में पसीने से शराबूर होकर बच्चे पालते हुए गुलाम जहन औरतों को बेदार होना पड़ेगा। मैं इसकी तरफदारी नहीं करता कि औरतें गुलाम जहनीयत बनी रहें। उसे भी जीने का हक, हंसने बोलने तफरी का हक मिलना चाहिए। लेकिन तुम और तुम्हारी जैसी औरतें आज़ादी का जो तसव्वुर घरों के अंदर दाखिल करना चाहती हैं, ये एक डरावना ख्वाब है जो हर घर का चैन और आराम छीन कर टूट रहा है। साहिल उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन अपने घर की बर्बादी साहिल को मंजूर नहीं थी, इसलिए वो सीमा के साथ हर कीमत पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर था। बिस्तर पर लेटी सीमा रात के अंधेरे में कमरे की दीवारों पर नजरें मरकूज किए खामोश पड़ी थी। साहिल, अब ये नहीं होगा कि मैं ऑफिस भी जाऊं, बच्चों को केयर सेंटर में ड्रॉप करूं, घर के सारे काम निपटाती रहूं। ये घर हम दोनों का है, इसके तमाम काम हम मिलकर करेंगे। शाम का खाना तुम बनाओगे, सुबह का मैं। तुम्हें मालूम है मुलाजमा के हाथ का खाना मुझे पसंद नहीं है। हफ्ता भर के काम संडे को तुम करोगे और अगले संडे मैं करूंगी। साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन से घर का शेड्यूल सीमा की प्लानिंग के मुताबिक हो गया। साहिल कोई बदमजगी पैदा करके घर का सुकून बर्बाद करना नहीं चाहता था। बच्चों का मुस्तकबिल उसे बहुत अजीज था। आज न जाने सीमा ने साहिल के चेहरे पर वो क्या देख लिया जिससे उसके अंदर उथल पथल मच गई। साहिल के थके चेहरे, बोझल खाली आंखों और उलझे बालों ने बहुत कुछ उसे कह दिया था। कुछ ऐसी अनकही बातें, कुछ ऐसे दर्द अंगेज एहसासात जो अल्फाज में अदायगी के बगैर बहुत कुछ उससे कह गए थे। सुबह वो देर तक बिस्तर पर पड़ी रही। रोजाना सीमा साहिल से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाती थी, लेकिन आज खिलाफ मामूल बिस्तर पर लेटी रही। आंखें उसने मूंद कर रखी थी। साहिल ने उससे कोई सवाल नहीं किया और चुपके से अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर सोनू को उठाया, नायमा का हाथ थामा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेन गेट बंद करने की आवाज आई और सीमा ने एक लंबी सांस ली। वो झटके से बिस्तर से उठी। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। सीमा, कभी फुर्सत मिले तो सोचना, तुम अपनी अना की खातिर कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। आजादी, बेफिक्री, तरक्की, ये सब अल्फाज उन्हें झांसा देंगे और वो अपने घर बर्बाद करेंगी, क्योंकि हर घर में साहिल जैसा मर्द नहीं होगा जो अपनी नैया बचाने की फिक्र करता है। साहिल की बातें उसे याद आ रही थी। उसका माथा दर्द से फटा जा रहा था। सीमा, जिस रास्ते पर तुम चल पड़ी हो, ये किसी हसीन मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। औरत को एहतराम और इज्जत की जरूरत है और वो आजादी के नारे से हासिल नहीं होगा। तुम शतरंज का ऐसा मोहरा बन गई हो जिसका अंजाम भयानक नाकामी और रुसवाई है। उफ, उसने जहन को झटके की कोशिश की, लेकिन हर जाविये नजर में उसे साहिल खड़ा नजर आ रहा था, जिसकी एक एक बात उसे पागल बना रही थी। सीमा सोफे से उठी और राइटिंग टेबल पर आकर रुक गई। उसने कलम उठाया। आज उसे कई बड़े फैसले करने थे। सबसे पहले उसने सेंटर ऑफ एम्पावरमेंट वुमेन के ओहदे से इस्तीफा लिखा। फिर उसने औरतों की कमेटी के नाम एक खत लिखा। फ्रीडम कमेटी से इस्तीफा लिखने के बाद वो कुछ देर रुकी। अगले ही लम्हे उसने मल्टीनेशनल कंपनी की पोस्ट से इस्तीफा लिखने के बाद करीब पड़ी चेयर पर अपने आप को गिरा दिया। अब वो अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। जो काम बड़े बड़े मुबाहसे और इंटेलेक्चुअल टॉक्स नहीं कर पाए थे, वो कारनामा साहिल के खामोश रवैये ने कर दिया था। सामने खिड़की से बाहर मशरक की तरफ से सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहा था। उसे महसूस हुआ सूरज की चमकती किरणों में उसका वजूद बुलंदियों पर पहुंच गया है। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये एहसास उसे आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उसी लम्हे उसके दिल ने उससे एक मुआहदा किया। अब बच्चे केयर सेंटर नहीं जाएंगे, क्योंकि ममता और शफकत से पुर केयर सेंटर अब उसके घर आ गया है। उसके कदम खुद ब खुद किचन की तरफ बढ़ गए।
1: अभी आप सुन रही थी अफसाना बुलंदी का सफ़र। अफसाना निगार थी बसगा खातून। इसी के साथ उर्दू प्रोग्राम अंजुमन अब यहीं ख़त्म हुआ। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। दोपहर के 3:30 हुए हैं। हमारी इस सभा के कार्यक्रम

का प्रसारण अब यहीं संपन्न होता है। अपने सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की तीसरी सभा।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस यात्रा के दौरान उन्होंने एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन

0: धनराशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवाओं को असंख्य अवसर प्रदान करना विकसित भारत की मूल परिकल्पना है। युवा कार्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लिखित एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में ना लें, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसिलिंग करना। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अधिक प्रभावी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए का था। पिछले वित्त वर्ष में ये बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। श्री सिंह आज नागपुर के अंबाझरी स्थित यंत्र इंडिया लिमिटेड के आयुध निर्माणी परिसर में 10,000 टन क्षमता वाले आधुनिक एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज विधानसभा में राज्य का संशोधित बजट 2026-27 पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने समावेशी विकास तथा सतत अवसंरचना के नए केरल का संकल्प लिया। श्री सतीशन ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के पहले बजट में स्वास्थ्य सेवा और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। अस्मिता चालिहा मकाओ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज क्वार्टर फाइनल में कोरिया की किम मिन सिन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर 30,530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की तीसरी सभा। सभा के आरंभ में आइए हम आपको बताते हैं कि आज के हमारे इस सभा में आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आए हैं।

श्रोताओं, अभी से कुछ देर बाद यानी कि 5:10 पर सुनिएगा भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या। युवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:30 पर, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे वार्ताकार ऋतिका यादव की वार्ता, सुरक्षित समाज के निर्माण में समुदाय की भूमिका।

शाम 6 बजे कार्यक्रम ग्राम्य लोक में आज सुनिएगा संत प्रकाश की वार्ता भूमि का समतलीकरण।

श्रोताओं, शाम 6:30 का वक्त होता है कार्यक्रम मजदूर मंडल का, जिसमें आज घोरे लाल की वार्ता पेश की जाएगी। विषय होगा माता पिता और पत्नी के भरण पोषण का कानून।

7:10 का वक्त होता है कार्यक्रम विविधा का, जिसमें आज सुनिएगा डॉक्टर राजेश कुमार की वार्ता त्रिलोचन के काव्य में वैचारिकता।

महफिल कव्वाली फिल्मों से लिए गए कव्वालियों का कार्यक्रम ये प्रसारित होगा रात्रि 8 बजे और चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा 8:30।

आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आज सुन सकेंगे आप रात्रि 10 बजे। श्रोताओं, ये थी एक झलकी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम कुछ ही देर बाद कार्यक्रम लेकर आएंगे जिसका नाम है सुर संध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे बेला शिंदे की आवाज में जोधा अकबर फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत था A.R. रहमान का।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

उदित नारायण और अलका, उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का लिखा गीत, संगीत था ए आर रहमान का और फिल्म का नाम था लगान। आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाज़ में सुनिए गीत गाता चल फिल्म का ये गीत, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी की गाय फिल्म गीत गाता चल के इस के साथ ही सुर संध्या कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, नई सोच की उड़ान, नए सपनों की पहचान और युवा मन की आवाज़ युववाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रेडियो वाली दोस्त कनिका सिंह। दोस्तों, बातों और विचारों की सफर की शुरुआत तो करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कैसे हैं आप। आशा करती हूँ खुद को हाइड्रेटेड ज़रूर रख रहे होंगे, क्योंकि यही तरीका है ना तेज़ गर्मी से खुद का बचाव करने का, समय समय पर पानी पीते रहने का, है ना। और आप चाहें ना तो फ्रूट जूस, सत्तू, छाछ या नारियल पानी भी ले सकते हैं। इनसे ताज़गी बनी रहती है और सेहत भी दुरुस्त रहती है। और हम सभी जानते ही हैं अच्छी सेहत ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी अपने जीवन के हर पल को खुशी और ऊर्जा के साथ जी पाते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में सही जानकारी और जागरूक होना बहुत ज़रूरी होता है। समय समय पर बीमारी की पहचान, डॉक्टरों की सलाह और सही इलाज से हम अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही बीमारी के बारे में जिसके बारे में जानना और समझना बेहद ज़रूरी है, सिकल सेल रोग। सबसे पहले जानते हैं कि सिकल सेल रोग क्या है। दोस्तों, सिकल सेल रोग एक जेनेटिक यानी कि अनुवांशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आ सकती है। इस बीमारी में हमारे शरीर का एक ज़रूरी हिस्सा हीमोग्लोबिन, जो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। इस बीमारी में शरीर में हीमोग्लोबिन एस नाम का असामान्य हीमोग्लोबिन बनता है। इसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स का आकार हसिया यानी कि अर्ध चंद्राकार जैसा हो

0: नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स आसानी से शरीर में घूमते रहते हैं, लेकिन सिकल सेल से प्रभावित रेड ब्लड सेल्स बहुत ही सख्त हो जाते हैं और कभी कभी रक्त बहाव में भी रुकावट पैदा कर सकते हैं। इससे शरीर के कुछ हिस्सों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इस वजह से व्यक्ति को दर्द, थकान, कमजोरी और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब ज़रूरी ये है कि ये सिकल सेल रोग क्यों होता है, क्या है इसके लक्षण, ये जानना। इस बीमारी में मरीज को कई बार तेज़ और गंभीर दर्द होता है, जिसे सिकल सेल संकट कहा जाता है। धीरे धीरे ये बीमारी शरीर के कई अंगों जैसे कि किडनी, लंग्स, हार्ट और भी कई ऑर्गन्स को प्रभावित कर सकती है, जिससे स्थिति गंभीर हो सकती है। और इलाज की बात करें तो इसका इलाज दवाओं से भी किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है और गंभीर मामलों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। सही समय पर अगर इसकी जांच हो जाए, इलाज हो जाए, यानी कि हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। ये रोग दुर्लभ ज़रूर है, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, इलाज इसका संभव है। एक और महत्वपूर्ण बात, हर साल 19 जून को विश्व सिकल सेल रोग दिवस मनाया जाता है, यानी कि आज ही के दिन। और इस साल की इसकी मुख्य थीम है क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप, इक्विटी इन सिकल सेल केयर, यानी कि सिकल सेल देखभाल में समानता और बेहतर इलाज की दिशा में काम करना। इस बीमारी को लेकर के हमारे देश भारत में भी दोस्तों कई प्रयास किए जा रहे हैं, खास करके नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2045 के तहत। इसका लक्ष्य सिकल सेल रोग की रोकथाम और बेहतर इलाज को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही नए उपचार विकल्पों जैसे कि बिरसा 101 जीन थेरेपी पर भी काम किया जा रहा है, निरंतर कार्य किए जा रहे हैं, ताकि हम सभी एक अच्छा लाइफ, एक हेल्दी लाइफ को जी सके। और दोस्तों, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको लेके चलते हैं कि संगीत की दुनिया में।
1: उत्पीड़न, निजी तस्वीरों का

0: दोस्तों वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे अच्छे स्वास्थ्य की, और दोस्तों जब अच्छा स्वास्थ्य हम सभी का रहता है ना, तो एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। यानी कि आप सोचिए, सभी घर में सभी हेल्दी लोग, यानी कि एक स्वस्थ समाज। और दोस्तों स्वस्थ समाज इस देश के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, इस समाज को और सुरक्षित कैसे बना सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं हमारी आज की गेस्ट रितिका यादव से, जिसे हम जानेंगे सुरक्षित समाज के निर्माण में समुदाय की भूमिका।
1: किसी भी सभ्य समाज की पहचान केवल उसकी आर्थिक प्रगति या तकनीकी उपलब्धियों से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वे अपने सबसे कमजोर और संवेदनशील नागरिकों को कितना सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करता है। जब किसी समाज में महिलाएं, बच्चे, किशोरियां और अन्य कमजोर वर्ग भयमुक्त होकर जीवन जी सकें, अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें और सम्मान के साथ आगे बढ़ सकें, तभी उस समाज को वास्तव में सुरक्षित कहा जा सकता है। हर वर्ष 19 जून को विश्व समुदाय संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि युद्ध, सामाजिक संघर्ष, हिंसक परिस्थितियों, सामुदायिक तनावों अथवा अन्य संकटों के दौरान यौन हिंसा केवल किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की गरिमा पर आघात है। ये एक ऐसा अपराध है जो पीड़ित के शरीर ही नहीं, उसके आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन को भी गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए कानून, न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र महत्वपूर्ण हैं, लेकिन केवल इन्हीं के सहारे इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसके लिए समाज और समुदाय की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। सुरक्षित समाज का निर्माण तभी संभव है जब समुदाय स्वयं जागरूक, संवेदनशील और जिम्मेदार बने। समुदाय किसी भी समाज की सबसे मजबूत इकाई होता है। जब लोग अपने आसपास होने वाली घटनाओं के प्रति सतर्क रहते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान का व्यवहार करते हैं और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, तब सुरक्षा का वातावरण स्वतः निर्मित होता है। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाली हिंसा को रोकने में समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि समाज का प्रत्येक सदस्य ये सुनिश्चित करे कि किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न या भेदभाव को सामान्य व्यवहार मानकर अनदेखा नहीं किया जाएगा, तो उनके अपराध प्रारंभिक स्तर पर ही रोके जा सकते हैं। यौन हिंसा केवल युद्ध क्षेत्रों या संघर्षग्रस्त इलाकों की समस्या नहीं है। ये कई बार सामाजिक असमानता, लैंगिक भेदभाव, शक्ति के दुरुपयोग और मौन स्वीकृति से भी जन्म लेती है। इसलिए सुरक्षित समाज के निर्माण की शुरुआत महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता, सम्मान और संवेदनशीलता की संस्कृति विकसित करने से होती है। जब परिवारों में बेटी

0: और बेटों को समान अवसर दिए जाते हैं, जब विद्यालयों में लैंगिक संवेदनशीलता की शिक्षा दी जाती है और जब समाज महिलाओं की गरिमा को सर्वोच्च मूल्य मानता है, तब हिंसा के विरुद्ध एक मजबूत सामाजिक वातावरण तैयार होता है। समुदाय की जिम्मेदारी केवल अपराध होने के बाद प्रतिक्रिया देने तक सीमित नहीं है, उसकी भूमिका अपराध की रोकथाम में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पड़ोस, विद्यालय, सामाजिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय नेतृत्व मिलकर ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहां पीड़ित व्यक्ति बिना भय के अपनी बात कह सके और उसे सामाजिक समर्थन प्राप्त हो। अक्सर यौन हिंसा के मामलों में पीड़ितों को सामाजिक कलंक, उपेक्षा या दोषारोपण का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति उन्हें न्याय प्राप्त करने से रोकती है। इसलिए समुदाय को ऐसी सोच विकसित करनी होगी जहां पीड़ित के साथ सहानुभूति, संवेदनशीलता और सम्मान का व्यवहार किया जाए। शिक्षा इस दिशा में सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। शिक्षित और जागरूक नागरिक न केवल अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हैं, बल्कि दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना भी सीखते हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामुदायिक मंचों पर लैंगिक समानता, मानवाधिकार सुरक्षा और सम्मानजनक व्यवहार से जुड़े कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए। बच्चों और युवाओं को ये सिखाया जाना चाहिए कि किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न या भेदभाव अस्वीकार्य है। आज डिजिटल युग में यौन हिंसा के स्वरूप भी बदल रहे हैं। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न, निजी तस्वीरों का दुरुपयोग और डिजिटल माध्यमों से होने वाले शोषण जैसी चुनौतियां तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में समुदाय की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। परिवार, शिक्षक और समाज को मिलकर युवाओं को डिजिटल सुरक्षा और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार के प्रति जागरूक बनाना होगा। सामाजिक समरसता भी सुरक्षित समाज की आधारशिला है। जब समाज में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर भेदभाव कम होता है और सभी को समान सम्मान प्राप्त होता है, तब हिंसा और संघर्ष की संभावनाएं स्वतः घटती हैं। भारत की विविधता उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। इस विविधता को सम्मान और सहयोग की भावना से जोड़ना ही सुरक्षित और शांतिपूर्ण समाज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आज अनेक स्थानों पर सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणा प्रभावी सिद्ध हो रही है। इसमें पुलिस और नागरिक मिलकर सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का समाधान खोजते हैं। यदि लोग संदिग्ध गतिविधियों, उत्पीड़न या हिंसा की घटनाओं की सूचना समय पर संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं, तो कई गंभीर अपराधों को रोका जा सकता है। ये सहयोग समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को मजबूत करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान हमने देखा कि किस प्रकार स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और सामान्य नागरिकों ने संकट की घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनकर मानवता की मिसाल पेश की। यही सामुदायिक एकजुटता हमें ये सिखाती है कि जब समाज संवेदनशीलता और सहयोग की भावना से कार्य करता है, तब बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। यही भावना यौन हिंसा और अन्य सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष में भी हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। हम युवाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की ऊर्जा और परिवर्तन की शक्ति हैं। यदि वे लैंगिक समानता, मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय के पक्षधर बने, जागरूकता अभियानों में भाग लें और सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करें, तो समाज में सम्मान और सुरक्षा की संस्कृति को और अधिक मजबूत किया जा सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम यौन हिंसा को केवल कानूनी या प्रशासनिक विषय ना माने, बल्कि इसे मानव गरिमा, सामाजिक न्याय और सामुदायिक उत्तरदायित्व से जुड़ा विषय समझें। सुरक्षित समाज का निर्माण तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक ये महसूस करे कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा करना उसकी भी जिम्मेदारी है। महात्मा गांधी ने कहा था, आप वे परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, हम देश के युवा हैं और हम वो परिवर्तन बन सकते हैं जो हम अपने आसपास देखना चाहते हैं, क्योंकि हम ही तो हैं जो सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आप सभी सुन रहे थे रितिका यादव को, जिन्होंने हमें समझाया सुरक्षित समाज के निर्माण में समुदाय की भूमिका। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।

अच्छा मुझे ना आपसे पूछना है, आप सभी को अच्छा लगता है क्या जब हमारे घर के बड़े दीदी या भैया हमारी परेशानियों में सुख दुख में हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं? देखिए मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब वे हमारी उलझनों को सुनते हैं और उनसे निकलने का रास्ता भी बताते हैं। वैसे ही है समाधान दीदी। जी हाँ दोस्तों, समाधान दीदी एक AI से लेस चैटबॉट है जो लोगों को सरकारी विभागों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने में मदद करता है। इसकी खास बात यह है कि ये तकनीक बोलकर शिकायत दर्ज करने की भी सुविधा हमें देती है, यानी कि आपको लंबा लिखने की परेशानी नहीं, बस अपनी बात बोलिए और शिकायत दर्ज कराइए। और दोस्तों, भारत जैसे विविधताओं वाले देश में भाषा कभी रुकावट नहीं बननी चाहिए। समाधान दीदी कई भारतीय भाषाओं में भी काम करती हैं। आप पंजाबी, गुजराती, तमिल, बंगाली जैसी भाषाओं में भी इसका लाभ ले सकते हैं। और फिलहाल में अगर देखा जाए भारत की सभी 22 अनुसूचित भाषाओं को ये सपोर्ट करती है। देखा ना दोस्तों, कितना आसान हो गया अब शिकायत दर्ज कराना। ना ये चिंता है कि किस विभाग में जाएं, शिकायत कैसे लिखें, सही शब्दों का चुनाव कैसे करें। अब आप आसानी से शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसे एकीकृत प्लेटफॉर्म CPGRAMS से भी ट्रैक कर सकते हैं। साथियों, ये संभव हो पाया है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी कि DARPG और AI प्लेटफॉर्म भाषिनी के सहयोग से। तो आप याद रखिएगा, परेशानी का हल चाहिए तो समाधान दीदी है आपकी डिजिटल साथी। दोस्तों, आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को आसान तो बना रही है, समाधान दीदी भी इसी का एक उदाहरण है जहाँ AI लोगों की समस्याओं के समाधान में मदद कर रही है। और अब जब हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की इस प्रगति को देखते हैं ना, तो मन में एक सवाल ज़रूर आता है, आखिर भारत में साइंस और रिसर्च की शुरुआत कहाँ से हुई? ये बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स और लैब्स कैसे बने? क्योंकि आज भारत हर दिन नए इनोवेशन कर रहा है, नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, लेकिन इस वैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत भी कभी एक छोटे से कदम से हुई थी। तो आज बात करते हैं एक ऐसे संस्थान की जो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट होने का गौरव हासिल करता है। एक ऐसा संस्थान जिसने भारत में मॉडर्न साइंस की मजबूत नींव रखी और देश को दुनिया के वैज्ञानिक मानचित्र पर पहचान दिलाई। हम बात कर रहे हैं इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस यानी IACS की, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1876 में डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने की थी। उनका सपना था कि भारत में विश्व स्तरीय वैज्ञानिक शोध हो और इसी सोच के साथ उन्होंने इस संस्थान की नींव रखी। IACS का नाम इतिहास में इसलिए भी दर्ज है क्योंकि यहीं पर महान वैज्ञानिक सर सीवी रामन ने रामन इफेक्ट की खोज की थी। इस खोज ने उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिलाया और वे विज्ञान में नोबेल पाने वाले भारत के पहले वैज्ञानिक बने। आज IACS में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में उन्नत शोध किए जाते हैं। यहाँ BSMS, PhD और पोस्ट डॉक्टरल कार्यक्रम भी संचालित होते हैं। देखिए, एक सपने से शुरू हुई यह यात्रा आज भारत के वैज्ञानिक भविष्य को नई दिशा दे रही है।

दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया के किसी हिस्से में युद्ध और संघर्ष होता है तो उसका सबसे गहरा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। ऐसे कठिन समय में कई लोग हिंसा और पीड़ा का सामना करते हैं, जिनमें यौन हिंसा भी एक गंभीर और चिंताजनक समस्या है। इसी मुद्दे के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाने और संघर्ष के समय पीड़ितों के सम्मान व अधिकारों की रक्षा के लिए हर साल आज के दिन 19 जून को संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है कि युद्ध और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में होने वाली यौन हिंसा को रोका जा सके और पीड़ितों को न्याय, स्वस्थ सेवाएं, मानसिक सहयोग मिल सके। ये दिन केवल एक गंभीर समस्या के बारे में बात करने का अवसर नहीं है दोस्तों, बल्कि उन सभी लोगों के साहस को सम्मान देने का भी अवसर है जिन्होंने ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। और दोस्तों, जब दुनिया के कई हिस्सों में आज भी संघर्ष और तनाव की स्थिति देखने को मिलती है,

तब ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपनी मानवता को कैसे बनाए रखें। संकट के समय हम पीड़ितों की बात सुनकर, उनकी गरिमा का सम्मान करके और ज़रूरतमंदों की मदद करके एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी ये ज़रूर सोचें कि हम विश्व शांति में, इनके समझौतों में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, जहाँ संघर्ष की जगह संवाद हो, डर की जगह सुरक्षा हो और हर इंसान सम्मान के साथ जीवन जी सके। ऐसा ही तो देश, ऐसी ही तो दुनिया हम चाहते हैं, क्योंकि सच्ची शांति वही है जहाँ हर स्थिति में इंसानियत जिंदा रहे।

दोस्तों घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, यानी कि अब हम मिलेंगे कल ढेर सारी बातों के साथ और यहीं चटपटे अंदाज में एंटरटेनमेंट भी आपके लिए हम जरूर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खिलखिलाते रहें। रेडियो वाली दोस्त कनिका सिंह का नमस्कार।

किसान भाई और बहनों, राम राम। कार्यक्रम ग्रामीलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और हमें सुनने, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त अनिरुद्ध कुमार। किसान साथियों, आपके साथ हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले आप लोग ये बताइए, कैसे हो आप सभी? सब लोग ठीक ठाक तो हैं? सब बढ़िया चल रहा है ना? खेती किसानी की बात करें तो मूंग की फसल तो आपके घर आ गई होगी। इस बार देखिए, पैदावार भी अच्छी रही है और भाव भी बढ़िया है, तो जिन किसान भाइयों ने मूंग लगाई थी उनका खूब मूंग मीठा हुआ है। धान रोपाई की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। कुछ किसान साथियों ने धान की सीधी बुवाई की है। वैसे अच्छा है, इसमें लागत कम आती है। कहने का मतलब है कि धान की फसल लगाने की पूरी तैयारी है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पर हम आपसे एक बात ज़रूर पूछना चाहेंगे, वो ये कि अब हम लोग लगातार दो सीजन यानी कि खरीफ और रबी दोनों में अपनी फसलों में उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, यानी कि खरीफ में भी करेंगे और जो रबी की आने वाली फसलें जैसे गेहूं हो गया, सरसों, आलू, इसमें भी उर्वरकों का प्रयोग हम करेंगे। क्या हमें उर्वरकों के संतुलित प्रबंधन के बारे में पता है? साथियों, अगर हम संतुलित उर्वरक प्रबंधन के बारे में नहीं जानते हैं तो इसकी वजह से हमारी लागत बढ़ेगी, हमारी मिट्टी की उर्वरता में कमी आएगी और खेती से हमारा मुनाफा कम होगा, ये आपको पता है। और अगर हम अंदाजे से अपनी फसलों में उर्वरक डालते हैं ये सोचकर कि पड़ोसी अनूप चाचा ने अपने धान में 50 किलो प्रति बीघा यूरिया दिया है या आलू में

वो 3 पैकेट प्रति बीघा के हिसाब से डीएपी डालते हैं तो फिर भाई मामला और भी खराब है। किसान साथियों ये जान लीजिए कि अपनी मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए, खेती की लागत को घटाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें संतुलित उर्वरक प्रबंधन को जानना बहुत ही जरूरी होता है। हमें फसलों में उर्वरकों का किसी के कहने बताने देखकर या होड़ करके नहीं देना चाहिए। साथियों हमें एक बात समझनी होगी, अगर हम ये सोचते हैं कि फसलों में ज़्यादा मात्रा में उर्वरक डालने से पैदावार बढ़ेगी तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। हमारी पैदावार तब बढ़ेगी जब हम अपनी मिट्टी में उतनी ही मात्रा में पोषक तत्व या उर्वरक डालेंगे जितनी ज़रूरत हमारी मिट्टी को है। हमारे खेत की मिट्टी में जिन तत्वों की कमी है उन्हें पूरा करो, जो तत्व पर्याप्त मात्रा में है या ज़्यादा मात्रा में है उन्हें मत डालो। ऐसा हम करेंगे तो संतुलित रहेगा। अब भाई बात आती है कि पता कैसे चले कि किस तत्व की मात्रा हमारी मिट्टी में पर्याप्त है या नहीं, नाइट्रोजन ज़्यादा है या फॉस्फोरस कम है, जिंक की मात्रा सही है। तो इसके लिए एक ही तरीका है और वो तरीका है अपनी मिट्टी की जांच। साथियों अगर हम अपने खेत की मिट्टी की जांच कराते रहते हैं तो हमें उससे पता चलता रहता है कि हमारे खेत में किन तत्वों की कमी है और कितनी है, कौन से तत्व हमारी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में है। ये सब हम मृदा परीक्षण से आसानी से पता चल जाता है। और अब जो समय चल रहा है इन दिनों हम मृदा परीक्षण करा सकते हैं क्योंकि ऐसा समय होता है जब हमारे खेत खाली होते हैं। तो साथियों अगर हमें फसलों में संतुलित मात्रा में उर्वरक देने हैं तो पहला और ज़रूरी काम मिट्टी की जाँच कराना है, इसे आप ज़रूर करा लीजिए। दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें सिर्फ रासायनिक खादों पर निर्भर नहीं रहना कि केवल डीएपी देना है कि यूरिया देना है। इसके बजाय गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद का प्रयोग भी हमें अपनी खेती में करना है। अपने खेत की मिट्टी में सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं उनके साथ जिंक, आयरन, बोरोन जैसे तत्वों की कमी को भी दूर करना है। उर्वरकों को सही तरीके से फसलों में दें, ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो उर्वरक हम अपनी फसलों में देते हैं उन्हें सही तरीके से दें। जैसे कि नाइट्रोजन वाली खादों में एक साथ डालने के बजाय उन्हें किश्तों में दें, यानी कि 2-3 बार में दें, और जो खाद हम डालते हैं उन्हें सीधे जड़ों में दें तो उसका जो असर होता है वो ज़्यादा होता है। तो किसान साथियों 100 बात की एक बात है कि हमें अपनी फसलों में अपनी मिट्टी में उर्वरकों का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए। उर्वरकों के बेहतर प्रयोग का तरीका हमें पता होना चाहिए, तरीका क्या है वो हमने आपको बता ही दिया है। तो हो सके तो अपने खेत की मिट्टी की जांच आप करा लें जो खरीफ और रबी फसलों में संतुलित उर्वरक प्रबंधन में आपकी मदद करेगी। और अगर आपके पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं है तो आप उसे भी बनवा लें और निःशुल्क मृदा परीक्षण कराएं। किसान साथियों संतुलित उर्वरक प्रबंधन जो हमारी फसलों, हमारी मिट्टी, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में अभी हमने बात की। और दोस्तों चलिए अब बात करते हैं आपके मनोरंजन की, यानी कि आपको सुनवाते हैं एक बढ़िया सा लोकगीत और जानते हैं ये क्या कह रहे हैं।

0: किसान साथियों, चार धाम की यात्रा के बाद अब वापस लौटते हैं अपनी कर्म भूमि में। साथियों, इस समय हमारे ज्यादातर खेत खाली पड़े हैं। जायद की फसल लगभग कट गई है या फिर हफ्ते 10 दिन में कट जाएंगी और खरीफ की फसलें अभी हफ्ते 10 दिन बाद लगेंगे। वैसे तो हमारे खेत जून से पहले सप्ताह में ही खाली हो जाते हैं, तो इन दिनों में हमें अपने खाली पड़े खेतों में या फिर जब भी हमें मौका मिले अपने खेतों को एक आध साल छोड़कर समतल जरूर कराते रहना चाहिए। साथियों, भूमि समतलीकरण क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं, इस बारे में हमें बता रहे हैं संत प्रकाश।
1: किसी भी फसल का उत्पादन उस क्षेत्र की जलवायु से प्रारंभ होता है तथा वातावरण की जानकारी से उस क्षेत्र की भूमि उपयोग, फसल की उपज और फसल

के विवरण के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। भूमि का समतलीकरण न होने की दशा में भूमि के उपयोग पर एवं फसल उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसमें विशेषकर ऊंचाई, धरातल की बनावट एवं ढाल और निचले क्षेत्रों में पानी के भराव का फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समतलीकरण से जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है। किसी क्षेत्र में कितनी आसानी से खेती की जा सकती है, यह उस क्षेत्र की समतलीकरण पर निर्भर होता है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सातवां तथा सर्वाधिक घनी आबादी वाले देशों में इसका दूसरा स्थान है। इसके उत्तर में विशाल हिमालय और अन्य पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। यह देश में दक्षिण की ओर फैला हुआ है और कर्क रेखा पर नीचे की ओर तंग होता हुआ पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर के बीच हिंद महासागर में समाप्त हो जाता है। यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। समतलीकरण का कार्य कृषकों के खेतों में 1% से लेकर 3% तक ढाल तक नियोजित करना चाहिए। समतलीकरण के लिए प्रत्येक खेत का स्वतंत्र रूप से ग्रिड सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। ग्रिड सर्वेक्षण के आधार पर कटाव एवं भराव की मिट्टी का आकलन किया जाना चाहिए। ग्रिड सर्वेक्षण से लिए गए समस्त आरएल का जोड़कर ग्रिडों की संख्या में भाग देने पर खेत का औसत तल ज्ञात हो जाता है। इस औसत तल में से खाली स्थान पर लगने वाली मिट्टी हेतु कटाव को घटा देने पर संशोधित तल प्राप्त हो जाता है, जिस पर कि खेत का समतलीकरण किया जाना है। संशोधित तल तथा ग्रिड बिंदुओं पर प्राप्त तलों के आधार पर कटाव तथा भराव की गणना कर ली जाती है। कटाव में ग्रिड की साइज को गुणा करने पर समतलीकरण में किए जाने वाली मिट्टी का आकार अथवा परिणाम प्राप्त कर लेना चाहिए। सामान्यतः ग्रिड का आकार 5x5 या 10x10 मीटर का होना चाहिए। भूमि का समतलीकरण के लाभ हेतु खेत के ऊंचे भाग की मिट्टी को काटकर खेत के निचले भाग में भर दिया जाना चाहिए तथा निचले भाग में सोल्जर बांध बनाया जाता है, जिससे खेत पूर्ण रूप से समतल रहे। सोल्जर बांध का क्रॉस सेक्शन सामान्यतः 0.5 से 0.6 वर्ग मीटर रखा जाना चाहिए, किंतु बीयण वाले क्षेत्रों में क्रॉस सेक्शन 0.81 वर्ग मीटर रखा जाना चाहिए। समतलीकरण का कार्य करने से कटाव ग्रस्त क्षेत्र विकसित सीढ़ी नुमा खेत का रूप ले लेते हैं, जिनमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर सभी प्रकार की भरपूर फसलें ली जा सकती हैं। वर्षा के जल को खेत में रोकने के लिए खेत के चारों तरफ मेड़बंदी भी करनी आवश्यक है। चूंकि समतलीकरण का कार्य अत्यधिक खर्चीला है, इसलिए क्षेत्रफल के अनुसार कार्य नियोजन करना चाहिए और पैसे का भी आकलन के उपरांत भी समतलीकरण का कार्य कराना चाहिए। क्योंकि आज के युग में पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा समुचित रूप से फसलों उत्पादन करने के योग्य नहीं है। इसका कारण है कहीं भूमि ऊसर तो कहीं बंजर, अथवा कहीं अम्लीयता है तो कहीं क्षारीयता है, आदि अनेक समस्याएं सक्रिय हैं जो भूमि को अन उपजाऊ बनाती हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि मृदा जो पौधों की जननी है, जिससे पौधा अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए खनिज तत्व पानी वायु आदि ग्रहण करता है, उसका उचित प्रबंध समतलीकरण करके ही किया जा सकता है, जिससे मृदा की उर्वरकता कायम बनी रहे तथा मृदा को फसलोत्पादन के लिए ठीक बनाया जा सके। पौधों की वृद्धि भूमि समतलीकरण एवं वातावरण की विभिन्न अवस्थाओं पर निर्भर करती है। क्योंकि पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए भूमि का समतलीकरण होना अत्यावश्यक है, जिससे पौधे को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाएं। भूमि का समतलीकरण का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि मृदा की उर्वरकता और मृदा की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए कम व्यय में लाभपूर्ण फसलों का उत्पादन हो सके। पौधे की वृद्धि के लिए भूमि का समतलीकरण करवाने से हमको लाभ भी प्राप्त होते हैं, जैसे भूमि की भौतिक अवस्था ठीक रहती है, जिससे पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक समस्त भौतिक रासायनिक तथा जीवाणुविक शक्तियों के मिश्रित क्रियाकलाप भूमि की उर्वरकता को निर्मित करते हैं। नंबर 2, पौधे की पोषक तत्वों की उपलब्धता की समुचित रहती है। नंबर 3, मृदा जल तथा पौधों हेतु पानी की उचित मात्रा भी भूमि में उपलब्ध रहती है। तीसरा, मृदा क्षरण को रोकना, अत्यधिक अम्लीयता तथा क्षारीयता को भी कम करना, खराब जल निकास को रोकना और पौधों के रोग एवं बीमारियों नियंत्रण करके फसलोत्पादन को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। कुछ समतलीकरण के लाभों को और

0: जोड़ते हुए हम किसान भाइयों को आग्रह करना चाहते हैं कि खेती करने के लिए भूमि का समतलीकरण होना ही बहुत आवश्यक है। जैसे भूमि ऊंची नीची होने पर फसल को उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। बरसात के मौसम में खेत समतल न होने की दशा में बरसात का पानी खेत में से एक स्थान पर एकत्रित होता है अथवा पानी खेत से बाहर बह जाता है। यदि खेत हमारा समतल है तो यह जो है हमको हिरास नहीं होगा। खेत का समतलीकरण न होने की दशा में सिंचाई के पानी का भी दुरुपयोग होता है। अतः इन परिस्थितियों में खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में अथवा हिस्सों में बांटकर सिंचाई करनी चाहिए। खेत का समतलीकरण न होने की दशा में सिंचाई के पानी के साथ अथवा बरसात के पानी के साथ खेत में मौजूद पोषक तत्वों का भी ह्रास नहीं होता है, जिससे फसल उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। खेतों का समतलीकरण हमारा बहुत ही होना जरूरी है, जिससे हमारे फसल उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, फसल उत्पादन और अच्छा होता है, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है कि अपने खेतों का समतलीकरण अवश्य कराएं, जिससे समतलीकरण कराने से किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो।
1: किसान साथियों, अभी हमने संत प्रकाश से जाना भूमि के समतलीकरण के बारे में, ये क्यों ज़रूरी है ये हमारी समझ में आई क्या होगा। तो भाइयों, अपने खेतों को जब भी आपको मौका मिले, ऐसा नहीं कि इन्हीं दिनों में कराएं, जब भी आपके खेत खाली हों, जैसे मान लीजिए कि आलू की खुदाई के बाद खेत खाली हो जाता है, गैप मिलता है आपको, तो और आलू के जो खेत होते हैं ना वो अक्सर ज़्यादा ऊंचे नीचे भी हो जाते हैं, क्योंकि जब खुदाई होती है तो एक कोने से दूसरे कोने पर मिट्टी होती है, तो वहाँ पर मिट्टी ज़्यादा हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आलू की खुदाई के बाद आप अपने खेतों का समतलीकरण उसी समय करा लें। अगर उस समय आप किसी कारणवश नहीं करा पाते हैं तो आप इन दिनों में करा लें, क्योंकि इन दिनों अमूमन जो हमारे खेत हैं वो खाली होते हैं, और अगर हमारे खेत समतल होंगे तो यकीनन उनमें पैदावार अच्छी होगी। और बहुत से फायदे हैं जो समतलीकरण के हैं, जो आगे हम आपसे कभी बातें करेंगे। साथियों, आइए बात करते हैं या जान लेते हैं बाजरा की उन्नत किस्मों के बारे में, जिनमें बात करते हैं राज 171 है, जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बुवाई के लिए बहुत बेहतरीन किस्म है। पूसा 322 है, ये हाइब्रिड किस्म है, अच्छी पैदावार के लिए जानी जाती है। ICMB 155 है, ये किस्म देश के कई हिस्सों के किसानों की बहुत अच्छी पसंद है। HHB 67 ये कम समय में पकने वाली और अधिक उपज देने वाली संकर किस्म है। साथियों, बात करें कम पानी और असिंचित यानी कि बारिश पर निर्भर क्षेत्रों की किस्मों के बारे में, तो मारू स्टार 444 कम पानी और सूखे की स्थिति में शानदार पैदावार के लिए जानी जाती है। वहीं HHB 68 केवल 60 से 68 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। कुछ लोकप्रिय हाइब्रिड किस्मों की बात करें तो NBH 592 ये अपने शानदार उत्पादन और हरे भरे चारे के लिए बहुत लोकप्रिय है। कावेरी और पाइनियर भी, ये वैसे तो ये निजी कंपनियां हैं, लेकिन सुपर डुपर 628 कम दिनों में अत्यधिक उत्पादन देने वाली हाइब्रिड किस्म है। चारे वाली किस्मों की बात करें तो PVN 340 ये मोटा और पौष्टिक चारा देने के साथ साथ शानदार उपज देती है। और संकर किस्मों की जानकारी के बाद साथियों लगे हाथ जान लेते हैं मौसम के मिजाज। पहले बात करते हैं आज के तापमान की। आज का न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस, वहीं अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहा। कल का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, वहीं अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। साथियों, मौसम के हाल जानने के बाद चलिए अब आनंद लेते हैं एक और लोकगीत का, और सुनते हैं जेठ की गर्मी से परेशान होकर ये क्या कह रहे हैं।

0: साथी इस लोकगीत के साथ ही आज का कार्यक्रम ग्रामीण लोग यहीं पर संपन्न करने की अपने रेडियो दोस्त अनिरुद्ध को दीजिए अनुमति। आप सबको हमारी राम राम।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले सभी श्रमिक भाई बहनों को अंजुबाला का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। साथियों, पहले हालचाल ही जान लें आपका, तभी करते हैं आगे का कार्यक्रम शुरू। हाँ, तो कैसे हैं आप? भाई ठीक होंगे, लेकिन गर्मी अभी तो हमारा साथ छोड़ने से रही। देखो ना, फिर से सूरज की तेज किरणें आंखें दिखाने लगी हैं, लेकिन कब तक इनसे डर कर कोई घर बैठे? काम करने तो जाना ही है, तो बस अपना बचाव कीजिए, सही खाइए, ताज़ी खाइए, बाजार से कटे फल खरीद कर मत खाइए, पेट गड़बड़ हो सकता है। भाई सब कुछ सही चले उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, हर व्यक्ति को ही नहीं पूरे समाज को, क्योंकि समाज में भी सब ठीक रहना जरूरी है। जी हाँ साथियों, आज हम आपका ध्यान ऐसे विषय की ओर ले जा रहे हैं जिसके बारे में लोग सोचते ही नहीं, क्योंकि वो सीधे तौर पर आपकी अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उन पीड़ितों के मन पर क्या गुजरती होगी जिनके साथ संघर्ष के दौरान यौन हिंसा हुई हो। और ये सब अक्सर कई देश झेलते हैं। ऐसी हिंसा करके एक देश या एक समाज दूसरे देश से बदला निकालता है, अपनी नफरत जाहिर करता है और संघर्ष या युद्ध के समय दूसरे देश को नीचा दिखाने, उसे शारीरिक मानसिक आघात पहुंचाने की नीयत से ऐसा किया जाता है। साथियों, हमारे समाज में फैली ये बुराई कोई इस युग की देन नहीं है। हर युग में लोग दूसरे की कमजोरी का फायदा उठाते आए हैं। खेल हो या युद्ध, विरोधी कमज़ोर नस ढूंढकर उसे दबाने की सोचता है ताकि सामने वाला घुटने टेक दे। और महिलाएं और बच्चों से हर कोई भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। जब उन्हें कोई परेशान करता है

तो उनसे जुड़े उनके अपने उनके कष्ट को देखकर दुखी होते हैं और यही संघर्ष करने वाले चाहते हैं, यानी यौन हिंसा को युद्ध के एक षड्यंत्र या हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। साथियों, जब किसी महिला, बच्चे या दिव्यांग के साथ ऐसा होता है तो वो पूरी तरह टूट जाता है और समाज भी उसे बड़े अलग तरीके से देखता है। मुझे याद है कि हमारे मोहल्ले में रहने वाली एक लड़की खुद से ही बातें करती रहती थी। बच्चे कभी उस पर हंसते तो कभी उसकी नकल करते। एक बार मैंने उसकी पहचान वाली किसी महिला से उसके बारे में पूछा कि इसे क्या हो गया है या ये जन्मजात ही ऐसी है, तो उसने जो बताया उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए गए थे। इस हादसे से वो कभी उभर ही नहीं पाई। अच्छी पढ़ी लिखी लड़की मानसिक रूप से बीमार हो गई। उसका बहुत इलाज भी कराया गया, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा सदमा लगा ना कि वो साधारण जीवन जी नहीं पाई। साथियों, ऐसे व्यक्ति के शरीर के घाव चाहे ठीक हो भी जाएं, लेकिन मन के घाव ठीक हो पाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। उस एक हादसे ने उसके जीवन को पलट दिया। एक खुशनुमा लड़की चहचाना उसने बंद कर दिया और गुमसुम हो गई। ज़रा सोचिए साथियों, हमने तो एक लड़की के बारे में बताया है। जब कभी संघर्ष के समय बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों के साथ ऐसा गलत व्यवहार होता होगा तो उनके परिवारों की क्या हालत होती होगी, और ऐसा किसी भी देश के साथ या किसी भी समाज के साथ हो सकता है। इसे रोकना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने आज के दिन को संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया, ताकि हर देश के लोग इस तरह का दर्द झेल चुके लोगों को समझें, समाज में उन्हें हंसी का पात्र ना बनाएं, बल्कि पूरा सम्मान दें, उनकी सहायता करें, उन्हें अपनाएं और उनके साथ सही व्यवहार करें। साथियों, यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून व्यवस्था है, जिसमें दंड का प्रावधान भी है। साथियों, सच में ये मानवाधिकारों का हनन है जो हमारे समाज की बीमार सोच के बारे में बताता है, बल्कि ज़रूरत है कि ऐसे पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा हो, क्योंकि वो तो खुद का भला बुरा भूल चुके हैं। ये हमारे ही समाज की तस्वीर है। क्या इतनी बुरी हमारे ही समाज की तस्वीर है? आओ हम इस तस्वीर में मिलकर नए रंग भरें, खुशियों के रंग, प्यार के रंग, क्योंकि एक लड़की को हमें ऐसी नज़र से देखना चाहिए ताकि उससे हमारे जीवन में, समाज में उजाला हो जाए।

0: साथियों, जैसा कि चर्चा में हम बात कर रहे थे कि किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक रूप से कष्ट पहुंचाए, और इसीलिए विश्व में एक दिवस मनाया जाता है जिसे मानव अधिकार दिवस कहते हैं। अब आप बताइए कि ये दिवस कब मनाया जाता है, और हम ज्ञान सागर में इसी विषय पर बात करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी दे देंगे। वैसे जो भी अधिकार हैं उनका कोई हनन ना करे, इसके लिए सख्त कानून भी बनाया जाता है जिसका सबको पालन करना होता है, और अगर कोई किसी का हक नहीं देता तो उसे कानून का सहारा लेना चाहिए। ऐसा ही एक कानून है माता पिता और पत्नी के लिए भरण पोषण का कानून। और आज क्योंकि शुक्रवार है और हर शुक्रवार को हम आपको कानूनी वार्ता सुनवाते हैं, तो चलिए आज भी इसी विषय पर सुनिए वार्ता, और वार्ताकार हैं घूरेलाल।
1: माता पिता एवं पत्नी का भरण पोषण जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति परिश्रम करता है और आयु के अनुसार ही घर परिवार को चलाता है, लेकिन कई बार आपसी टकराव और मुकदमेबाजी के कारण परिवार का कोई सदस्य दूसरे सदस्य के भरण पोषण से मना कर देता है। ऐसे में पुलिस और न्यायालय ही एकमात्र सहारा होते हैं जिनकी मदद से जीवन यापन के लिए समुचित धन और दूसरी सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। भारत सरकार ने बहुत से ऐसे कानून पारित किए हैं जिनके तहत माता पिता, पत्नी, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्य भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। इन कानूनों में प्रमुख हैं दंड प्रक्रिया संहिता, हिंदू भरण पोषण एवं दत्तक ग्रहण अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, वृद्ध माता पिता का भरण पोषण अधिनियम आदि। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत माता पिता एवं पत्नी अपने भरण पोषण प्राप्त करने के लिए दीवान न्यायालय में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती है। प्रत्येक दंड प्रक्रिया संहिता

अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वृद्ध माता पिता एवं पत्नी के लिए भरण पोषण की व्यवस्था करेगा। न्यायालय को भरण पोषण का भत्ता निश्चित करते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि जिन माता पिता एवं पत्नी बच्चों के प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, तब न्यायालय का प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह अपने वृद्ध माता पिता एवं पत्नी बच्चों के भरण पोषण के लिए भत्ता दे तथा न्यायालय को यह भी देखना होता है कि प्रत्येक माह कितना भत्ता दिया जाए। यह उस व्यक्ति की आयु और संपत्ति पर निर्भर करता है। अगर वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने साथ रखने को तैयार है लेकिन पत्नी को यह मालूम हो जावे कि पति अपने साथ दूसरी पत्नी रख रहा है तो पत्नी पति के अलग रहकर भरण पोषण प्राप्त कर सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी माता पिता एवं बच्चों को भरण पोषण देने से बचने के लिए जानबूझकर न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह उस व्यक्ति के खिलाफ एक पक्षीय आदेश पारित कर सकता है और भत्ते की धनराशि अदा न करने पर सजा का भी प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता एवं पत्नी बच्चों के साथ जारकर्म करता है तो वृद्ध माता पिता एवं पत्नी अलग रहकर भरण पोषण की धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति माता पिता एवं पत्नी के साथ मारपीट करता है, घर से बाहर निकाल देता है या घर से निकालने को विवश कर देता है तो उस व्यक्ति के साथ रहने से इनकार कर बाद भी भरण पोषण प्राप्त कर सकती हैं। हिंदू वेद अधिनियम 1956 के अनुसार भरण पोषण हिंदू वेद के अनुसार जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने वृद्ध माता पिता एवं पत्नी बच्चों के भरण पोषण अपनी आयु के अनुसार करे। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदू पत्नी विवाह के बाद अपने पति अपने जीवन काल में अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार होती हैं। हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत हिंदू पत्नी अपने पति से भरण पोषण अलग रहकर भी भरण पोषण प्राप्त कर सकती हैं करने के अधिकारी हैं। उनका पति कुरता का व्यवहार करता है, पति की कुष्ठ रोग से पीड़ित है और उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, ऐसी स्थिति में हिंदू दत्तक पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती हैं। हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत वृद्ध माता पिता एवं बच्चे भी आते हैं जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत वृद्ध माता पिता पत्नी के अलावा विधवा पत्नी जब तक वह पुनर्विवाह न कर ले पुत्र पुत्र का पुत्र भी पिता की संपत्ति में से भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत भरण पोषण ऐसी महिलाएं जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित हैं ऐसी पीड़ित महिलाओं दीवान न्यायालय में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती हैं। जो पति पत्नी के रूप में एक घर में निवास कर चुके होते हैं तब उस पति का यह अधिकार होता बनता है कि वह अपनी पत्नी को भरण पोषण की व्यवस्था करे तथा पत्नी के साथ जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था का भी प्रावधान दिया गया है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण अधिनियम 2007 के अंतर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक और कल्याण विधेयक 2007 लोकसभा में 20 मार्च 2007 को पेश किया गया था जिसमें कहा गया कि वयस्क संतानों को अपने वृद्ध माता पिता दादा दादी का भरण पोषण के साथ उनकी देखभाल की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही भरण पोषण समुचित भोजन कपड़ा आवास एवं उनकी बीमारी की व्यवस्था करनी होगी। वर्तमान विधि में आश्रित बालक हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण दंड प्रक्रिया संहिता पर आधारित है जो वृद्ध माता पिता को प्रथमा 500 रुपये देने का प्रावधान करती है लेकिन ये अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों को मासिक भत्ता 10,000 रुपये का प्रावधान करती है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को भुगतान नहीं करती है वह व्यक्ति 3 माह के कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत माता पिता या दादी दादा अपनी संतानों में से एक या अधिक के विरुद्ध आवेदन कर सकती हैं जबकि वरिष्ठ नागरिक उस संबंधी के विरुद्ध भी प्रवाद दायर कर सकते हैं जिसे उसकी संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। वरिष्ठ माता पिता निम्न के भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ माता पिता जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, संतान माता पिता उन संबंधियों से जो उन संपत्ति पर उत्तराधिकारी हैं। अगर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तो बीच में आपस में राजीनामा का भी प्रावधान किया गया है। भरण पोषण की धनराशि का भुगतान न करने पर 1 मास की सजा हो सकती है और घर से निकाल देने पर 3 माह की सजा हो सकती है। प्रत्येक जिले में वृद्धावस्था गृह सरकारी आवास में वृद्धों

0: देखभाल, वृद्धों को प्राण और स्वतंत्रता की संरक्षण अधिनियम करने हेतु पुलिस की साथ व्यवस्था की गई है, लेकिन संयुक्त परिवार प्रणाली में टूट फूट के कारण वृद्धों की व्यापक संख्या का उनके परिवार द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। परिणामस्वरूप तमाम वृद्ध व्यक्ति विधवाएं अपने अंतिम समय को अकेले व्यतीत करने को बात हो रही हैं।
1: अभी आपने सुनी वार्ता, विषय था माता पिता और पति पत्नी के लिए भरण पोषण कानून, और वार्ताकार थे गुरेलाल। और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: साथियों, जीवन अनमोल है, इसीलिए हर कोई अपने जीवन को खुशी से बिताना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि वो परेशानियों से घिरा रहे, लेकिन हर किसी की सोच, स्वभाव, आदतें अलग होती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर कोई अलग माहौल में पला बड़ा होता है, इसीलिए सबके विचार अलग होते हैं, और इसी कारण एक दूसरे से मतभेद होना स्वाभाविक है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यही मतभेद जब मन मुटाव का कारण बनता है तो एक पक्ष दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने लगता है। हम सभी ये जानते हैं कि दुनिया में युद्धों का कारण यही मतभेद हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो शांति बनाए रखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो जो अपनी बात मनवाना चाहते हैं। और अगर ऐसा होने दिया जाए तो मानव की स्थिति जानवरों से भी बदतर हो जाएगी और समाज में जंगल राज जैसा माहौल होगा। मतलब ये कि अपने प्रति जागरूक रहकर हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और समाज में सम्मान से जी सकते हैं। और इसीलिए विश्व मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 को इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा था। साथियों, अपने देश की बात करें तो अशिक्षा, निरक्षरता और अज्ञानता के कारण देश के नागरिक मानव अधिकारों के बारे में कम ही जानते हैं। यहाँ तक कि वो तो अपने अधिकारों को भी नहीं जानते जो हमारे देश के संविधान ने हमें दिए हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो ये जानिए कि हमारे अधिकार क्या क्या हैं, और फिर ये जानिए कि मानव अधिकार के अंतर्गत आपको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो पहला अधिकार है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शिक्षा व कार्य का अधिकार। और साथियों, हमारे देश में इन अधिकारों की रक्षा के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है। साथ ही ऐसे मामलों की जांच के लिए हमारे देश में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। तो साथियों, ये सब व्यवस्था इसीलिए है कि हम सब एक सुकून भरी जिंदगी जिएं।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: साथियों, स्वस्थ शरीर के बिना सब कुछ असंभव है, तो चलिए सेहत टिप्स की बात कर ले। साथियों, हम हमेशा यही कहते हैं कि मौसमी फल सब्जियों का सेवन कीजिए, और आजकल आप देख ही रहे हैं कि बाजार में जामुन खूब आया हुआ है। वैसे ये फल थोड़े से समय के लिए ही आता है, जब आंधी चलती हैं तो पके हुए जामुन पेड़ से गिर जाते हैं। इन्हें धोकर नमक लगाकर खाओ तो बहुत स्वाद लगते हैं। वैसे जामुन विटामिन सी, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल है। ये ब्लड शुगर को नियंत्रित और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। आप जामुन का जूस भी पी सकते हैं, या इसके बीज को सुखाकर पाउडर का बनाकर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथियों, ये दिल की सेहत, त्वचा, वजन के नियंत्रण, खून को साफ करने, इम्यूनिटी को बढ़ाने

मुंह और मसूड़ों के लिए फायदेमंद रहता है। साथ ही ये शरीर से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को भी बाहर निकालता है। साथियों, मुझे याद आते हैं बचपन के वो दिन जब मेरी गुड़िया की शादी थी और मेरी गुड़िया की शादी में मेरी माता ने जो कुछ बनाया था घर में वो तो हमने लिया ही, लेकिन वो मौसम था जामुन का और हमने जामुन खरीदे और अपनी गुड़िया की शादी की पार्टी में जामुन सबको दिए और हम सब ने मिल के खूब जामुन खाए। और फिर जब हमारी जीभ बैंगनी रंग की हो जाती थी तो फिर हम जीभ निकाल निकाल के एक दूसरे को चढ़ाया करते थे, बहुत मज़ा आता था। लेकिन अब वो बचपन के दिन चले गए, लेकिन आज भी जब मैं जामुन के फल को देखती हूँ तो मुझे बचपन के दिन और वो गुड़िया की शादी याद आ जाती है। साथियों, जामुन शरीर को ठंडक देता है और ऐसी गर्मी में वैसे ही शरीर में बहुत गर्मी से बहुत पसीना भी आता है, और अगर इस गर्मी के मौसम में कोई अपना हम उम्र साथी मिल जाए तो जेठ की गर्मी में भी मौसम सुहाना ही लगता है।

तो साथियों आप बने रहिए स्वस्थ और मस्त। और इसी के साथ कार्यक्रम मजदूर मंडल को यहीं संपन्न करने की अंजुबाला को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में होगा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। यह वितरण योजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता के विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देशवासियों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली

0: परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए था। पिछले वित्तीय वर्ष में यह बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रक्षा निर्यात केवल 1,000 करोड़ रुपए का था, अब यह बढ़कर लगभग 40,000 करोड़ रुपए हो गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की सोच में बड़ा बदलाव आया है। देश की सोच विश्वास, विकास और जन कल्याण द्वारा परिभाषित होकर बेहतर शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों तक महत्वपूर्ण संसाधनों को सीधे पहुंचाने के कार्यों को पूरा किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास रोक लगाने के पर्याप्त कारण थे और कानून की प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया है। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल में हिमाचल के तराई क्षेत्रों, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकार और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में आज बिजली चमकने और ओले पड़ने की संभावना है। अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया के किम मिन सन को हराया। सेमीफाइनल में कल उनका सामना कोरिया की पार्क गा यून से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana PMVBRY at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the PMVBRY, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. The incentive has supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and industry. He highlighted that under the scheme, around 70 lakh jobs have been created so far.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
1: Defense Minister Rajnath Singh today said that India's domestic defense production has increased from 46,000 crore rupees in 2014 to a record over 1,78,000 crore rupees in the last financial year. He said that defense exports, which registered at only 1,000 crore rupees before 2014, have risen to nearly 40,000 crore rupees due to the growing global demand for indigenously manufactured Indian defense equipment.

0: Mr. Singh was speaking after laying the foundation stone of state-of-the-art 10,000-ton of aluminium extrusion press at the Ordnance Factory of Yantra India Limited in Ambazari, Nagpur. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of Justices P.S. Narasimha and A.S. Chandurkar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the apex court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights including Article 21, right to life and liberty. The declaration by the top court came in an unfortunate motor accident compensation case where a father lost his 5-year-old son while taking him to school. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that passport delivery has now become completely democratized as it is swift, secured and decentralized. Addressing the annual Regional Passport Officers Conference in New Delhi, Dr. Jaishankar said that the passport service is accessible to remotest corner of the nation. He said this shift towards the public expectation is a validation of digital governance. He said Passport Seva Program version 2.0 has truly redefined global mobility for a Vikasit Bharat. The External Affairs Minister highlighted that the country's foreign policy establishes India as a Vishwabandhu and the Indian passport is treated with respect and with confidence internationally. A new round of direct talks between the United States and Iran has been postponed after U.S. Vice President J.D. Vance delayed a planned visit to Switzerland. The White House cited logistical challenges and an unpredictable schedule for the change. Switzerland's foreign ministry said talks involving the United States, Iran, Qatar and Pakistan scheduled for today have been postponed. An Iranian regional official confirmed that Iranian representatives did not travel to Switzerland for the discussions. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर 31530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त हुआ है कार्यक्रम व्यवधा का, जिसमें आज हम आपको सुना रहे हैं डॉक्टर राजेश कुमार की वार्ता त्रिलोचन के काव्य में वैचारिकता।
2: प्रगतिशील हिंदी कवि त्रिलोचन का जन्म 20 अगस्त 1917 ईस्वी को जनपद सुल्तानपुर के चिरानी पट्टी कटघरा पट्टी ग्राम में हुआ था। इनके बाल्यकाल का नाम वासुदेव सिंह था। त्रिलोचन के पिता का नाम जगरदेव सिंह था। त्रिलोचन की माता मनवर्ता देवी कर्मठता और सजगता की साकार प्रतिमा थी। कृषक परिवार में जन्मे त्रिलोचन के काव्य में जीवन और जगत का स्वरबोध आस्था और दृढ़ विश्वास के साथ घनीभूत हुआ है। जीवन संघर्ष की अपराजेय जिजीविषा से संपृक्त उनकी कविताएं मनुष्यता के भावलोक का सर्जन करती हैं। त्रिलोचन जीवन स्वर के सिद्ध गायक थे। उनकी यह दृढ़ता जीवन को उदात्त चेतना प्रदान करती है। समाज व्याप्त जड़ता का निराकरण करने के लिए उनकी कार्यत्री प्रतिभा जब ध्येय की ओर अभियान करती है, तब उसमें जनजीवन का सौंदर्य उद्भासित होता है। किसान और मजदूरों के संघर्ष को अपनी कविता में प्रस्तुत करने वाले त्रिलोचन जड़ता का विच्छेदन करते हैं। प्राणों पर शासन करने वाली जड़ता के विध्वंस के लिए उनका क्रांतदर्शी काव्य विवेक जीवन का नव सर्जन करता है। किसानों के श्रमजन्य जीवन का जैसा उदात्त चित्रण त्रिलोचन ने किया है, वैसा निराला कथ्य अन्यत्र दुर्लभ है। विविध यथार्थवादी बिंबों से अनुप्राणित उनका गीत मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी कृषक दंपति के स्वस्थ प्रेम एवं यथार्थ बोध का द्योतक है। इस गीत में समूचा परिवेश श्रम के आर्जव और पुरुषार्थ से समलंकृत है। सूखे के समय कृषक दंपति का श्रम साहचर्य कवि की यथार्थ बोधनी प्रज्ञा से झंकृत हो उठा है। अत्यधिक श्रम करने के बावजूद किसान का निर्बल और निर्धन होना कवि के लिए चिंता का विषय है। जग जीवन के लिए खून पसीना एक करने वाले कृषक दंपति के प्रति कवि की प्रश्नाकुलता व्यग्र होकर कराह उठती।

0: सकती है। वे सींच रहे जगजीवन, जगहित में उनका तन मन, वे फिर भी निर्बल निर्धन, विश्वास न उनको अपना, वे अपनेपन से उन्मन, मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी। त्रिलोचन हिंदी कविता के आधुनिक तुलसीदास हैं। अटूट वाक्य रचना का क्लासिकी संयम उन्हें महानता की श्रेणी में ला खड़ा करता है। अरोचकी एवं सत्रणा व्यवहारी आलोचकों पर उनका शब्द प्रहार महात्मा तुलसीदास की याद दिलाता है। कवि त्रिलोचन के काव्य की वैचारिकता मनुष्यता के भावलोक की अनुगामिनी है। त्रिलोचन के सोनेटों में उनके शब्द योगी होने के प्रमाण निहित हैं। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महात्मा तुलसीदास से प्रेरणा ग्रहण करने वाले त्रिलोचन दिगंत में एक सोनेट के द्वारा अपने संघर्ष और श्रम का उल्लेख करते हैं, जिससे न केवल निराला जी का भाव स्मरण होता है अपितु निराला के संघर्ष से आगे बढ़ने का भी बोध होता है। कवि अपने समान धर्मा कवि मित्रों के व्यवहार पर भी चुटकी लेता है। मित्रों, मैंने साथ तुम्हारा जब छोड़ा था, तब मैं हारा थका नहीं था, लेकिन मेरा तन भूखा था, मन भूखा था, तुमने टेरा, उत्तर मैंने दिया नहीं तुमको, घोड़ा था तेज तुम्हारा, तुम्हें ले उड़ा, मैं पैदल था, विश्वासी था, सौरज धीरज तेहरथ चाका, जिससे विजयश्री मिलती है और पताका ऊंचे फहराती है, मुझ में जितना बल था, अपनी राह चला, आंखों में रहे निराला, मानदंड मानव के तन के मन के तो भी पीस परिस्थितियों ने डाला, सोचा जो भी हो आंखों की करुणा का यह शीतल पाला, मन को हरा नहीं करता है पहले खाना, मिला करे तो कठिन नहीं है बात बनाना। त्रिलोचन जी ने धरती कविता संग्रह में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी योद्धाओं का प्रशस्ति गान किया है। चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह को ध्यान में रखकर लिखी गई उनकी यह कविता न केवल ऊर्जस्वित वाग्धारा का उद्घोष करती है, बल्कि नवजागरण का शंखनाद भी करती है। जो अपनी धुन पर न्योछावर अपना सब कुछ कर देते हैं, जग जीवन के लिए स्वयं को निर्भय हो बल कर देते हैं, जिसका कदम कदम जीवन की जय यात्रा का प्रिय प्रतीक है, मैं सगर्व सोल्लास निरंतर उन लोगों का गुण गाता हूँ, जिनका स्वर जीवन का स्वर है, जन जन को हर्षाने वाला, जन जन की चेतना जगाकर जग जीवन समझाने वाला, जीवन का प्रताप जिनके प्रत्येक कार्य से संदीपित है, मैं सगर्व सोल्लास निरंतर उन लोगों का गुण गाता हूँ। जिन लोगों ने संघर्षों में कभी हार को हार न माना, मरते रहे परंतु जिन्होंने मृत्यु प्रहार प्रहार न माना, जिनके अप्रतिहत साहस की क्षण क्षण लिखते रहे कहानी, मैं सगर्व सोल्लास निरंतर उन लोगों का गुण गाता हूँ। जिन लोगों ने जीवित रहते कभी न अत्याचार सहा है, अत्याचार से नहीं जिनका रंच मात्र संबंध रहा है, जिनका तेज तेज औरों का बंधु भाव से रहा बढ़ाता, मैं सगर्व सोल्लास निरंतर उन लोगों का गुण गाता हूँ। त्रिलोचन के रचना संसार में धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, अन कहनी भी कुछ कहनी है, चैती, रोज नामचा इत्यादि का विशिष्ट स्थान है। कथ्य और शिल्प की दृष्टि से त्रिलोचन का काव्य जीवन की प्रेरक दृष्टि प्रदान करता है। उनका बिंब विधान, अप्रस्तुत विधान एवं शिल्प के विविध मानक उन्हें महानतम कवि की श्रेणी में खड़ा करते हैं। जीवन का दुर्धर्ष कवि अपनी मेधा से आधुनिक हिंदी कविता को गौरवान्वित करता रहा है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राजेश कुमार की वार्ता त्रिलोचन के काव्य में वैचारिकता। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित होगा। कृपया कर कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: इसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, SIT की जांच सामने आएगा मंदिर चढ़ावा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल को दी 3 ट्रेनों की सौगात। कहा, आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी आज आगरा में ब्रिक्स MSME फोरम और तीसरी SME कार्य समूह की बैठक में हुए शामिल। वैश्विक MSME इकोसिस्टम को मजबूत करने पर हुआ विचार विमर्श। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित देश भर से जुड़े लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि पूरा विश्व आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदले। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत हुई है। यह युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
4: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना

0: सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
1: इस आयोजन के अंतर्गत प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल हुए। इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में रुदौली विधानसभा क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय समेत 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत और विकास के विजन को साकार करने की दिशा में डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में ब्रेक थ्रू साबित हुआ है।
2: आज उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है। अब देश के अंदर बीमारू राज्य नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अब यूपी के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है, ये इसी पंच प्रण का परिणाम है और डबल इंजन सरकार का परिणाम है।
1: मुख्यमंत्री ने श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने एसआईटी जांच बैठाई है, एसआईटी की जांच से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।
2: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो।
1: मुख्यमंत्री ने नगर निगम अयोध्या में 290 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 245 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गोंडा में देवीपाटन और बस्ती मंडल के लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने देवीपाटन मंडल के प्रमुख 13 मार्गों के विकास को मंजूरी दी। कुल 4,901 करोड़ 65 लाख रुपए की 1,000 से अधिक विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति भी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बिहार के छपरा जंक्शन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वांचल को सौगात देते हुए दोहरी घाट ओढ़ियार ट्रेन सेवा का वाराणसी सिटी तक विस्तार और मऊ आनंद विहार नियमित एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मऊ के रास्ते संचालित होने वाली छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी जो दिल्ली से लखनऊ और वाराणसी होते हुए पटना और सिलीगुड़ी तक जाएगी।
3: आने वाले समय में एक और नई चीज चालू होगी, बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी, यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी।
1: इस दौरान मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी शामिल हुए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में इंडिया फर्स्ट की भावना राष्ट्रीय चरित्र बन गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इसी भावना ने वैश्विक मंच पर भारत के मान सम्मान और सामर्थ्य को

0: नई ऊंचाई दी। इसी क्रम में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा आज वाराणसी में वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल और पत्र सूचना ब्यूरो के निदेशक दिलीप शुक्ला भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आज आगरा में प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई कार्य समूह की बैठक आयोजित की। बैठक में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए और उन्होंने सभा को संबोधित किया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने इसे सफल बताया। इस बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, रूस, वियतनाम और भारत सहित ब्रिक्स सदस्य और ब्रिक्स सहयोगी देशों के नीति निर्माता, उद्योगपति और अन्य हितधारक शामिल हुए। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स बैठक की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रही। इस दौरान प्रतिनिधियों ने वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ एमएसएमई की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ हुआ। वातावरण विकसित करने की उम्मीद है। बैठक में प्रदेश के एमएसएमई मंत्री भूपेन चौधरी भी उपस्थित रहे। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एसआईटी की जांच से सामने आएगा मंदिर चढ़वा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल को दी 3 ट्रेनों की सौगात। कहा, आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी आज आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई कार्य समूह की बैठक में हुए शामिल। वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने पर हुआ विचार विमर्श। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: रेडियम वेव 106.1 मीटर 30,523 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम लेकर आ गई है आप सबकी रेडियो हमसफर मुकुल तिवारी। श्रोताओं, आज मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि समुद्र का पानी नीला क्यों है, आसमान में ही चांद सितारे क्यों नजर आते हैं, फूल खिलते क्यों नहीं, या फिर फूल में खुशबू।

वो कहाँ से आती है? अब आप ये सोचेंगे कि मैं क्यों ये बहकी बहकी सी बातें कर रही हूँ, मुझे ये सब क्यों नहीं पता? और मान लो कि नहीं भी पता है तो पता क्यों नहीं करती हूँ? नहीं, मैं कोई नशे में नहीं हूँ श्रोता, मैं बिल्कुल होश में हूँ। और ये सोच आपके दिमाग में आना भी नॉर्मल है, क्योंकि नशे में इस कदर समाज में अपना पर फैला चुका है कि ये उम्मीद करना कि ये इंसान होश में होगा या होगी, ये नशा करता है या करती होगी, अपने आप में एक आश्चर्य है। नशा स्टेटस सिंबल बन गया है। कॉलेज में आज के युवा टशन दिखाने के लिए या फिर कूल डूड दिखने के लिए सिगरेट का छल्ला बनाने लगे हैं। कौन कितना लंबा कश लेकर उसके धुएं से लंबा छल्ला बना रहा है, जैसे कि ये जनाब कर रहे हैं इस गाने में।

श्रोताओं, इस गाने में सुना आपने कि कैसे हालात को इग्नोर करके आगे बढ़ा जा रहा है। ऐसा नहीं होता कि आंखें बंद कर लेने से मंजर बदल जाएगा। श्रोताओं, नशा कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आता, ना ही वार्निंग देकर आता है कि मैं आ गया हूं तुम्हें बर्बाद करने। ये वो मेहमान है जिसे आप खुद लेकर आते तो हैं, पर ना आप जाने देना चाहते हैं, ना वो खुद जाता है। ये उस फैशन, उस आकर्षण के

साथ आता है जहां आप जरा सा कमजोर हुए और आपका खेल खत्म। शुदा, पहले आप घर में एक व्यक्ति भी नशा करता था तो घर वाले चिंता में डूब जाते थे कि अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ। पर आज सिगरेट, गुटखा, सूखा नशा, ये सब सामान्य सी बात हो गई है। शौक तो मुझे तब लगा जब मैंने सुना कि किसी से कि अरे इसका तो पूरा खानदान नशेड़ी है, इसे तो पीना ही था। सीरियसली श्रोता, क्या ये भी वो चीज है या हो सकती है या होनी चाहिए जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर किया जाए? हमने नशे को इतना सामान्य बना दिया है कि ये अब हमें गलत लगता ही नहीं, जैसे कि ये जनाब फरमा रहे हैं इस गाने में।

श्रोताओं, नशे को स्टेटस सिंबल बनाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि यही नशा उन्हें अर्श से फर्श तक भी ला सकता है। अगर नशा ही सफलता का मंत्र होता तो लोग मेहनती, आत्मविश्वासी और संघर्षी नहीं होते। ऐसा हो क्यों रहा है कि आज के युवा जो देश के उज्जवल भविष्य के निर्माता हैं, वो नशे में डूबे हुए हैं? क्योंकि कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे प्रेरणा होती है, आदर्श व्यक्ति होता है, और हमारा समाज बुराइयों को चमकदार पैकेजिंग करता है, आकर्षक विज्ञापन बनाता है, बड़े बड़े मंच देता है उन्हें। इंसानों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि बहुत ही घटिया और सस्ती चीज बेचने के लिए भी करोड़ों रुपए लगाकर प्रचार प्रसार हो रहा है इस चीज का, क्योंकि नशा का काम ही है भ्रम पैदा करना, भ्रम जो एक चूहे को भी शेर बनाने का भ्रम पैदा करे। सच्चाई से इंसान को दूर करता है ये भ्रम, भ्रम ये कि इससे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की शक्ति मिलेगी। सच्चाई तो ये है श्रोताओं कि प्रॉब्लम दूर नहीं हुई, बल्कि कुछ देर के लिए आपके सेंसेस ने काम करना बंद कर दिया। आपने सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद जब आपका नशा उतरेगा तब क्या, कभी सोचा है?

0: अरे हम तो गिर पड़े।
1: टीका श्रोताओं, नशे में इंसान कभी भी गिर सकता है। हमारा यूथ सूखे नशे की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है, क्योंकि एक तो ये ज्यादा देर तक अपना असर बनाए रखता है, दूसरा वो इस फॉर्म में आता है कि जल्दी से जल्दी कंज्यूम भी कर लिया जाए। पर जरा सोचें कि ये जहरीला भी तो कितना होता है, कि इसे गैर कानूनी बताया गया है, ये इतना महंगा क्यों है। यकीन मानिए श्रोताओं, कोई भी व्यक्ति नशा ये सोचकर तो नहीं शुरू करता होगा कि इससे उसको सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक नुकसान होगा, रिश्तों की बर्बादी होगी। पर जब वो इसका आदी हो चुका होता है तो ये सब

0: जानते हुए भी वो इस नशे को छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसका आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण सब कुछ नशे का गुलाम हो चुका होता है। श्रोताओं, क्या आपको भी ये नहीं लगता कि नशे में डूबा हुआ इंसान सिर्फ अपना ही नहीं, अपनों का भी नुकसान करता है? माँ बाप उससे बात करना कम कर देते हैं, बच्चे उससे डरने लगते हैं, जीवन साथी साथ रहने से कतराने लगता है। ये सब बेवजह नहीं हुआ, ना ही आपने किया, ये उस नशे ने आपसे करवाया जिसका साथ आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। नशा आपके विचारों को संकुचित कर देता है, सकारात्मक सोच, आपकी ऊर्जा सब आपके नशे का गुलाम हो जाता है। हमारे देश में या कहीं भी क्राइम के पीछे नशा ही होता है। हम कितनी भी बात कर ले नशे के साइड इफेक्ट्स के बारे में, लेकिन सॉल्यूशन की तरफ जाना ज्यादा जरूरी है। श्रोताओं, हर अंधेरे के बाद रोशनी भी होती है। कई लोग ये मान लेते हैं कि अगर कोई नशे का आदी हो गया है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में लाखों लोग हैं जो इस नशे की जाल से निकल चुके हैं। उन्होंने फिर से मान सम्मान पाया है, परिवार का साथ पाया है, अपने सपनों को पूरा किया है, खुद की पहचान बनाई है। हाँ, ये सफर मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। इसमें आपको सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि समस्या तो है, फिर उसे दूर करने की इच्छा होनी चाहिए, मदद लेने की हिम्मत होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, संकल्प को पूरा करने की शक्ति होनी चाहिए, आत्मनियंत्रण, आत्मबल, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सरकार ने भी हर राज्य में, हर जिले में मुफ्त रिहैब सेंटर खोला है। इसका नाम सुनकर आप डर के भागना नहीं चाहिए, आपको शर्माना भी नहीं चाहिए। इस सेंटर में कोई टॉर्चर नहीं होता है आपके साथ, बल्कि आपको नशे के बिना जीना सिखाया जाता है। विशेषज्ञ आपसे बात करते हैं, आपके अंदर उम्मीद जगाते हैं, नई कला सिखाते हैं, आपके अंदर आपकी सोई हुई विश्वास को जगाते हैं। लेकिन सारा काम रिहैब सेंटर भी तो नहीं कर सकता ना, यहाँ जरूरत है जागरूकता की, परिवार के साथ की और दोस्तों की। क्या आप चाहते हैं कि आप उम्र से पहले बूढ़े हो जाएं? नहीं ना। अपनों को खो दें या अपने अपनों से दूर किए जाएं? सोच कर भी डर गए ना। ये डर कभी कभी बहुत जरूरी भी होता है श्रोताओं। अगर कोई आपसे कहे कि नशा ना करो, तो उसकी बातों को सुने और उस पर अमल करें। सोचें कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, वरना हाथ पकड़कर धक्का देने वाले बहुत हैं दुनिया में। हाथ पकड़कर सही रास्ते पर लाने वाले बहुत कम हैं। तनाव से दूर भागने के लिए खुद को तनाव में ना ले जाइए। अजय, नशा करना है तो प्यार का कीजिए, जिससे खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं और ना ही इसका कोई साइड इफेक्ट्स है। यकीन नहीं तो सुनिए।
1: नशा ये प्यार।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आपकी रेडियो हम सफर मुगल तिवारी लेती है आज के इस कार्यक्रम यानी कि मेरी माटी मेरा देश से विदा। फिर मिलेंगे, तब तक रखिए अपना और अपनों का खास ख्याल।

पीटीएम वेव 196.1 मीटर धात 1530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मों से लीक हुई कव्वालियों पर आधारित प्रोग्राम महफिल कव्वाली। इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म अमर अकबर एंथनी से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे हंसते जख्म फिल्म का ये गीत। गीतकार थे कैफी आज़मी, संगीतकार थे मदन मोहन। मेरे हमदम मेरे दोस्त इस फिल्म में सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में मजरूर सुल्तानपुरी का लिखा गीत, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सारा। इस फिल्म में आप सुन रहे थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा गीत, संगीत था मदन मोहन का। श्रोताओं, इसी के साथ महफिल कव्वाली का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। चित्रपट संगीत, इस कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है फिल्म प्रिंस से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीतकार है हसरत जयपुरी, संगीतकार है शंकर जयकिशन।

द ट्रेन, इस फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतकार थे आर डी बर्मन। सूरज, मोहम्मद रफी की आवाज में सुनिए हसरत जयपुरी का लिखा गीत, शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में।

मोहम्मद रफ़ी की गाय फिल्म सूरज के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा। कृपया कर कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था।

0: लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रूपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy,
4: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
3: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MQ खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो

0: अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
1: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
5: This is the country.
6: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
3: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम

0: कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agree to ceasefire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Ae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, "In the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality." He said, India is set to lead from the front. Mr. Modi said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come.
2: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: The Prime Minister also said that during his recent visit to France and Slovakia, he felt the world is gradually recognizing the potential of India's youth. Mr. Modi said, the PM Viksit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। उन्होंने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की को फरोग देने, इख्तिरा और इंटरप्रेन्योरशिप में कायदाना रोल अदा करेंगे। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से कोयले से अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने वाला मुल्क का पहला कमर्शियल प्लांट उड़ीसा के झारसुगुड़ा में कायम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक एक बुनियादी हक है। उसने इसके नफाज के लिए एक इंजिबाती इदारे के क्याम पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्जाम लगाते हुए अक़वामे मुत्तहदा में उसकी सख्त नुक्ताचीनी की है। लेबनान पर इसराइली हमले में 21 अफराद की हलाकत के बाद अमरीका और ईरान के बीच बराह रास्त अमन बातचीत का नया दौर मुलतवी हो गया है। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए। और बैडमिंटन में कल चीन में मकाऊ ओपन टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की अश्मिता चलिहा का मुकाबला पार्क गायून से होगा। अब खबरें तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक तकरीब में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। PMVBRY के नफाज के तहत तरगीबात तकसीम किया जाना एक अहम संग मील की हैसियत रखता है, जो रोजगार से मुंसलिक हुकूमत की अहम तरगीबाती स्कीम है, जिसका मकसद रोजगार के मौके पैदा करने में तेजी लाना, रोजगार फराहम करने में इजाफा और मुख्तलिफ शोबों में समाजी सिक्योरिटी को वसत देना है। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि 21वीं सदी में उन ममालिक में मौके फराहम होंगे जो हुनरमंदी को फरोग देंगे, इख्तरा में इजाफा करेंगे और क्वालिटी के आला तरीन मेयारात को बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत आगे बढ़कर कायदाना रोल अदा करने के लिए तैयार है। जनाब मोदी ने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की में इजाफे, इख्तिरा और कारोबार को बढ़ाने के सिलसिले में अहम किरदार अदा करेंगे।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के

0: लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: जनाब मोदी ने कहा कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का मकसद पहली मर्तबा रोजगार हासिल करने वालों को बाख्तियार बनाना और नौजवानों और सनअत के दरमियान एक पुल का रोल अदा करना है। उन्होंने कहा कि उमंगें, हुनरमंदी और भारतीय नौजवानों की सलाहियत विकसित भारत की राह मुतय्यन करती हैं। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि स्कीम के अब तक तकरीबन 70 लाख नौकरियां कायम की जा चुकी हैं।
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
1: इस स्कीम के तहत पहली बार रोजगार हासिल करने वाले 15,000 रुपए तक की तरगीबात के अहल होते हैं, जो उन्हें अफरादी कुवत की हैसियत से तस्लीम किए जाने में अहम मदद फराहम करती है। रोजगार के इजाफी मौके पैदा करने वाले आजिर 3,000 रुपए फी माह तक की तरगीबात के अहल होते हैं, जो फी इजाफी रोजगार पाने वाले के हिसाब से दी जाती है, जिससे रोजगार के पायदार मौके की हौसला अफजाई होती है। इससे कबल तरगीबात की तकसीम से पहले वजीर आजम ने विज्ञान भवन में कुछ नौजवानों से बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहनत और रोजगार के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी हुकूमत ने वर्करों की बहबूद और मफादात की खातिर 4 अहम लेबर कोड नाफिज किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उड़ीसा में झारगोड़ा के लखनपुर में कोयले को गैस में तब्दील करने के अमल से मुतालिक प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 25,000 करोड़ रुपए है। कोयले की वजारत ने बताया कि यह प्रोजेक्ट मुल्क की पहली कमर्शियल सतह की कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की सहूलत की तारीखी संग मील की निशानदेही करता है। ये प्रोजेक्ट भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड के जरिए तैयार किया गया है, जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड कोल इंडिया लिमिटेड का एक मुश्तरका इदारा है। ये देसी साख्ता कोयले को गैस में तब्दील करने के अमल का इस्तेमाल करते हुए 2000 टन योमिया अमोनियम नाइट्रेट की पैदावार करेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अपनी आबाई रियासत के दो रोजा दौरे पर उड़ीसा पहुंची। खराब मौसमियाती सूरतहाल के पेश नजर मयूरभंज जिले की डंडबोस हवाई पट्टी पर उनकी तयशुदा परवास की लैंडिंग मनसूख कर दी गई, जिसकी वजह से पड़ोसी रियासत मगरबी बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस से राय रंगपुर सड़क के जरिए सफर किया। अपनी आमद के फौरन बाद सदर जमहूरिया ने एम्स भुवनेश्वर सेटेलाइट सेंटर और राय रंगपुर में एक मेगा सब डिविजनल हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। इस पहल से शुमाली उड़ीसा के लोगों के लिए सेहत की देखभाल की मेयारी सहूलत की फराहमी में मदद मिलेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारत की घरेलू सतह पर दिफाई साजो सामान की तैयारी 2014 में 46,000 करोड़ रुपए से बढ़कर गुज़िश्ता माली बरस में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। उन्होंने कहा कि दिफाई साजो सामान की बरामदात जो 2014 से पहले सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए थी, वो अंदरून मुल्क तैयार करता भारतीय दिफाई साजो सामान की बढ़ती आलमी मांग के सबब बढ़कर तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए हो गई है। जनाब सिंह नागपुर के अंबाझरी में यंत्र इंडिया लिमिटेड की हथियारों की फैक्ट्री में 10,000 टन एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का संग बुनियाद रखे जाने के बाद खिताब कर रहे थे। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस नए एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस से नागपुर और विदर्भ खित्ते में दिफाई साजो सामान की तैयारी का इको निजाम मुस्तहकम होगा।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रोक्सीमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: मिनिस्टर शेयर्ड हिज रिमार्क्स ड्यूरिंग द मीटिंग विद प्रेसिडेंट ट्रंप।
1: राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे, उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक्सलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। एक्सलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। एक्सलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
0: Ambassador Dayal, how does rather the high-level dialogues and sideline meetings with President Trump and leaders from other major economies kind of reshape India's strategic leverage with them, especially when it comes to trade, commerce, and of course, security and intelligence matters?
2: High-level dialogues and sideline meetings, such as the recent bilateral talks at the G7 summit in France, profoundly reshape India's strategic leverage with all the powers. And this was particularly evidenced during the bilateral talks with the US President Donald Trump, because India is able to elevate bilateral frictions into negotiated leader-to-leader agreements. Now, for instance, you referred to trade and commerce. You know, direct engagements have helped India manage harsh U.S. reciprocal tariff threats. Now, if you recall, President Trump praised Prime Minister Modi as a very tough negotiator. And the dialogue paved the way for a targeted interim tariff reductions and increased market access. So thus, by combining India's robust economic footprint with proactive diplomacy, Prime Minister Modi successfully transformed, as I said, adversarial points of friction into frameworks for mutual cooperation. Now, India's bilateral talks, for instance, with the US reviewed also substantial progress under the US-India Compact, which is the catalyzing opportunities for military partnership, accelerated commerce and technology. So the meeting on the sidelines of the G7 summit helped to reset a period of diplomatic strain, allowing India and the US to reaffirm their shared alignment on Indo-Pacific security and stability in West Asia.
0: Right, Ambassador Dayal. Professor Sachdeva, if you just look at trade agreements, we just saw the announcement of India-UK Comprehensive Economic and a trade agreement, which will, of course, come into effect from the 15th of July this year. Now, how significantly will this rather unlock the bilateral investment, trade and mobility for skilled professionals?
3: We are trying to connect with different parts of Europe, depending on where they are situated within this European institutional structures. We have now three trade agreements within Europe. Now, the first one we signed with EFTA countries, European Free Trade Association countries, where these countries are not part of the European Union, particularly important countries, Switzerland, Norway, and Iceland, and others. So that was the initial agreement within Europe. Then the second agreement, which we finalized, was, as you mentioned, with the United Kingdom. So these two agreements, in a sense, kind of provided template later on for finalization of trade talks with the European Union, which hopefully during this visit itself, when Prime Minister met the President of the Europe.

0: expert. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Current Affairs.
1: पीटीएमवी 106.1 मीटर 30,530 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, पहले गीत की फरमाइश आई है आसाम से। फरमाइश करने वाले का नाम है मुकेश वर्मा। इन्होंने सुनना चाहा है रंग दे बसंती फिल्म का वो गीत जिसे गाया है मधुश्री और नरेश अय्यर ने। गीतकार है प्रसून जोशी और संगीतकार हैं ए आर रहमान।

श्रोताओं, अगला गाना बरसात फिल्म से है, जिसे कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाया है। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का, और इस गाने की फरमाइश आई है लखनऊ से। इस गीत की फरमाइश करी है विशाल जायसवाल ने।

श्रोताओं, जो गाना आप सुन रहे हैं उसकी फरमाइश आई है गुजरात से। इस गाने की फरमाइश इन्होंने की है, उनका नाम है जयदीप शाह। फिल्म का नाम है मोहरा। आवाजें हैं उदित नारायण और साधना सरगम की। विजू शाह के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

रजनीगंधा कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मिशन कश्मीर से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय। और श्रोताओं, इस गीत की फरमाइश की है दिव्योम पांड्या ने गुजरात से।

रजनीगंधा कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म रिफ्यूजी से। इस गाने की फरमाइश आई है विजय कुमार सोनी की तरफ से, राजस्थान से। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं अनु मलिक और गीत को गाया है सोनू निगम और कई याग्निक ने।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में एन बी पटवर्धन से राग जोग में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे एन बी पटवर्धन से राग जोग में ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर 30,530 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा अगले कार्यक्रम कुछ क्षणों में

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचनाओं को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, MyIRINN पोर्टल, .IN ऑक्शन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता

0: And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। रात्रि की 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। सुबह 5:50 पर आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।